0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: कभी हम

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: Boom.
1: Hum.
2: RM2.
3: Radio Musty.
2: Feel the Musty.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

बिल्कुल उदास मत होइएगा क्योंकि यादों का कारवां यहां पर शुरू हो चुका है ऑन रेडियो मस्ती। मंगलवार की सुबह हो चुकी है 5 बजे और आज है 23 जून। नीतू का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें।

0: चलिए उदासी छोड़िए, एक बिग स्माइल अपने चेहरे पर लाइएगा क्योंकि सुबह हो चुकी है 5:04. विशिंग यू ऑल वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग. नीतू का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें. आई रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है और सर्दी का असर तो पड़ चुका है. सो जस्ट बी वेरी केयरफुल व्हेरेवर यू माइट बी. घर पर होंगे.
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.
0: जी हाँ, चाहे आप घर पर होंगे, काम पर निकल चुके हैं, गेटिंग रेडी फॉर स्कूल कॉलेज, बो कुहाश, बेस्ट ऑफ लक टू यू बोल. आपके मैसेजेस ऑन 5499 1294 पर.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: प्यार के बिना कैसी जिंदगी, ये तो सच्ची बात है. यहाँ पर 5:15 बज चुके हैं. थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस ऑन 9999295499924. सो अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको. यहाँ पर है कौन, रेडियो मस्ती टीम, नाम तो नहीं लिखा लेकिन आपका मैसेज आ गया है. थैंक यू ज्योति शातु बिनागस से है. गाना आपके नाम आशनी रेखा सुरेखा एंड माधव फैमिली. एंड एज यूजुअल अ वेरी गुड मॉर्निंग प्रणाम आपको भी साच हॉस्पिटल से मिस्टर जयशन तेम्बा जीबन उमिरान अंगोटिया साथ में आकाश शर्वन रामदेवर मेबिन एंड थैंक यू हम आपको कहेंगे हमारे हम सफ़र जो बने रहते हैं सुबह शाम हर वक्त. गुड मॉर्निंग धीरज आयुष विधिशा अश्विन ज्योति हरक परिवार मौदाल बैसे शीला जी फ्रॉम लेस्पेरेंस त्रेबिशे कैसे हैं, ठीक ठाक. और आपके यहाँ मौसम कैसा है? वैसे प्लान विलियम्स में तो मौसम जब सर्दी आती है आपको तो पता ही है, लेकिन नॉर्थ में अभी मौसम कैसा है? डू लेट मी नो ऑन सेक कात नफ नफ दूस नफ कात. बस दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत प्रेरित तरीके से हो जाए गानों के जरिए. क्या बात है माला सुबह जी, थैंक यू सो मच. अब्दुल सारा बानू थैंक यू, गुड मॉर्निंग. हैप्पीनेस इज वन वॉट यू थिंक वॉट यू से एंड वॉट यू डू इन हार्मनी. यस बिल्कुल ठीक ठाक है साधना मुकेश लालमाची से है. जो भी करे सोच समझ कर करे, क्या कर रहे हैं उसकी ज़रूरत है, तोल मोल कर बोरे, डू गुड बी गुड एंड जिंदगी खूबसूरत. राम राम आपको भाई सूरज शर्मा सजादा एंड फैमिली. कहाँ से? ऑफकोर्स फ्रॉम थ्रियोले एंड रोशनवा से अपाजू फैमिली. प्रणाम, गुड मॉर्निंग.

0: हमेशा कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है, तो कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए होता है। पुश नहीं करना चाहिए चीज़ों को, जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिएगा, लेकिन हाँ अपनी मेहनत कभी आप छोड़िएगा मत। 527 बो कुराज टू ऑल दोस गोइंग टू वर्क।
1: सुकू
0: ओहो।

0: अभी सुकुर सुकुर के साथ सुकुर सुकुर जो नाक वो बह रही है, सर्दी का मौसम है, असर भी पड़ रहा है. प्लीज बी वेरी केयरफुल. गर्म गर्म चाय, अदरक वाली चाय, तुलसी मिलाकर आहा, गले को ठंडक सुकून मिलता है, दिल को भी. सो 5499-1294 पर चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ.
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.
0: प्रणाम नीतू, जय हनुमान. आपको भी मिला रामदिकल मोता ब्लॉश से पूरे परिवार के नाम. कैसी है प्रेमिला जी? प्लंती पापा से ठीक ठाक, नमस्कार आपको. और नेक्स्ट गाना आपके लिए, यानी कि पति है रंजीत एंड ऑफ कोर्स आपके पूरे परिवार. मिस्टर चोनी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम खुशबू आपके नाम. और आज आप कहते हैं वी आर व्हाट वी थिंक. वो तो बिल्कुल ठीक है, जो हम सोचते हैं वो हम वैसे ही बन जाते हैं. ऑल दैट वी आर अराइजेस विद आवर थॉट्स एंड विद आवर थॉट्स वी मेक द वर्ल्ड. बेहतर हो या फिर गड़बड़ी हो जाए, ये सब हमारे दिमाग से, सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है. सो अच्छी सोच रखेंगे तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा सबका. नेक्स्ट गाना नमस्कार जी गुजार टू वारुवन पुलवी चक्रवानन, विशिंग देम हैप्पी वेडिंग लाइफ. एंड ये है राजेंद्री वासना रोल पिची बेलिया से. यही अगला गाना गुजार टू विश्वामित सारिका सर्वेशा धनेश राम सुवेंद्र उचा माँ बुवालों से पूरे परिवार के नाम. नमस्ते जी, वेलकम इन माय किचन. वैसे क्या बना रही है अपने किचन में सुया जी? विद योर रेडियो गर्मा गर्म चाय. आहा, बस चाय मिल जाए सुबह सुबह यही काफ़ी है हमारे लिए. लेकिन हैव योर ब्रेकफास्ट काम पर जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले. क्यों, कैसे हैं आप? कुमार देवी चंद, जॉगिंग एंड एन्जॉइंग म्यूजिक, थैंक यू. यहाँ पर शमी कपूर के गाने अच्छे लगे, प्रेमिला एंड भोले फैमिली, भोला फैमिली. सो थैंक यू सो मच. साथ निभाते रहिएगा, थोड़ी देर में आपका हॉरोस्कोप.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए शुरुआत करते हैं आपके साथ. स्कूल के लिए काम पर जा रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाइए. आपका दिन कैसा रहेगा?
2: एरीज मेष राशि.
1: आज भाग्य आपके लिए रिश्तों के खजानों का ताला खोल सकता है. कोई पुराना मित्र जिससे वर्षों से संपर्क नहीं था, अचानक आपकी सफलता की राह का महत्वपूर्ण पात्र बन सकता है. रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और मेहनत का फल दिखाई देने लगेगा.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: वेल, आज का दिन आपको राजगत्ता और समझदारी का पाठ पढ़ाएगा. हर मुस्कुराता चेहरा आपका हितैषी हो ये जरूरी नहीं है. That's why अपने निर्णय सोच समझ कर लें. छोटे लाभ भी आगे चलकर बड़ी सफलता की नींव बन सकती है. वैसे किसी पुराने फैसले को लेकर मन में थोड़ी कसक उठ सकती है, लेकिन वही अनुभव आपको अधिक मजबूत और परिपक्व बनाएगा.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज रिश्तों में मिठास खुलने का दिन है. यदि वैवाहिक जीवन में कोई दूरी या गलतफहमी थी तो उसको दूर करने के संकेत है. प्रेम संबंधों में भी अपनापन और विश्वास बढ़ेगा. विदेश में पढ़ाई या करियर का सपना देखने वालों को उत्साहजनक समाचार मिल सकता है. एंड बड़ों का आशीर्वाद आज आपके लिए सौभाग्य का द्वार खुल सकता है और कोई रुका हुआ काम भी पूरा हो सकता है.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: आज नई संभावनाएं आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छा अवसर मिलने के संकेत हैं.

0: आपके मधुर वाणी और व्यवहार लोगों को प्रभावित करेंगे। इससे सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। कुछ लोग आपकी सरलता का गलत अर्थ निकाल भी सकते हैं, लेकिन आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
1: लियो सिंह राशि।
0: आज आप अपने किसी बड़े लक्ष्य की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। सफलता आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। परिवार में संतान की उपलब्धि या नौकरी से खुशी का माहौल रहेगा। अविवाहित लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति के आने की भी संभावना है। बस हेल्थ को लेकर आप नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि सफलता का आनंद तभी मिलेगा जब ऊर्जा बनी रहेगी, है ना?
1: वर्गो कन्या राशि।
0: तो आज आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा चरम पर रह सकती है। भाग्य का साथ मिलने से कठिन लगने वाले कार्य भी सरल प्रतीत होंगे। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। विवाह से जुड़ी किसी रुकावट के दूर होने से घर में प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा। यात्रा या किसी मुलाकात के दौरान मिली जानकारी भविष्य में बड़ा लाभ दे भी सकती है।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: पुरानी परेशानियों के बादल धीरे धीरे छटने नजर आएंगे। लंबे समय से चली आ रही उलझनों में राहत मिलेगी। कार्यक्षेत्र में लिया गया कोई निर्णय आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा, लेकिन यही विचार विमर्श आगे की राह स्पष्ट करेगा। दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता से बचें और अपने डिसीजंस पर भरोसा रखें।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।

0: यस वृश्चिक राशि आपके लिए कहा जाता है कि आज जीवन में स्थिरता और विस्तार दोनों के संकेत है। जमीन या संपत्ति से जुड़ी योजनाएं आकार ले सकती है। लंबी यात्रा का विचार भी मन में आ सकता है। व्यापार में लाभ और रुकी हुई ये जो योजनाएं हैं उनको नई गति मिलने के योग है। जिस काम को पूरी लगन से करेंगे उसमें सफलता की संभावना प्रबल रहेगी।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन यही जिम्मेदारियां आपकी सफलता की सीढ़ी भी बनेंगी। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण दायित्व मिल सकता है और वरिष्ठ आपके काम से प्रभावित होंगे। परिवार में किसी अहम विषय पर चर्चा हो सकती है। पुराने दोस्तों से मुलाकात मन को ताजगी और खुशी देगी।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने के दिशा में आप बढ़ेंगे। परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की संभावना से खुशी का माहौल बना रहेगा। पदोन्नति या नई जिम्मेदारी को लेकर सकारात्मक संकेत आपको मिलेंगे। संतान के व्यवहार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है और किसी पुराने डिसीजन की याद मन को विचलित भी कर सकता है। फिर भी आपकी समझदारी और धैर्य हर परिस्थिति को संभालेंगे।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज आप स्वयं को हल्का ऊर्जावान एनर्जेटिक और उत्साहित महसूस करेंगे। पारिवारिक रिश्तों में निकटता बढ़ेंगी। आपसी समझ मजबूत होती चली जाएंगी। यात्रा या घूमने फिरने की योजना बन सकती है। कोई पुराना आर्थिक मामला सुलझने से मन को राहत मिलेगी। व्यापारिक कारणों से बाहर जाने का अवसर मिल सकता है। बस संतान के साथ हल्की नोकझोंक संभव है लेकिन प्रेम और संवाद से सब सामान्य रहेगा।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: क्लास में आज आपके मन में नए विचारों और नई योजनाओं की लहर उठ सकती है। कुछ अलग करने की इच्छा आपको प्रेरित करेगी लेकिन नए लोगों पर तुरंत भरोसा करने से बचे। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी भले ही वो आपकी अपेक्षाओं से थोड़ी कम हो। दूसरों के मामलों में अनावश्यक दखल देने से बचने से आपको फायदा होंगे और आपकी सकारात्मक सोच और रचनात्मक दृष्टि अंततः लाभ दिलाएगी। बेस्ट ऑफ लक टू यू बोल एंड लवली डे अहेड।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

लवली गाना लता जी और नितिन मुकेश की आवाजों में। तो बस थोड़ी देर में यानी कि 6 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार। तब तक अगला गाना आपके नाम रिया पामिसा एंड 11 इयर्स। बेस्ट विशेस फ्रॉम मामा शिवरानी, भाई रोहन, पापा राजेश, मामू है, नानी है, सविता, भरोसी परिवार वामुगत से। देखो कितनी खुश हो गई रेशमा, जितनी भी रेशमाएं सुन रही हैं चेहरे पर स्माइल। आप हो रेशमा नहीं, लेकिन जो भी हो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। कैथो कोको से है संजीता, रीना, आपके बेबीज प्रत्युष, दुर्वांश, शीना के नाम। साथ में आपकी माँ रेणुका, पापा मनोज, हर दयाल परिवार के लिए।

A very good morning आपको दूती का खिबिया दिख रहे और सिरक हुजाना परिवार के लिए साथ में है लवली मॉर्निंग आपको हेमलता भंजन फ्रॉम पोएटो पीमो एंड शुभ दिन माय डियर टेक केयर आपको भी ललिता एंड जीतन फैमिली हेलो जी नमस्कार

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: छह बजे है। सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज़ आपसे। आस्था नमस्कार आपको।
6: नमस्कार, छह बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कुछ

0: हम खमरे जिन्हें हम विस्तार देंगे 6:30 के समाचारों में। राष्ट्रीय सभा में बजट का बहस जारी। श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने बजट 2026-2027 को साहसिक और जिम्मेदार बताते हुए कहा कि पेंशन प्रणाली में सुधार जरूरी है। उन्होंने मैटरनिटी लीव को एक वर्ष और पैटर्निटी लीव को 6 सप्ताह तक बढ़ाने के फैसले का भी स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम द्वारा मीन्स टेस्ट को फिलहाल स्थगित करने के फैसले का कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया। अलावा मुगिस ने इसे जनता की आवाज की जीत बताया है। उधर बजट 2026-2027 में कलाकारों के लिए घोषित कदमों का आर्टिस्ट यूनियन ने स्वागत किया और सरकार से इन घोषणाओं को जल्द लागू करने की अपील की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। नए नेता के चयन तक वे प्रधानमंत्री बने रहेंगे। फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर अंतिम 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस मुकाबले में लियोनेल मेसी ने दोनों गोल किए और इसके साथ ही वे विश्व कप इतिहास के सबसे सफल गोल स्कोरर बन गए हैं। और अब चलिए जानती है मौसम का हाल। मस्करिंस के दक्षिण पश्चिम में एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य और ठंडी हवाओं का असर बरकरार रहेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज सुबह के दौरान विशेष तौर पर ऊंचे इलाकों पर बरसात हो सकती है और अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी। शाम को और रात को भी पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर रहकर बरसात होगी और बादल घिरे रहेंगे। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की मांग की जाती है। तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 14-16 और अधिकतम 20-23 डिग्री, न्यूनतम साहली इलाकों पर 18-20 और अधिकतम 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 7:45, सूर्यास्त 5:39 पर होगा।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2,
2: Radio Musty.

हम तो कहीं गए ही नहीं थे, बस आपके साथ, आपके पास, आपके और करीब। 6:08, वेलकम बैक टू रेडियो मस्तिष्क राइज एंड शाइन। एंड ऑफ कोर्स आप भी आ जाए, हमारे हम सफर बने हुए हैं, दिल से शुक्रिया आपको। एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग। हबी विशाल ड्राइव कर रही है फ्रॉम गुडलैंड्स टू फ्लैग फ्रॉम वाइफ माधवी, प्लीज ड्राइव सेफली। वैसे काफ़ी शायद बारिश भी हो रही है कहीं पर, या फिर मौसम ठीक ठाक है, सुहाना है, जो भी हो अपना ख्याल रखिएगा। मनसुख परिवार एंड आकाश, गुड मॉर्निंग माई डियर फ्रॉम बॉम्बू, व्हाटएवर यू माइट बी स्टिल ट्यून्ड, मस्ट ऑफ द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक ओनली फॉर यू। एंड आपके मैसेजेस, आपके पैगामों के साथ आपके बर्थडे विशेस। प्यार की राहों पे बस दो ऐसे अजनबी मिल जाते हैं जिनके दिल दो मिल जाते हैं और एक बन जाते हैं। वाह क्या बात है। बस ऐसे ही प्यार कीजिए, प्यार बांटिएगा। एंड सफर में होंगे, प्लीज अपने सफर को एंजॉय कीजिएगा, लेकिन केयरफुली। एंड वो कोश टू ऑल दोस गोइंग टू वर्क। ये लवली गाना आपके नाम रेखा, बेटा अंश, पोम्बोजू से एंड टू योर फैमिलीज़।

लवली रोमांटिक ट्रैक्स और ये गाने जो है ना फ्रॉम द 90s भुलाए से भी भूल नहीं सकते हैं. व्हाट से कविता है, वेरी गुड मॉर्निंग आपको. हाय नीतू, मैं आरती बालीसों से गाना हो जाए पूरे परिवार के नाम फ्रॉम मोताबाद जीटू फैमिली के लिए, मोदालबिया से सुकन परिवार, हमारी टीम के लिए भी थैंक यू सो मच माय डियर. और ये गाना आपके नाम चलाते हैं. वेल प्लीज डेडिकेटेड टू माय बेटी अनवी, बेटा वीर, लवली हस्बैंड प्रकाश और लक्ष्मण परिवार के नाम. आप सब तो हमारे परिवार ही हैं. सो वेयरएवर यू माइट बी द नेक्स्ट ट्रैक गोज़ आउट टू यू.

बाहर बन के तो आप हमारी जिंदगी में आए हैं. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग रीना संजीता फ्रॉम कैथ कोको. गाना आपके नाम, आपके बेबीज एंड आपके पूरे परिवार. हैप्पी 15th बर्थडे टू प्रिंसेस रबीहा, चुलन ऑफ रोड्रिग्स, स्वराज नाया, रविश प्रिशा, लवशन दिया वंस की तरफ से ढेर सारा प्यार. यही गाना आपके नाम. आइडिया अमृता फ्रॉम पॉइंट साबल. गुड मॉर्निंग धनेश्वर जी फ्रॉम बॉम्बू. सुनीता आपकी पत्नी निशा, रेखा, मीना, ऋषि, तहान, हंसवी, दविदुस, सनीचर परिवार. एंड थैंक यू हम आपको कहेंगे जो आप हमारे हम सफर बने हुए हैं. एंड यही गाना आपके लिए चलाते हैं.

वहां पर है कौन वेल वेल वेल वेल मैं देख रही हूँ कौन है भाई ओके हेमा आपके नाम आइडिया एंड आपके पूरे परिवार के लिए बिल्कुल नहीं बदलेंगे बस 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन उसके बाद बेटी दा के साथ मॉर्निंग बीट

मंगलवार 23 जून की सुबह ये नया दिन आप सभी के लिए शुभ हो। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। राज्यसभा में बजट पर बहसें जारी। श्रम मंत्री ने कल बजट 2026-2027 को साहसिक और जिम्मेदार बताते हुए कहा कि पेंशन प्रणाली में सुधार समय की मांग है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लू इकोनॉमी, मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव से जुड़े कदमों का भी स्वागत किया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम द्वारा मीन्स टेस्ट को फिलहाल स्थगित करने के फैसले पर चर्चा जारी। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभों का कहना है कि इस मामले में प्रधानमंत्री के फैसले को प्राथमिकता दी गई है और नवा मोहिस के नेता ने भी इस निर्णय का किया स्वागत। आर्टिस्ट यूनियन ने बजट 2026-2027 में कलाकारों के लिए घोषित कदमों को सकारात्मक कदम बताया और

0: और उन्हें जल्द लागू करने की अपील की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। नए नेता के चुनाव तक वे प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। विश्व कप में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर अंतिम 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस मुकाबले में लियोनेल मेसी ने दोनों गोल किए और इसके साथ ही वे विश्व कप इतिहास के सबसे सफल गोल स्कोरर बन गए हैं। सुर्खियों को हम देते हैं विस्तार। बजट 2026-2027 को एक साहसिक और जिम्मेदार बजट बताते हुए श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने कल राष्ट्रीय सभा में बजट बहस की शुरुआत की। उनका कहना है कि पेंशन प्रणाली में सुधार आवश्यक है क्योंकि मौजूदा व्यवस्था लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह सकती। उन्होंने ये भी कहा कि AI और ब्लू इकोनॉमी जैसे सेक्टरों में घोषित कदम ऐसे देश की नींव रख सकते हैं जो भविष्य की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। रिजाउतिम को सुनते हैं। कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद प्रधानमंत्री ने बजट घाटे को 3.7% रखने का प्रयास किया है और सार्वजनिक कर्ज को और कम करने के प्रयास तेज है। ये वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करने वाला बजट है। इससे मॉरिशस भविष्य की संभावनाओं के सामने बेहतर तरीके से तैयार होगा।
1: C'est un budget qui restaure la discipline fiscale tout en préparant Maurice aux opportunités de demain.
0: तो बजट 2026-2027 को एक साहसिक और जिम्मेदार बजट बताते हुए श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने कल इन बहसों की शुरुआत की। गिजाउद्दीन ने मैटरनिटी लीव को 1 साल तक बढ़ाने और पैटर्निटी लीव को 4 हफ्ते से बढ़ाकर 6 हफ्ते करने के फैसले का भी स्वागत किया। उन्होंने माना कि इस फैसले के बाद कुछ कंपनियां महिलाओं को नौकरी पर रखने में हिचकिचा सकती हैं, लेकिन उनका कहना है कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह का भेद भाव ना हो, इसके लिए कानून में पहले से ही जरूरी प्रावधान मौजूद हैं। उन्हें सुनते हैं।
1: Mais au-delà de ces garde-fous, je pense sincèrement que le fait que les 6 mois de congé soient à mi-salaire devait servir d'incitation aux employeurs.
0: मैं सोचता हूं कि ये 6 महीने कदम कंपनियों को अपनी कार्य प्रणाली पर फिर से गौर करने का अवसर देता है। इस तरह वर्क फ्रॉम होम और फ्लेक्सी टाइम को बढ़ावा दिया जा सकेगा। ये कंपनी के हित में ही होगा। माएं घर से ही काम कर सकेंगी या फ्लेक्सी टाइम लागू किया जा सकेगा। 3 से 4 दिन दफ्तर का काम भी प्रस्तावित किया जा सकता है आधी मासिक तनख्वाह के बदले।
1: Peut-être 4 fois par semaine ou 3 fois par semaine, au lieu de la laisser rester à la maison et percevoir un salaire, un mi-salaire, un demi-salaire.
0: तो कल राष्ट्रीय सभा की बैठक फिर से शुरू होने पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मीन्स टेस्टिंग को फिलहाल रोकने की घोषणा की। इस व्यवस्था के तहत रिटायरमेंट पेंशन पाने वालों की आय और आर्थिक स्थिति की जांच की जानी थी। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो का कहना है कि इस मामले में आखिरकार प्रधानमंत्री के फैसले को आगे रखा गया है, भले ही आर्थिक नजरिए से मीन्स टेस्टिंग को उचित माना जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनती तो दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता था। अशोक सुभो ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक के बाद कल उन्होंने पत्रकारों से बात की। उन्हें सुनते हैं।
2: Une rationalité parce qu'il y en a un issue là. Mais c'est dire ce compassion pour le peuple imprimé et ban ministre qui est là, ban député qui est là. Nous apprécions ça et assez. Et ça qu'elle nous a tiré sa conclusion, c'est pas à moi de dire au Premier ministre qu'il bise à faire. C'est la réforme du means testing, du targeting, in zélé. C'est ça le mot que le Premier ministre nous a mis dans l'Assemblée nationale. In zélé, il y en a plusieurs implications. Mais du tout, nous avons réfléchi ensemble que nous pays pour sortir et depuis spirale d'endettement et préserve nos banaquis sociales et qui nous aident l'économie qui solide. Hein. C'est une responsabilité de tout le monde, ça.
0: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम द्वारा पेंशन सुधार के तहत मीन्स टेस्ट को फिलहाल स्थगित करने के फैसले का कई राजनीतिक और सामाजिक पक्षों ने स्वागत किया है। बजट 2026-2027 पेश किए जाने के बाद इस कदम को लेकर कई प्रतिक्रियाएं और चिंताएं सामने आई हैं। अनावामोकिस के नेता पैट्रिक बेलकू ने उन मर्शनों की सराहना की जिन्होंने इस बजटीय कदम के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। उनका कहना है कि सरकार का ये फैसला दिखाता है कि लोकतांत्रिक बहस में नागरिकों की भागीदारी और उनकी राय कितनी महत्वपूर्ण है। उन्हें सुनते हैं।
3: Mais encore une fois, Ban Mauricien, il montrait qui, si dans Ban Parti politique et dans Ban Yes Men.
0: Marshallon ne bar phir dikhaya hai ki agar rajnitik partiyon mein Yes Men hai, par hum maidani star par karyarat hai, hum ye ravaiya nahi apna sakte aur ye swikar nahi kiya ja sakta. Hamare adhikaron ka palan hona chahiye. Ye zaruri hai ki Marshallon janta is anubhav se seekhe.
3: Donc, il est important que Ban Mauricien tire leçon de ce qui peut passer.
0: आज सुबह 8:15 जनरल वर्कर्स फेडरेशन से अश्विन गुडी पेंशन व्यवस्था में प्रस्तावित सुधारों पर अपनी बात रखेंगे। इसके बाद पीएमएसडी के नेता जावेद उज्जवाल आज सुबह 10:00 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे बजट 2026-2027 में घोषित कदमों पर भी प्रतिक्रिया देंगे। बजट 2026-2027 में कलाकारों और सांस्कृतिक सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए घोषित कदमों का आर्टिस्ट यूनियन ने स्वागत किया है। एक बयान में संगठन ने कहा कि ये फैसले उन मांगों को ध्यान में रखकर किए गए हैं जिन्हें वे कई वर्षों से उठा रहा था और आर्टिस्ट यूनियन के अनुसार ये पूरे कला और संस्कृति सेक्टर के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। संगठन ने सरकार से इन घोषणाओं को जल्द अमल में लाने की अपील की, साथ ही कलाकारों को बेहतर पहचान और सामाजिक सुरक्षा दिलाने के लिए अपना सहयोग जारी रखने की भी बात कही। विदेश स्तर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले आम चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए वे सबसे उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं। नए नेता के चयन तक वे प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेबर पार्टी में नेतृत्व चुनाव की प्रक्रिया 9 जुलाई से शुरू होगी। इस बीच मॉकफील्ड उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाले एंडी बर्नहम को उनका संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है। विश्व कप में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर अंतिम 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस मुकाबले में लियोनेल मेसी ने दोनों गोल किए और इसके साथ ही वे विश्व कप इतिहास के सबसे सफल गोल स्कोरर बन गए हैं। मेसी के नाम अब विश्व कप में 18 गोल हो गए हैं। चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके मस्करविंस के दक्षिण पश्चिम में एक एंटीसाइक्लोन पाया जा रहा है जिसकी वजह से हमारे इलाके पर ठंडी और सामान्य हवा की लहरों का असर जारी रहेगा। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान विशेषकर ऊंचे इलाकों और हवाई ढलानों पर रह रहकर बरसात हो सकती है। अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी। रात के मौसम की बात करें तो पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो पर बादल घिरे रहेंगे। तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 14-16, अधिकतम 20-23 सेल्सियस, न्यूनतम अन्य इलाकों पर 18-20, अधिकतम 25-27 सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं जाने की अपील की जाती है। सूर्योदय 7:45 और सूर्यास्त 5:39 पर।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे कादिर, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: Shok Samachar Suni, Avenue La Sereng, Palma. रोड 94 83 साल की 83 years old की श्रीमती सुभावती खुरबुर की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम दुखिया, लोग उन्हें बिदंती के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 1 बजे उन्हीं के मकान काट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा काट्रोबोन की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। एवेन्यू मेयर तेरेजा बासें काट्रोबोन में 101 साल की 101 years old किसनाउती घुराऊ की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम विदेशी, लोग उन्हें केवली दादी लोकी के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनके बेटे नंदराज घुराऊ के मकान काट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा काट्रोबोन की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। लवानी वाकुआ में 60 साल के 60 years old सत्याराव लिम्बिया की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें जीतन के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उन्हीं के मकान वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। कारोलिन रोड वाले दे प्रेत में 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड की धर्मावती रामफल की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम भुजावन, लोग उन्हें बबीता के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उन्हीं के मकान वाले देवघत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोले वाले देवघत की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। बुबन रोड पिलग्रे सेवास्तोपोल में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री जगदत्त घुरा की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उनकी पत्नी मिला घुरा के मकान सेवास्तोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदेमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। कुसियाल लेन पालमा काट्रोबोन में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड के श्री किरालाल मना की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें ज्ञान के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन की 1 बजे उन्हीं के मकान काट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। बॉशरी रोड पिटी वेजे सैंपियामी 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड भगवंत राम भजन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम रघुबर, लोग उन्हें कुमारी के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उनके दामाद डॉक्टर संजय बेगू के मकान सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसों सैंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। आले जाक बॉम्बू में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की बीसी पति मुनीराम की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम चितामन, उनके अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनके बेटे ज्ञानदेव मुनीराम के मकान बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई सैंपिया बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। दालिया रोड रिशमो में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के गणेशन मुचिया की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें दासन के नाम से ज़्यादा जानते थे और वे पहले कौंदुमास SSS में अध्यापक के तौर पर काम किया करते थे। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनकी बेटी काविदा मुचिया के मकान फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदुमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। विशाल अंचराज समसुंदर रोड बेलवेडिया में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की कुशीला अंचराज की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम जीवन, लोग उन्हें सीला के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी बेटी विशाल अंचराज के मकान बेलवेडिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंदेमास पावे की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। कालीमाल रोड ग्रानिवर साउथ ईस्ट में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्री बासदेव रघुनाथ की मृत्यु हो गई है, लोग उन्हें गोप के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दिन की 11 बजे उनकी पत्नी मिसेज मानती रघुनाथ के मकान ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। स्कूल लेन दागुतिया में, स्कूल लेन दागुतिया में 48 साल की 48 years old रिश्वती कुदी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम नियासू, लोग उन्हें सजनी के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दिन के 10:30 बजे उनके पति रामेश मोहन प्रसाद के मकान दागुचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्टॉन्स सैंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। अवनी सीते पद को तमागेमे, तमागेमे 47 years old के श्री नारायण देव निमाय की मृत्यु हो गई है, लोग उन्हें बबल के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज सुबह 3 बजे उन्हीं के मकान तमाहे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिवियनुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। बस्के लेन लाक्वाजे शिबेल क्रोकायू में 86 साल के 86 years old के श्री हेमराज कुंजू बिहारी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान खोकायू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ऋषलुए की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। अनिरुद्ध जागेसर रोड यूनियन वेल में 81 years old की श्रीमती संता जागेसर की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम बरीलाल, लोग उन्हें मैडम अनिरुद्ध के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उन्हें के मकान यूनियन वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रणमानियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

Once प्यार का असर पड़ जाए ना वो खत्म होता ही नहीं. 6:53 time to say bye bye. बस थोड़ी देर में मॉर्निंग बीट वेदिता के साथ. Have a nice day ahead. Stay safe.

0: सुबह के 7:11 हुए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइस, वेलकम टू मॉर्निंग बीट। जी हाँ बिल्कुल, आपका प्यारी है जो हमें खींचे चला ले आता है आप ही के साथ यहाँ पर टू स्पेंड सम टाइम विद यू।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: अरे भाई, इस मस्त मॉर्निंग में मस्त मस्त मूड हो जाए तो क्या बात है। वैसे भी सुबह का ये जो मौसम होता है ना, ठंड ठंड ठंड, मज़ा तो आता है लेकिन मज़ा आता है सोने में, जागने में नहीं। लोग कहते हैं नहाने के लिए, अरे मम्मा पहले पानी तो खोल दो, जब गर्म पानी गिरने लगे तब हम नहाने जाएंगे, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। और सुबह में अगर लोग जो होते हैं उनको ज़्यादातर गर्म चीज़ें पसंद होती हैं, गर्म चाय, गर्म कॉफ़ी, गर्म गर्म अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपको ना थोड़ा सा टेम्परेचर जो है उसके हिसाब से चलना चाहिए। जैसे कि हम हमेशा आपसे कहते हैं कि अगर बाहर जो है बाहर का जो मौसम है, अगर आपको लगता है कि बाहर 30 डिग्रीज है तब आप एसी लगाते हो, तो आप उसको 26 पे लगाना, इतना भी बड़ा 17 में मत डालना। वैसे ही जब विंटर का समय आता है तब भी हम यही कहते हैं कि भाई इसके साथ भी एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ कंबल के नीचे रहे, बहुत सारे कपड़े पहने। अरे भाई विंटर है, थोड़ा इसका भी मज़ा लीजिए, थोड़ा सा आप जॉगिंग के लिए निकले। बाहर का मौसम सर्दी का मौसम है तो ऐसे में जॉगिंग करना और भी मज़ेदार होता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं अब हम ठंड है ना बाहर, हम जॉगिंग के लिए नहीं जाते, तभी तो आपको जाना पड़ता है। तो जैसे आप गर्मी के सीज़न में जाते हैं समुंदर, वैसे ही आप सर्दी के मौसम में बाहर जाइए, वॉक पे जाइए, जॉगिंग कीजिए, पसीने छूट जाएंगे और आपको ये सर्दी फील भी नहीं होगी। तो चलिए इसी के साथ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड वेलकम टू योर मॉर्निंग बीट। गीतों का सफर शुरू हो चुका है, साथ साथ रहेंगे हम 9 बजे तक।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: भाई इस गाने में तो प्यार ही प्यार भरा है, ऐसे फूट फूट के प्यार निकलता है इस गाने से। लेकिन हाँ, एक बात कहूँ आपसे, लव सिर्फ आई लव यू कहने में नहीं होता, बल्कि टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, स्माइल प्लीज, इन सारी चीज़ों

में भी छलकनी चाहिए, छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं जिसमें प्यार छलकना चाहिए। तो किसी को आप देखो जो आपके दिल के करीब हो, तो उनको हैव अ गुड डे, हाय, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आज आपकी स्माइल बहुत अच्छी लग रही है, स्माइल करते हो आप कितने अच्छे लगते हो, हाँ, लेकिन अनजानों से मत करना, लड़कियों से बोलोगे तो दोनों गाल अभी सर्दी के मौसम में अपने आप लाल हो जाएंगे। तो चलो इसी के साथ अभी हम आपसे कहेंगे, अगर आप भी किसी को दिल से चाहते हैं, अगर कोई आपके दिल के बहुत करीब हैं, उनको अगर आप सरप्राइज करना चाहते हो, उनको हैप्पी बर्थडे टू यू गाकर नहीं सुना सकते तो कोई बात नहीं, वो मैं गा लूँगी, उसको आप मुझ पर छोड़ दो, बस आपको करना क्या है, आप उनका फ़ोन नंबर और उनका नाम मुझे भेज दीजिए, और नंबर आपको पता है 549-1294। जी हाँ, किसी का भी बर्थडे है लेकिन बर्थडे आज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अगले हफ्ते है, आप अभी से सरप्राइज करना चाहते हो, बर्थडे जो है वो आज ही होना चाहिए, तो जल्दी करो उनका नाम और उनका जो फोन नंबर है मुझे भेजिए, और यहाँ पर हम तैयारी करते हैं मुकाबले की।

0: हेलो, हाँ एक मिनट, एक मिनट। हेलो हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो
1: भी,
0: हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
0: हाय, मेरा नाम है सांभा।
1: सांभा?
0: हाँ जी, मैं जॉलीवुड से हूँ और हम लोग फिल्म बना रहे हैं। आपने रोहित शेट्टी की फिल्म देखी है ना, सिम्बा?
1: हाँ,
0: हम लोग बना रहे हैं सिम्बा राज।
1: महाराज।
0: हाँ जी, हम मॉरिशस में शूट कर रहे हैं, तो हमें पुलिस ऑफिसर्स की ज़रूरत थी। आप एक पुलिस ऑफिसर है ना, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है?
1: हाँ
0: हाँ तो आपने मुझे फंसा दिया। आप रेडियो सुन रहे हो? माय गॉड, मुझे लगा कि देखा, सब जहां जिसको भी फोन करो ना, वो रेडियो के साथ ही होता है। राजी, नमस्ते।
1: नमस्ते। ये नंबर से मैंने जान लिया।
0: ये नंबर आपकी? अच्छा, तो आपने नंबर सेव करके रखा। सुनो भाई, सुनो, नंबर चेंज करवा दो, इस नंबर से सबको पता चल रहा है। प्लीज हमारा नंबर चेंज करवा दो। अच्छा, तो आप रेडियो मस्ती सुनते हैं रोज,
1: हाँ रोज।
0: इसीलिए? तो कोई बात नहीं, आपकी बेटी है मनीषा, उन्होंने कहा था कि आपके साथ थोड़ा सा प्रैंक कर लूं, लेकिन पापा ने तो मेरे साथ ही प्रैंक कर दिया। लेकिन शुरू में आपको पता नहीं था, शुरू में आपको पता नहीं था, आपने
1: नहीं, शुरू में
0: सोचा।
1: नहीं
0: हाँ, मैंने
1: पता
0: बहुत मेहनत से हमने इनको छुपा के रखा और बहुत सारी इधर इधर
1: था।
0: बातें हो रही थी ताकि पापा जी को पता न चले कि हम कहाँ से फोन करें। तो रेडियो मस्टिक की टीम की तरफ से बस आपके लिए है

0: रेडियो
1: मस्ती।
2: भाई सिर्फ गाना गाने के लिए फोन नहीं किया, हमारा जो बर्थडे सरप्राइज है इज ब्रॉट टू यू बाय लोलो हाइपरमार्केट, और लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से रोज हम किसी ना किसी को सरप्राइज करते हैं। आज आपकी बारी, आज का लक आपका बहुत स्ट्रांग है आज, सो आपको मिल रहा है लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से एक वाउचर, लेकिन वो वाउचर आपको एमबीसी आके कलेक्ट करना पड़ेगा, या तो फिर आज या तो फिर कल, आपके पास दो दिन है। अगर आज मौका मिलता है तो प्लीज कम एंड कलेक्ट योर वाउचर, और लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से आपके लिए एक सरप्राइज है। तो बस थैंक यू सो मच, और मुझे अच्छा लगा कि आप हमें अच्छा लगा जानकर कि आप रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहते हैं और हमारे प्रोग्राम पसंद करते हैं। सो थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए, और आज का दिन आपके लिए जबरदस्त हो, खूबसूरत हो, और हमारे रेडियो में जो म्यूजिक चलता है ऐसे म्यूजिकल हो, ऐसे खुशियों से भरा हो। इसी के साथ थैंक यू सो मच एक बार फिर आपको, हैप्पी बर्थडे, डोंट फॉरगेट, अपने आईडी कार्ड के साथ जरूर आएगा अपने वाउचर को लेने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू वेरी मच, बहुत
2: नाचो, ओके बाय।
3: ओएमजी रेडियो मस्ती।
4: Hey, félicitations! Asti qui est chez Sidonpos, continue manzoli comme un boss! Tansa! SBM là pour et toi réalise ton rêve à l'université avec Banlon bien à

0: एंड दैट्स आशा भोसले फॉर यू लकी लिप्स। भाई अब हमारी लिप्स क्या बोलना चाहते हैं ये भी जान लेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे जो स्पोर्ट्स गुरु हैं वो भी रेडी हो, क्या चल रहा है हमने बोला हमें और जानना नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है।
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
2: स्पोर्ट्स न्यूज
3: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: एंड यस स्पोर्ट्स न्यूज के साथ आ गए हैं अरविंद जी। लेकिन अरविंद जी एक मिनट, सबसे पहले हम चलिए सुनते हैं लियोनेल मेसी का कमाल और रिकॉर्ड ब्रेकिंग मोमेंट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन आर यू रेडी?
4: His pass out to the left that started it. Look at him, edge of the box, right of the screen, walking onto it, just controlling it, passing it beyond Schlager into the Austrian net. And
5: he doesn't get there anyway. And it breaks for a loitering Leo Messi, who's got bags of options coming from the opposite flank.
6: लियोनेल मेसी अर्जेंटीना का मसीहा, फुटबॉल का बादशाह। लियोनेल मेसी का महारिकॉर्ड फुटबॉल के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित। लियोनेल मेसी ने 18 वर्ल्ड कप गोल दागकर फीफा फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मेसी अकेले अर्जेंटीना को कंधे में लेकर नॉकआउट राउंड में पहुंचा। पहले मैच में हैट्रिक, कल एक डबल ऑस्ट्रिया के खिलाफ। लियोनेल मेसी अब फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाला खिलाड़ी बन गया है। मेसी जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे के 16 गोल और ब्राजील के माता के 17 गोल को पीछे छोड़ते हुए 18 वर्ल्ड कप गोल का नया रिकॉर्ड बना पाया। ऑस्ट्रिया के खिलाफ शुरुआत में मेसी पेनाल्टी मिस कर गया, लेकिन शानदार वापसी रही। खेल के 38वें मिनट में पहला गोल दागकर इतिहास रचा। इसके बाद मैच के आखिरी पलों में इंजरी टाइम के 5वें मिनट में दूसरा गोल बनाकर अल्बी सेलेस्टे की टीम की जीत पक्की की और अर्जेंटीना आराम से नॉकआउट राउंड में पहुंचा। मेसी कल 24 जून को अपना बर्थडे मनाएगा। 39 साल का हो गया है, 39 ईयर ओल्ड, लेकिन नौजवानों जैसा खेल रहा है। इससे अच्छा जन्मदिन क्या हो सकता है। वैसे तोहफा तो मिल गया, रिकॉर्ड उसके नाम। याद दिला दे, 2016 में 10 साल पहले लियोनेल मेसी इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर हो चुका था, जब कोपा अमेरिका के फाइनल में हार हुई थी चिली के खिलाफ, जिसमें पेनाल्टी भी मिस कर गया था मेसी पेनाल्टी शूटआउट में। उसके बाद उसने कहा था, फॉर मी द नेशनल टीम इज ओवर, आई हैव डन ऑल

0: आई कैन, अर्थात मेरे लिए अर्जेंटीना के साथ सफर पूरा हुआ, जितना कर पाया मैंने किया, पर जब फैसला बदल कर वापस आया तब मेसी ही मेसी, ट्रॉफी ही ट्रॉफी, दो कोपा अमेरिका और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप। कल जब मेसी ने अपना डबल पूरा किया तब बीबीसी कमेंटेटर स्टीव बाउवर ने कहा, इट्स अनदर इमोर्टल मेसी मोमेंट, मेसी को फुटबॉल दुनिया की ओर से मेर्सी, आजीवन यादगार अमर पल मेसी के साथ। एक तरफ मेसी का डबल तो दूसरे ग्रुप में अर्लिंग हालैंड का भी डबल, नॉर्वे ने 3-2 से सेनेगल को हराया। फर्स्ट हाफ में पेडरसन का गोल, फिर हालैंड का डबल सेकंड हाफ में। सेनेगल के लिए दोनों गोल इस्माइल सा की ओर से रहे। इस जीत से नॉर्वे नॉकआउट राउंड में जा पाया, जबकि सेनेगल के पास एक भी अंक नहीं है। नॉर्वे का अगला मैच फ्रांस के खिलाफ होगा, ये देखने के लिए कि टॉप पोजीशन कौन लेगा, जबकि सेनेगल खेलेगा इराक के खिलाफ। मेसी का डबल, हालैंड का डबल, डबल का हैट्रिक पूरा किया एम्बापे ने। फ्रांस 3-0, किलियान एम्बापे की ओर से 2 गोल और 1 देम्बेले की ओर से। खराब मौसम के कारण मैच का सेकंड हाफ 2 घंटे बाद शुरू करना पड़ा। किलियान एम्बापे अब मेसी के पीछे है। वर्ल्ड कप के ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर ताज के लिए लियोनेल मेसी के पास है 18, एम्बापे के पास है 16 गोल। कांटेदार मुकाबला होगा इन दोनों के बीच इसी वर्ल्ड कप में। आज रात ग्रुप के और ग्रुप एल के 2 मैच, पोर्टुगल वर्सेस उज्बेकिस्तान ग्रुप के में ये 9 बजे खेला जाएगा, और इंग्लैंड वर्सेस गाना ग्रुप एल मिडनाइट किक ऑफ अभी थोड़ी देर बाद 8:30 बजे। इन दोनों मैचों पर आपको ज्यादा डिटेल देंगे मैच प्रीव्यू, इंग्लैंड गाना वाला मैच भी। आज सुबह एक मैच अभी इसी समय खेला जा रहा है, ये मैच है जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच, और कल सुबह 3 बजे पनामा वर्सेस क्रोएशिया। दोनों की हार हुई थी पहले मैच में, इसीलिए जियो या मरो वाला मैच होगा। और सुबह 6 बजे कल कोलंबिया वर्सेस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। टेनिस, पूर्व विंबलडन चैंपियन मार्केटा वोंदरसुवा को एंटीडोप टेस्ट करने से इनकार करने पर 4 सालों के लिए सस्पेंड किया गया है। डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर उसके घर आया था, पर वोंदरसुवा ने टेस्ट करने से इनकार किया। 2023 में वोंदरसुवा पहली खिलाड़ी बनी थी जो अनसीडेड थी पर चैंपियन बनी। इन दिनों विंबलडन के क्वालिफाइंग मैच खेले जा रहे हैं। और अंत में फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में एक नया पन्ना खोला गया। लियोनेल मेसी बना ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर। रिकॉर्ड बेहतर बनाने के लिए और मैच है, पिक्चर अभी बाकी है। किलियान एम्बापे जैसा चैलेंजर है, और इस वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर रेस में अर्लिंग हालैंड भी जुड़ गया है, इसीलिए ये वर्ल्ड कप खास है, ये वर्ल्ड कप अलग है। और एमबीसी रेडियो हो या एमबीसी टीवी, आप तक ला रहे हैं लाजवाब खबरें और मैचों का सीधा प्रसारण भी। हमारे साथ जुड़े रहिए। हैव ए वंडरफुल टाइम लिसनिंग RM2। आई विल कैच यू एट 8:30 for the World Cup special. Take care. Bye-bye.
1: Thank you, Arvind. Thank you so much.
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: घड़ी मिलाते चलिए, इस समय सुबह के 8 बजे हैं। नमस्ते, सुना भोजपुरी में समाचार। बजट 2026-2027 के एगो साहसी और ये जिम्मेदार बजट बतावत। श्रम मंत्री गिजाउद्दीन काल राज्यसभा में बजट बहस के शुरुआत करलन। ओकर कहना रहल कि पेंशन व्यवस्था में बदलाव जरूरी बा, काहे कि मौजूदा व्यवस्था लंबा समय ले नहीं चल सकी। वही भी बोलन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लू इकोनॉमी जैसन सेक्टर खातिर घोषित कदम देश के भविष्य खातिर मजबूत आधार तैयार करत बा। श्रम मंत्री गिजाउद्दीन मैटरनिटी लीव के एक बरिस ले बढ़ावे और पैटरनिटी लीव के 4 हफ्ता से बढ़ावे के 6 हफ्ता करे के फैसला के स्वागत करलन। उकर कहना बा कि ई फैसला के बाद कुछ कंपनी महिला लोगन के नौकरी देवे में हिचकिचा सकत बा, बकिर कानून में ऐसन प्रावधान मौजूद बा जमे कोनो तरह के भेदभाव नहीं हुई। सांसद रुखसना कोलेट, रोशन जमन और रूबीना दोरियाऊ भी बजट बहस में हिस्सा लेलन जा। बजट पर बहस आज फजीर के 11:30 बजे राज्यसभा में फिर शुरू हुई। कल राज्यसभा की बैठक फिर शुरू भैला परी। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम मीन्स टेस्टिंग के फिलहाल रोक देवे के घोषणा करलन। ई फैसला के तहत पेंशन पावे वाला लोगन के आमदनी और आर्थिक स्थिति के जांच होके ओला रहल। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभ

0: लोगों के कहना बाकी ये मामला में आखिरकार प्रधानमंत्री के फैसला के प्राथमिकता दिहल गल चाहे आर्थिक नजरिया से मींस टेस्टिंग उचित रहल उ ये भी कहलन कि अगर ई मुद्दा पर ही सहमति नहीं बनी तो दूसर विकल्प पर भी विचार करल जाए अशोक सुभों ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि लोगन से मुलाकात के बाद ई बयान देलन प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम देनी से मींस टेस्ट के फिलहाल स्थगित करे के फैसला के कई गो राजनीतिक और सामाजिक पक्ष स्वागत कर ले बा बजट 2026-2027 पेश भैला के बाद ये कदम के लिए कई प्रतिक्रिया और चिंता सामने आयल बा ओनावा मोगी समर्थन लोगन के सराहना कर ले बा जे ये कदम के खिलाफ अपन आवाज उठैलन जा संगठन जे के कहना बा कि ई फैसला दिखावत बा कि लोकतांत्रिक बहस में नागरिक लोगन की भागीदारी और राय कितना महत्वपूर्ण बा बजट 2026-2027 में कलाकार और सांस्कृतिक सेक्टर से जुड़ल लोग खातिर घोषित कदम के आर्टिस्ट यूनियन स्वागत कर ले बा एगो बयान में संगठन बोल ले बा कि फैसला उस सब मांग के ध्यान में रखल कि रिहल गल रहल कि कई गो बरिस से उठावल जात रहल आर्टिस्ट यूनियन के अनुसार ई पूरा कला और सांस्कृतिक सेक्टर के साझा प्रयास के नतीजा बा संगठन सरकार के से ई घोषणा के जल्दी लागू करे के अपील कर ले बा साथ ही कलाकार लोगन के बेहतर पहचान और सामाजिक सुरक्षा दिलावे खातिर अपन सहयोग जारी रखे के भी बात बोल ले बा दूसर देश के खबर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टॉर्मर लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देवे के घोषणा कर ले हवन नवा नेता चुने जाए ले उ प्रधानमंत्री के पद पर ही रहियन लेबर पार्टी में नेतृत्व चुनाव की प्रक्रिया 9 जुलाई से शुरू हुई विश्व कप में अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया के 2-0 से हरा के अंतिम 32 में अपन जगह पक्का कर ले लेबा ये मुकाबला में लियोनेल मेसी दोनों गोल करलन वो विश्व कप इतिहास के सबसे सफल गोल स्कोरर बन गल हवन तो ये रहल हमनी के भोजपुरी में समाचार हमनी के सुनला जा धन्यवाद
1: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musty.
3: La petite, ils avaient tout sans zé, Mouti Time avec Formland.
4: Madame Sheila, mais petit déjeuner.
3: Asté, et nos céréales à boire Formland Family Céréales. Tac, tac, tac, nos petits déjeuners de Paris.
4: Ah, ben oui, Madame Sheila, ou toujours bien smot.
3: Mais normal, et quand vos sorties travaillent, une appli réconfortant qui retrouve la famille, autour d'une bonne préparation avec Formland.
4: Mmh, ou fais-moi faire.
3: Asté avec Formland Hot Chocolate, l'avion complice ta maman.
4: Si à tout qui s'agose pour les Sengu, pas assez!
3: Encore plus simple, encore plus préparation et encore plus gourmand.
4: Insté avec Formlen, nous gagnons encore beaucoup plus.
3: Formlen, ça même nous, Smart Choice.
1: Morning Beat.
5: Oh God, one more remix.
1: A good beat for your morning show.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musti.
2: ओह माय गॉड, कितना मजा आ गया गाना सुन के, हंस के, डांस करके. वेल, गुड मॉर्निंग. सुबह के 8:09 हुए हैं. यू आर लिसनिंग टू मॉर्निंग वीर विनीता के साथ आपके अपने रेडियो मस्ती पर. पता है दोस्तों, लाइफ में थोड़ा फन जरूरी होता है. आज किसी दोस्त को बिना वजह एक फनी मैसेज भेजो, ऐसे हमने तो गाना ही चला दिया. एक छोटी सी स्माइल ना किसी का पूरा दिन बना सकता है. सो ये गाना था स्पेशली दीपू, शीतू और नीतू के लिए, जिन्होंने इस गाने को इतना इंजॉय किया, इतना डांस किया कि मैं क्या बताऊं. आप लोगों ने भी किया होगा, डोंट टेल मी नो, क्योंकि मुझे पता है जब ऐसे गाने चलते हैं मॉर्निंग में ना, गाड़ी में मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे सर हिलाते हुए देखा है, एंड दे जस्ट एंजॉय द म्यूजिक. पता है लाइफ में ना सबकी स्ट्रेस होता है, सबके प्रॉब्लम्स होते हैं. अपने स्ट्रेस को गैस की तरह ट्रीट किया करो, ज्यादा देर रुकने मत दो. थोड़ी देर आए, ओके, टाटा बाय बाय, डीप ब्रीदिंग के 5 राउंड ले लीजिए और फिर अपना कोई फेवरेट गाना हो तो सुन लीजिए. ये जो स्ट्रेस है ना, ये भाग जाता है. फिलहाल अभी के लिए भागना नहीं, बुलाना है आस्था को, क्योंकि हमें जानना है कि आज पूरा दिन मौसम कैसा रहने वाला है.
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
3: ऑन इट टू स्विनर्स.
4: मस्करिंस के दक्षिण पश्चिम में एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य और ठंडी हवाओं का असर बरकरार रहेगा. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज सुबह के दौरान विशेष तौर पर ऊंचे इलाकों पर बरसात हो सकती है और अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी. शाम को और रात को भी पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो पर रहकर बरसात होगी और बादल घिरे रहेंगे. हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं. प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. दूर समुद्र में नहीं निकलने की मांग की जाती है. तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: सो माय डियर फ्रेंड्स, सुबह के 8:19 हुए हैं, विदिता का साथ दे रहे हैं आप लोग। और इस मॉर्निंग में चलिए भाई, जो लोग अभी थोड़ा सा टेंस फील कर रहे हैं, थोड़ा आपको लग रहा है कि भाई लाइफ में सही नहीं जा रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि लाइफ में जब सब कुछ सही नहीं जाता है ना, तभी आपको मौका मिलता है अपने बारे में सोचने का।
3: Avant tout défi, de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: दोस्तों, समय कभी रुकता नहीं, इसलिए जिंदगी में हर पल को वैल्यू दो। जो वक्त का सम्मान करता है, वक्त उसे सफलता का इनाम जरूर देता है। देखो भाई, हर सुबह हमें 24 नए घंटे मिलते हैं, ना कल का वक्त वापस आता है, ना आने वाला कल आज मिलता है। इसलिए आज को पूरी पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड और एनर्जी के साथ जियो। समय ना सबसे बड़ा टीचर भी होता है और सबसे बड़ा हीलर भी होता है। जो आज रो रहा है वो कल हंसेगा, जो आज हंस रहा है, अगर किसी को रुला के हंस रहा है तो कल उसकी भी रोने की बारी आएगी। जो चीज़ें आपसे आज छिन गई हैं, कल आपके पास उससे ज़्यादा इतनी सारी चीज़ें होंगी कि आप अपने गम को भूल जाओगे। अनजाने में अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया है, तो अगर आपको लगता है आपने किसी को हर्ट किया है, तो सॉरी बोलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ना ही इंसान छोटा हो जाता है। दोस्तों, घड़ी की सुई हर सेकंड आगे बढ़ रहा है, और सवाल ये नहीं कि कितना वक्त है, सवाल ये है कि हम अपने वक्त का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। सो हर एक मोमेंट, हर एक पल काउंट करता है। याद रखिए, ये पल जो बीत जाते हैं, ये वापस नहीं आते, इसलिए ये जाते हुए पलों को इतना खूबसूरत

0: बनाइए कि जब भी आप इसके बारे में सोचें तो आपके होठों पे एक स्माइल जरूर आए।
1: Avant ton défi, ton long shift. Commence par une bonne décision. Nesca.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू रेडियो मस्ती. विनीता का साथ दे रहे हैं आप लोग मॉर्निंग बीच में. सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पता है आप ट्रैफिक में अभी फंसे होंगे. ट्रैफिक में पेशेंस रखिए, हॉर्न कब बजाए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और याद रखिए बेटर लेट देन नेवर. और साथ ही साथ आपके पास तो अभी मौका भी है, फोन है, आप मुझे एक मैसेज भेज सकते हो ऑन 5491294. चलो भाई, उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना ब्रेकफास्ट कीप नहीं किया होगा. प्रोटीन, फ्रूट्स और फाइबर से भरपूर ब्रेकफास्ट आपको दिन भर की एनर्जी देता है. अभी सर्दी का मौसम है ना, और सर्दी के मौसम में आपको पता है कि हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठंड में भी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ पानी पिया कीजिए. ये सर्दी का बहाना मत कीजिए. अगर ठंड पानी नहीं पिया जाता है तो गर्म पानी पी लीजिए और गर्म कपड़े पहनिएगा ज़रूर. हाँ, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे अगर इस्तेमाल किया जाए तो वाह क्या बात है. चलिए भाई, हम आपका साथ दे रहे हैं और थोड़ी देर में अरविंद से हमारी आपकी मुलाकात होगी. वर्ल्ड कप के बारे में क्या खबरें लेकर आ रहे हैं हमारा बच्चा, मिलेंगे थोड़ी देर में.
0: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.

0: जब से मेरे दिल को सुबह के 8:40 वेरी गुड मॉर्निंग टू यू माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉर्निंग बीट, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती। और यहाँ पर चलिए भाई, हमने जैसे आपको कहा था कि काफी सारे हमारे दोस्त हैं इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो वी से अ बिग हेलो टू राहुल एंड संजना। वैसे हाल में इनकी सगाई हुई, उनका रोका हुआ है, तो उनको हम नहीं रोकेंगे, आगे बढ़ते रहिए। एंड दे आर हेडिंग टू गंगा तालाब, नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर प्रीति जॉय, संजना के मम्मी पापा, वी हैव रूबी एंड राजेश। सो राहुल की पूरी फैमिली है यहाँ पर, उनके भाई संजय, उनके भाभी सुहानी, बड़े मामा, बड़े पापा और साथ में शेखर के साथ। अभी इन लोगों को कहेंगे बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, एंड समय हो गया है, गाना तो हम थोड़ी देर में चलाएंगे, अभी अरविंद वेट करें, मिल लें।
1: इट्स द वर्ल्ड कप मैगजीन ऑन RMQ विद माइटी।
2: Get ready for the biggest World Cup ever!
3: 2026 FIFA World Cup.
2: Pehli baar hongi 48 teams, 104 matches. Radio Masti ki team ke saath chaliye United States, Canada aur Mexico.
3: Radio Masti ke saath
2: World Cup magazine.
0: वर्ल्ड कप के चर्चे ही चर्चे, मैचेस पे मैचेस, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स। अब मैच ने अरविंद ने इनके साथ क्या कैच किया है ये

0: जानने के लिए आप ये वर्ल्ड कप कितना स्पेशल कितना खास है, चलिए अरविंद से जानते हैं। अरविंद,
1: वर्ल्ड कप स्पेशल मैगजीन, ये वर्ल्ड कप खास होने वाला है, हो गया है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। लियोनेल मेसी बना बादशाह जब उसने ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब देखना है आगे कौन से रिकॉर्ड तोड़े जाएंगे। किलियान एम्बापे पीछे है और अर्लिंग हालैंड भी खूंखार स्ट्राइकर बन गया है, तो इन तीनों के बीच इस वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर कौन बनेगा ये देखा जाएगा। बाकी लोग भी हैं, हैरी केन को नहीं भूलना चाहिए। सो आज के मैचों पर एक नजर डालते हैं। अभी मैच चल रहा है जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच। सेकेंड हाफ की शुरुआत में 1-0 से जॉर्डन की टीम आगे है। और आज रात ग्रुप के और ग्रुप एल के दो मैच, पोर्टुगल वर्सेस उज्बेकिस्तान, ये ग्रुप के का मैच है 9 बजे, और इंग्लैंड वर्सेस गाना ग्रुप एल का मैच मिडनाइट किक ऑफ। पोर्टुगल को संभलना होगा, पहले मैच में ड्रॉ किया था, खुद पर दबाव डाल रही है ये टीम। रोनाल्डो की टीम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के खिलाफ शॉकिंग 0-0 के ड्रॉ से सीखना होगा। आखिरी मैच कोलंबिया के खिलाफ है, इसीलिए आज जीतना बहुत जरूरी है। उज्बेकिस्तान की टीम पहली बार वर्ल्ड कप में खेल रही है, कोलंबिया के खिलाफ 3-1 की हार हुई थी। इस टीम में मैनचेस्टर सिटी का डिफेंडर अब्दुल कदीर कुसानोव है, उसका काम होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर नजर डालना। रोनाल्डो के फॉर्म पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, पहले मैच में कुछ खास नहीं कर पाया। मेजर टूर्नामेंट में पिछले 10 मैचों में रोनाल्डो ने स्कोर नहीं किया है। ओप्टा एनालिस्ट के अनुसार पोर्टुगल के विनिंग चांस 82% और ड्रॉ 12%, उज्बेकिस्तान की जीत 6%। इंग्लैंड वर्सेस गाना, टोमास टुरेल के थ्री लायंस आज ही नॉकआउट स्टेज के लिए टिकट बुक करना चाहते हैं। पहले मैच में लाजवाब आक्रामक खेल पर 4 गोल बने थे, पर डिफेंस में छेद है, 2 गोल कंसीड करना चिंता की बात है। दूसरी ओर गाना को पनामा को हराने में काफी कठिनाई हुई थी, इंजरी टाइम में जाकर 1-0 की जीत। गाना में अंतुआन सेमेन्यो खेलता है जो इंग्लैंड के कई खिलाड़ियों को अच्छी तरह से जानता है। प्रेसिंग फुटबॉल इंग्लैंड की ओर से और गाना काउंटर अटैक पर प्रहार करना चाहेगा। जो जीतेगा क्वालिफाई हो जाएगा, चाहे वो पहले दूसरे या बेस्ट थर्ड के टिकट पर। कल सुबह 3 बजे पनामा का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। दोनों की हार हुई थी पहले मैच में, इसीलिए जियो या मरो वाला मैच होगा। सुबह 6 बजे कोलंबिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। और चलते चलते आपको बता दें, आपको याद होगा आज से 10 साल पहले 2016 में, 10 साल पहले लियोनेल मेसी इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर हो चुका था जब कोपा अमेरिका के फाइनल में हार हुई थी चिली के खिलाफ, जिसमें मेसी एक पेनाल्टी मिस कर गया था। पेनाल्टी शूटआउट में एक गोल न स्कोर कर पाया था, तो उसके बाद उसने कहा, फॉर अब जाने का समय आ गया है, फॉर मी द नेशनल टीम इज ओवर, आई हैव डन ऑल आई कैन, अर्थात मेरे लिए अर्जेंटीना का साथ यहीं पर छूटता है, जितना कर पाया उतना मैंने किया, पर अब फैसला बदलकर वापस आया। तभी मेसी ही मेसी, 2 कोपा अमेरिका और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप। कल जब मेसी ने अपना डबल पूरा किया, तब बीबीसी कमेंटेटर स्टीव बाउ ने कहा, इट्स अनदर इमोर्टल मेसी मोमेंट। मेसी को फुटबॉल दुनिया की ओर से मेर्सी, आजीवन यादगार अमर पल मेसी के साथ। तो ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए, ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय।
0: थैंक यू सो मच अरविंद।
2: It was the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
3: Comme si madame Sheila, il faut bien nous

0: अच्छी हाथ तो मैं भी नहीं आने वाली हूँ क्योंकि मैं यहाँ से फिसल कर निकल कर चलने जा रही हूँ अपनी मंजिल की ओर. अब क्या है ना, विकास आ गया, वो आके मुझे ऐसे देख रहा है, कहता है तू निकलती है बात क्यों, कहते तू निकलती क्यों नहीं, जा रही हूँ बाबा जा रही हूँ. तो चलिए विकास आ गए आपका साथ देने के लिए, मैं आपसे मुलाकात करूंगी कल मॉर्निंग में 7 बजे, भूलिएगा नहीं. इन योर मॉर्निंग बीट,
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो. जेम्स
2: RM2, Radio Musty, in the mix. Jeez, everybody.

चलिए भी चलते चलते यहाँ पर wishing a very happy birthday to Abhay Dividid of Rochebois from Papa Ashok Mom Kirti साथ में उनके भाई Arnav Akhil दादी सत्यवती दादी उमा और दादा विनोद विवेक विधि और Dividid family की ओर से

0: समाचारों को लेकर आस्था आ चुकी है। आस्था, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद। नमस्कार। 9 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। बजट 2026-2027 को एक साहसिक और जिम्मेदार बजट बताते हुए श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने कल राज्यसभा में बजट बहस की शुरुआत की है। उनका कहना है कि पेंशन प्रणाली में सुधार आवश्यक है क्योंकि मौजूदा व्यवस्था लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह सकती। उन्होंने ये भी कहा कि AI और ब्लू इकोनॉमी जैसे सेक्टरों में घोषित कदम ऐसे देश की नींव रख रहे हैं जो भविष्य की ओर और सुदृढ़ से आगे बढ़ता जा रहा है। श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने मैटरनिटी लीव को 1 साल तक बढ़ाने और पैटरनिटी लीव को 4 हफ्ते तक बढ़ाई जाने की बात का स्वागत किया है। उन्होंने माना कि इस फैसले के बाद कुछ कंपनी महिलाओं को नौकरी पर रखने में हिचकिचा सकती हैं, लेकिन उनका कहना है कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न हो इसके लिए कानून में पहले से ही जरूरी प्रावधान किए जा चुके हैं। और कल राज्यसभा में फिर से शुरू होने पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मीन्स टेस्टिंग को फिलहाल रोकने की घोषणा की है। इस व्यवस्था के तहत पेंशन पाने वालों की आय और आर्थिक स्थिति की जांच की जानी थी। समान सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो का कहना है कि इस मामले में आखिरकार प्रधानमंत्री के फैसले को आगे रखा गया है, भले ही आर्थिक नजरिए से मीन्स टेस्टिंग को उचित

माना जा रहा था। विदेश स्तर की खबरों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी के नेता के पद से कल इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगले आम चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए वे सबसे उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। नए नेता के चयन तक वे प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। आगे दीजिए नमस्कार।

0: RM2 Radio Musti.
1: Hey, good morning, Norbert Kachunet. Hello, good morning ke saath saath. Welcome. Ye hai Must Morning Show. Tuesday की मॉर्निंग और ये 23rd of June. वैसे हाल चाल तो ठीक है, आपकी साइड पर बस अपना थोड़ा गला इधर उधर हो चुका है. एनीवेज फिर भी साथ देने के लिए बिल्कुल रेडी, ऑल सेट. धीरे धीरे सही, लेकिन आगे चलेगा म्यूजिक के साथ आपका सफर.

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: चलिए साहब देखते हैं आज सितारों की चाल और शुरुआत करते हैं हुए।
2: एरीज मेष राशि।
1: आज भाग्य आपके रिश्ते के खजाने का ताला खोल सकता है। वहीं पर कोई पुराना मित्र आपसे जिसका संपर्क नहीं था अचानक से आपकी सफलता की राह का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकता है। रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और मेहनत का फल दिखाई देने लगेगा। बिजनेस में तो नई संभावनाएं उभरेंगी, खासकर साझेदारी से जुड़े लोगों के लिए कुछ लाभदायक रहेगा।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: भाई आज का दिन आपको बहुत समझदारी से आगे बढ़ने का पाठ सिखाएगा। हर मुस्कुराता चेहरा भाई आपके लिए अच्छा हो, आपके लिए सही हो जरूरी नहीं, इसलिए अपने निर्णय सोच समझ कर लें। छोटे लाभ भी आगे चलकर बड़ी सफलता की नींव बन सकते हैं। किसी पुराने फैसले को लेकर मन में थोड़ी सी कसक उठ सकती है, लेकिन वही अनुभव आपको अधिक मजबूत और परिपक्व बनाएगा।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: रिश्तों में मिठास घुलने का दिन है। यदि वैवाहिक जीवन में कोई दूरी या गलतफहमी थी तो उसके दूर होने के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में भी अपनापन और विश्वास बढ़ेगा। विदेश में पढ़ाई या करियर का सपना देखने वालों को उत्साहजनक समाचार मिल सकता है।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज की जो संभावनाएं हैं आपके दरवाजे पर नॉक नॉक कर रही हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छा अवसर मिलने के संकेत हैं। मधुर रखे अपनी वाणी और व्यवहार, लोगों को आपको काफी पसंद आने वाला है। लोगों से मिलकर आराम से बैठकर अपने आइडिया को साझा करेंगे तो अच्छा रहेगा और चीजें खोलकर सामने आएंगी।
2: लियो सिंह राशि।
1: लियो, जो भी काम है उसको कर दियो, वैसे बड़े लक्ष्य की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं और सफलता आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। परिवार में संतान की उपलब्धि या नौकरी से खुशी का माहौल रहने वाला है। अविवाहित लोगों को आपको किसी खास व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। वह स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि सफलता का आनंद तभी मिलेगा जब ऊर्जा बनी रहेगी।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: भाई आपका जो कॉन्फिडेंस है और आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो ऊपर रह सकता है। भाग्य का साथ मिलने से कठिन लगने वाले कार्य भी सरल प्रतीत होंगे। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। विवाह से जुड़ी किसी रुकावट के दूर होने से घर में प्रसन्नता हैप्पीनेस का माहौल बना रहेगा।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: भाई पुरानी परेशानियों के बादल धीरे धीरे छटते नजर आ रहे हैं। लंबे समय से चल रही उलझने उनसे राहत मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में लिया गया कोई निर्णय आपको फिर से सोचने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन यही विचार विमर्श करके आगे आपको स्पष्ट दिशा दिखेगी।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज जीवन में स्थिरता और विस्तार दोनों के संकेत हैं। घर, जमीन या संपत्ति से जुड़ी योजनाएं आकार ले सकती हैं। लंबी यात्रा का विचार भी मन में आ सकता है। व्यापार में लाभ और रुकी हुई योजनाओं को नई गति मिलने के योग है।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: भाई काम करते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन यही जिम्मेदारियां आपकी सफलता की सीढ़ी बनेंगी। कार्य क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण दायित्व मिल सकता है और वरिष्ठ आपके काम से प्रभावित रहेंगे। परिवार में किसी अहम विषय पर चर्चा हो सकती है। पुराने मित्र से मिलकर ताजगी और मन खुश हो जाएगा।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने की दिशा में बढ़ेंगे। परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन से खुशी का माहौल रहने वाला है। पदोन्नति और नई जिम्मेदारी को लेकर पॉजिटिव आपको संकेत मिलेंगे। संतान के व्यवहार को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है और किसी पुराने निर्णय की याद मन में विचलित हो सकती है, लेकिन अपने आप को ठंडा ठंडा कूल रखें, जैसे कि मौसम।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: भाई आज स्वयं को हल्का और ऊर्जावान उत्साहित महसूस करेंगे। पारिवारिक रिश्तों में निकटता बढ़ेगी और आपसी समझ मजबूत रहेगी। यात्रा या घूमने फिरने की योजना बन सकती है। कोई पुराना आर्थिक मामला सुलझने से मन को राहत मिलेगी। व्यापारिक कारणों के कारण हो सकता है कि थोड़े चैलेंजेस आगे आए, लेकिन क्या करें, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अपना रास्ता चुनना पड़ेगा।
2: पाइसेस मीन राशि।
1: भाई मन में कुछ नए विचार और योजनाएं की लहर उठ सकती है। कुछ अलग करने की इच्छा आपको प्रेरित करेगी, लेकिन नए लोगों पर तुरंत भरोसा करने से बचें। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी, भले ही आपकी अपेक्षाओं से थोड़ी कम लगे। दूसरों के मामले में अनावश्यक दखल देने से बचना बेहतर रहेगा।
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: जा जा, अडियोस अमिगो।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
3: Adios amigos, नहीं बोलने वाली बात रही है, तो अभी आपका साथ है। और आप बता दूं कि आज कुछ गला साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आपने साथ देने का फैसला किया। थैंक यू सो मच।

0: रिश्तों की बात करते हैं और इस कार्यक्रम में मौका मिलता है कि हम कुछ रिश्तों की, कुछ लाइफ स्टाइल की ऐसी बात करें। अक्सर हम रिश्तों को लेकर एक बड़ी गलत फहमी में जीते हैं कि उन्हें मजबूत बनाने के लिए बड़े बड़े वेकेशन या सेलिब्रेशन जरूरी हैं। नहीं, जरूरी हैं, लेकिन वो ही जरूरी नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर वेकेशन अच्छा रहे, डेट नाइट स्पेशल रही या कोई बड़ा सरप्राइज मिला, तभी रिश्ता मजबूत माना जाता है। लेकिन असलियत इससे काफ़ी अलग होती है और यही बात कहते हैं स्पेशलिस्ट। बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि गलत फहमियों के बारे में कुछ अलग बात है जो इंसान समझना चाहता है, और साथ में छोटे छोटे खूबसूरत पलों को भी हाईलाइट किया जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। कहते हैं कि कपल्स के बीच रिश्तों को लेकर बड़ी गलत फहमी ये होती है कि बर्थडे, एनिवर्सरी या वैलेंटाइन डे जैसे कुछ खास मौके ही रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, ठीक है कि आप कहीं बाहर जाते हैं, आपको मौका मिलता है साथ में, अच्छी बात है, लेकिन असल में ये सब सिर्फ लाइफ से एक्स्ट्रा मोमेंट्स होते हैं जो थोड़ी देर के लिए खुशी जरूर देते हैं, लेकिन रिश्तों को अंदर से मजबूत बनाने में इनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं होती। ऐसा नहीं कि एक बारी बाहर चले गए उसके बाद बाकी दिन आप घर में मुंह फुला के बैठे। रिश्ता असल में इन खास पलों से नहीं, लेकिन रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों और समझ से मजबूत होता है। चलिए बात करेंगे, और आप भी इसमें अगर जुड़ना चाहते हैं 5491294 पर, जहां पर बता सकते हैं कि आपके लिए अगर रिश्ते को इंपॉर्टेंस देनी है, उसको काफी स्ट्रांग बनाना है, गलत फहमियां दूर करनी है और जो फासलों को कम करना है, तो आपने क्या पहल की और उसका फायदा क्या मिला।
1: Welcome to RM2
2: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: बात करते हैं रिश्तों की और बात करते हैं कि कैसे रिश्तों में अपनापन लाया जा सकता है। वैसे तो रिश्ते बहुत ही प्यारे होते हैं और महसूस तभी होते हैं जब कोई इंसान घर पर आता है और उसका स्वागत एक प्यारी सी स्माइल से होता है। नहीं, पूरे दिन की थकान और जितना भी बोझ होता है वो गायब हो जाता है। अगर अपने पार्टनर का स्वागत चुपचाप या बिना किसी एक्साइटमेंट करते हैं तो धीरे धीरे आपके रिश्तों को बोरिंग बना सकता है। इसलिए बी एक्साइटेड, क्योंकि इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं, कुछ घंटों के बाद बहुत सारी बातें शेयर करने की हैं, क्यों नहीं। किसी भी दिन की शुरुआत अगर प्यार भरे गुड मॉर्निंग टेक्स्ट के साथ या फिर दूसरे को प्यार से देखकर होती है तो ज्यादा रोमांटिक चीजें और क्या हो सकती हैं। सोचिए सोचिए, वो आप करना शुरू कीजिए। प्यार से देखना, मुस्कुराना एक दूसरे के लिए, हो सकता है एक छोटा सरप्राइज, क्यों नहीं, दूसरे को स्पेशल फील कराना, ये जरूरी है। सोने से पहले बातें करना, ये बहुत जरूरी है। एक जो इमोशनल बॉन्ड है उसको काफी स्ट्रॉन्ग करता है। इस समय अपने पार्टनर से बात करें, क्योंकि थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताना बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर या टीवी पर थोड़ा सा ब्रेक लेकर दिल की बात समझें। भाई, कई लोग सोचते हैं कि रिश्ता वही है जिसमें बीच बीच में कुछ एडवेंचरस चीजें होती रहती हैं, लेकिन असल मायने में रिलेशनशिप नॉर्मल चीजों से

0: मजबूत होती है, जैसे कि क्या खाया, दिन कैसा रहा, थक गए, इमोशनल सपोर्ट, और ये पता होना कि चाहे कुछ भी हो जाए कोई तो है जो मेरे लिए है, साथ देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। छोटी छोटी बातें रिश्तों को मजबूत बनाती है और अपनापन भी।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

राज बब्बर साहब का बर्थडे आज, और बहुत सारे उनके ऐसे दोस्त हैं जो फिल्म फ्रेटर्निटी में जुड़े हैं और बहुत सारे शुभकामनाएं उनको भेज रहे हैं। जैकी श्रॉफ, उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला और अपने बहुत सारे प्यार के साथ एक पोस्ट भी डाली और वेटन साहब को अपने अकाउंट पर बोला होम विशेज और राज बब्बर साहब को पोस्ट में टैग भी किया। भाई 23 जून 1952 में पैदा हुए थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले राज बब्बर साहब, किस्सा कुर्सी का इस मूवी के साथ शुरुआत की एंड फिर काफ़ी कमाल। हम जानते हैं मूवीज तो बहुत कमाल के, इंसाफ का तराजू निका आज की आवाज़, अगर तुम ना होते जिद्दी बरसात यारा ना आंखें और ऐसी बहुत सारी कुछ। तो बस उनके कुछ गाने, उनसे लाइफ से जुड़ी कुछ बातें, कुछ पर्सनल बातें, ये सब आप सुन पाएंगे, शेयर कर पाएंगे इन रेट्रो रिदम। स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन एंजॉयिंग द म्यूजिक राइट हियर, एंजॉय योरसेल्फ।

0: are you?
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.
3: इतना attitude, who are you? आपको बताएं कि अभी बताने के लिए आ रहे हैं बॉलीवुड की सुपरहिट कॉमेडी वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी किश्त यानी कि 2015 में आई थी वेलकम बैक। उसके एक दशक बाद लगभग लोग इंतजार कर रहे थे और अब आने वाली है ये मूवी। फिल्म की लंबी चौड़ी कास्ट शूटिंग शुरू करती है, उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है जब वहाँ लोकल्स होते हैं ना, उनको ये गलत फहमी होती कि ये तो आर्मी के लोग हैं। उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है, ऐसा क्या होगा मूवी का पता नहीं, लेकिन इसमें सेंसर बोर्ड ने 18 कैंचियाँ चलाई हैं, यानी 16 प्लस का इसको सर्टिफिकेशन मिला है। देखते हैं क्या कमाल करती है, बट गाने पॉपुलर हो ही रहे हैं।
0: You're listening to RM2, a Radio Musty.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: 23rd of June, Tuesday, and then time check exactly 10 a.m. स्टूडियो में आज सोन से मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
6: नमस्कार, 10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। बजट 2026-2027 को एक साहसिक और जिम्मेदार बजट बताते हुए श्रम मंत्री गजाउद्दीन ने कल राज्यसभा में बजट बहस की शुरुआत की। उनका कहना है कि पेंशन प्रणाली में सुधार आवश्यक है क्योंकि मौजूदा व्यवस्था लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह सकती। उन्होंने ये भी कहा कि AI और ब्लू इकोनॉमी जैसे सेक्टरों में घोषित कदम ऐसे देश की नींव रख रहे हैं जो भविष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ रहा है। श्रम मंत्री गजाउद्दीन ने मैटरनिटी लीव को एक साल तक बढ़ाने और पैटरनिटी लीव को 4 हफ्ते से बढ़ाकर 6 हफ्ते करने के फैसले का भी स्वागत किया। उन्होंने माना कि इस फैसले के बाद कुछ कंपनी महिलाओं को नौकरी पर रखने में हिचकिचा सकती हैं, लेकिन उनका कहना है कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न हो इसके लिए कानून में पहले से ही ज़रूरी प्रावधान मौजूद हैं। तो राज्यसभा में बैठक के दौरान फिर शुरू होने पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मींस टेस्टिंग को फिलहाल रोकने की घोषणा की। इस व्यवस्था के तहत रिटायरमेंट पेंशन पाने वालों की आय और आर्थिक स्थिति की जांच की जानी थी। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभों का कहना है कि इस मामले में आखिरकार प्रधानमंत्री के फैसले को आगे रखा गया है, भले ही आर्थिक नजरिए से मींस टेस्टिंग को उचित माना जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनती तो दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता था। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम द्वारा पेंशन सुधार के तहत मींस टेस्टिंग को फिलहाल स्थगित करने के फैसले का कई राजनीतिक और सामाजिक पक्षों ने स्वागत किया है। बजट 2026-2027 पेश किए जाने के बाद इस कदम को लेकर कई प्रतिक्रियाएं और चिंताएं सामने आई। ओनाफा मुगिस ने उन मर्शनों की सराहना की जिन्होंने इस बजटीय कदम के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। उनका कहना है कि सरकार का ये फैसला दिखाता है कि लोकतांत्रिक बहस में नागरिकों की भागीदारी और उनकी राय कितनी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026-2027 में कलाकारों और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए घोषित कदमों का आर्टिस्ट यूनियन ने स्वागत किया है। एक बयान में संगठन ने कहा कि ये फैसले उन मांगों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं जिन्हें वे कई वर्षों से उठा रहे थे। आर्टिस्ट यूनियन के अनुसार ये पूरे कला और सांस्कृतिक क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। संगठन ने सरकार से इन घोषणाओं को जल्द में अमल में लाने की अपील की है। विदेश स्तर की खबरों में ब्रिटेन

0: के प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगले आम चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए वे सबसे उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। नए नेता के चयन तक वे प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। लेबर पार्टी में नेतृत्व चुनाव की प्रक्रिया 9 जुलाई से शुरू होने वाली है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। रामचंद्र रूद रिश्पो में 57 साल की 57 years old के श्याम सुंदर तपसी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम के 4 बजे उन्हीं के मकान रिश्मो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: 23rd June, Tuesday का दिन 10:08 and safely landing into the second hour. Ladies and gentlemen, जहाँ पर म्यूजिक को हर दिन सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे ही म्यूजिक डे पर हमारी टीम की जो मस्ती हुई थी वो आपको जरूर दिखाई दे होगी ऑन फेसबुक लाइव और जहां पर गाने अरे साहब हर दिन चलाते ही हैं, ये म्यूजिक एडिशन मनाते ही वहीं पर आप भी कनेक्टेड हैं इसके साथ. थैंक यू. इतने सारे इंटरनेशनल हमारे लिसनर्स हैं जो सुबह उठते ही मुर्शिद से कनेक्ट करते हैं विदाउट एनी वीजा, सेफली लैंडिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक. हेलो साहब, जहां पर रिश्तों की बात होगी वहीं पर खाने पीने से जुड़े कुछ हाउस होल्ड डेकोरेशन टिप्स और बहुत सारी मस्ती जारी.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी। RM2
0: Radio Musti

0: अरे साहब नाच के मधुबाला, लेकिन अभी है जरूरी कि आप खोलें अपने दिमाग का ताला।
1: Welcome to RM2. Musty Mornings Radio Musty.
0: अच्छे बात करते हैं इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि बहुत ज़रूरी है कभी कभी ज़िंदगी की राहों में। कहीं ना कहीं ये मुश्किल तो आई जाती है बच्चों के साथ डील करना। कभी कभी बच्चे मानते हैं अपने आप को जिम्मेदार फॉर एवरी सिंगल थिंग, या फिर कहते हैं कि हाँ किसी और की वजह से ऐसा हो गया। बात बात पर शिकायत होती है और कहते हैं कि इस वजह से, ऑलवेज लुकिंग फॉर अ रीज़न। तो ध्यान खींचे उनका, बात कीजिए उनसे और कहें उनको कि टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी बहुत ज़रूरी है। पहले तो ज़रूरी है कि कोई भी काम करें उसमें पहले अपना होमवर्क जरूर कर लें, पहले ये सोच लें कि उसमें है क्या। बच्चे से बात करें, अच्छा ये करने वाले हो, अच्छा तुमने सोचा क्या है, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, उनकी बात को समझें और फिर आपको समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। उनको भी एक इमोशनल बैलेंस और कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो जाएगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाएंगी और पता चलेगा कि आगे चलकर जो प्लानिंग करनी हो कैसे किसी भी चीज़ के लिए, एवरी सिंगल थिंग। ऐसा ज़िंदगी बहुत कमाल की है, लंबी सी राह है और अगर सीखने की चाह है तो बहुत सारे रीजंस मिल ही जाते हैं। जैसे कभी कभी जो बच्चे शिकायत करते रहते हैं उनके लिए समस्या बनती चली जाती हैं, इसी वजह से बच्चे खुद में सुधार नहीं कर पाते। इसलिए पेरेंट्स को आगे आना ज़रूरी है, एक इमोशनल कनेक्ट करना ज़रूरी है। अपने आप को विक्टिम ना माने, अगर कुछ काम आपके हिसाब से नहीं हुआ सो डोंट टेक इट कि यही होता है मेरे साथ हमेशा, यू कैन चेंज इट। हमेशा की तरह एक कोशिश, एक छोटा सा परिश्रम आप कर सकते हैं और उनको हर एक छोटे स्टेप पर सहानुभूति की जगह उनको कहें कि वेल डन, एक छोटी सी बात। एंड फिर देखिए उनके अंदर कैसे एक इमोशनल डिपेंडेंस आएगी, साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। तो बच्चों के साथ कनेक्ट करना, उनकी तरह बन जाना हमेशा नहीं, लीडर बनकर उनको भी लीडर बनाना ज़रूरी है।

0: FM 2
1: Radio Musti.
0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments. Welcome to RM2.
1: Musti Mornings, Radio Musti.
2: आज कुछ ठंड थोड़ी ज़्यादा लगी नहीं, और ऐसे में अपना स्टाइल रखना फिर भी इज नॉट ईजी एट ऑल। यानी कि आप कुछ भी पहने उसको ढक दें, कार्डिगन हो या फिर आपका कोई स्कार्फ हो या फिर गले में आपने लगाकर कोई मफलर या ओवरकोट। वैसे मूवी की रेफरेंस करें क्योंकि वही बॉलीवुड का स्टेशन है, तो आपको बताएं मूवी इंग्लिश इंग्लिश के बारे में। इसमें श्रीदेवी का सिंपल लेकिन बहुत ही ग्रेसफुल स्टाइल, याद है ना आपको, मतलब फैशन का मतलब हमेशा चमक धमक नहीं, कभी कभी एक नीटली आयर्न कुर्ता या फिर एक क्लासिक शर्ट या फिर एक एलिगेंट दुपट्टा भी आपकी पर्सनैलिटी को अलग ही शाइन दे सकता है। वैसे वो क्रिस्पी साड़ीज, लेकिन अब ठंड का मौसम है, एक प्यारा सा कार्डिगन, यानी कि अगर आपकी प्रिंटेड साड़ी और एक सॉलिड आपने कार्डिगन डाल लिया तो उसका स्टाइल कुछ अलग ही है, राइट। फैशन का मंत्र यही है कि ट्रेंड के पीछे मत भागिए, अपना कंफर्ट और कॉन्फिडेंस को स्टाइल का हिस्सा बनाइए, क्योंकि असली स्टाइल वही है जो आपको खुद के साथ कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस कराए।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। RM2
1: रेडियो

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: तो आप चलते हैं, देखते हैं कि आपके साइड पर मौसम के हालचाल कैसे हैं। आपके मैसेजेस ऑन 5491294 पर। रमेश सिंह जी सीधा पंजाब से। जी पाजी क्या हाल है? वैसे तो पंजाब में अंदर वहाँ पर गाने तो फटाफट चलते हैं ढोल के साथ। अब कभी कोशिश करेंगे, मौका मिल गया तो आपके लिए भी कुछ ऐसे ही गाना चलाएंगे। बट थैंक यू सो मच, हमेशा साथ रहते हैं। एंड गुड मॉर्निंग टीम, प्लीज अगला गाना टू अब्दुल इंसारा बानो। जी हाँ जरूर। वहीं पर कहते हैं एक प्यासा गाना फॉर अविनाश, वेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पीनेस सक्सेस एंड फ्रॉम द होल टीम हैप्पी बर्थडे टू यू। अनिशा की तरफ से और साथ में आन्या की तरफ से, आयुष की तरफ से, उनको ढेर सारा प्यार। अरे साहब खुशियां जैसे हर दिन मनाते हैं कोई त्यौहार। नमस्ते जी, एक प्यासा गाना फॉर रिया, और ये है बहुत ही मोहत से, और पापा राजेश, मामा शिवरानी, भाई रोहन, सुजल, निशि, विधि एंड नानी सूप की तरफ से।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

ऐसा लगता है कि सिस्टम को भी इस गाने से थोड़ा प्यार हो गया। एक गाने को चलाते चलाते कैसे हम उसको है भुलाते, कमाल ना। सिस्टम की कहानी कुछ ऐसी है, अरे साहब अपनी जिंदगी भी कुछ ऐसी है। All the ones tuning at the moment, this is Radio Mercy, ladies and gentlemen. Most morning show continues till 12. Hero Nation, गाना याद है ना? हर दिन कुछ कुछ नया एंड कुछ ऐसा करो कि बस प्यार हो ही जाए। Stay safe on the road. प्यार हो गया तो हमें जरूर बताएं।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: जैसे आप बैक विद म्यूजिक और हम हमेशा कहते हैं कि आजकल कुछ ऐसे एप्लीकेशन आ गए हैं जहां पर आप अपने स्क्रीन टाइम को मॉनिटर कर सकते हैं। ये काफी कमाल की बात है ना, ये देख लेना कि आप एक्चुअली रियलाइज होता नहीं कि आपने एक वीडियो देखा, एक रील देखनी शुरू की, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, क्योंकि लगता है कि टाइम तो है यार, चलने दो, लेकिन कभी कभी लगता है कि यार काफी टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए यू कैन ऑलवेज गो बैक अपना डेटा, उसको एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस एप्लीकेशन पर आपने कितना समय बिताया और अगली बार इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों नहीं। अच्छा, आप में से कितने सारे होंगे जो कि आप यूज़ करते हैं एप्लीकेशन जैसे कि चैट जीपीटी या क्लोद, ऐसी बहुत सारी हैं और जहाँ से कुछ सीखने का मौका मिलता है हर दिन कुछ नया, फिर चाहे स्टेइंग अपडेटेड ऑन अ स्किल या फिर वर्ल्ड न्यूज़, अपने आप को अपडेटेड रखिए। और देखिए साहब, कभी कभी कॉन्वर्सेशन में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कभी लगता है कि अगर मुझे भी थोड़ा पता होता तो इसलिए थोड़ा सा और ध्यान दो। और आज की तारीख 23rd of June, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन मंगलवार, और आपने जरूर कर लिया होगा कुछ ना कुछ तैयार, यानी कि प्रायोरिटी बेस, जो भी काम करना है उसकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, देखिए कौन सा काम पहले करना है, उसके बाद दूसरा काम, तीसरा, और उसके बाद देखिए सब कुछ स्ट्रीम लाइन होगा। नहीं तो कभी कभी रियलाइज नहीं करते और हम चल पड़ते अपने काम करने के, और उसके बाद लगता है कि अरे इतना टाइम ऐसे निकल गया, अगर थोड़ा और आइडिया होता तो जाने इस चीज़ को अच्छी तरह टैकल कर पाते। नहीं, थोड़ी सी प्रायोरिटी, थोड़ी सी और सतर्कता, और फिर देखिए काम होता है कितना आसान। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमारे मेहमान, म्यूजिक टाइम।
0: वेलकम टू RM2,
1: मस्ती मॉर्निंग्स, रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: I'm Jake, exactly 11 a.m. स्टूडियो में आगे आसाम से मिलते हैं जहां देश घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार
4: नमस्कार, 11 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। बजट 2026-2027 पर बहस की शुरुआत करते हुए कल श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने इसे एक साहसिक और जिम्मेदार बजट बताया। उन्होंने कहा कि पेंशन प्रणाली में सुधार जरूरी है और एआई तथा ब्लू इकोनॉमी के लिए घोषित कदम देश को भविष्य की ओर ले जाएंगे। राज्यसभा की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है जहाँ बजट पर बहसें जारी रखी जाएंगी। तो कल श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने मैटरनिटी लीव को 1 वर्ष और पैटर्निटी लीव को 6 सप्ताह तक बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी भेदभाव को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुबो ने कहा कि मींस टेस्टिंग को स्थगित करने के मामले में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के फैसले को प्राथमिकता दी गई। उनके अनुसार जरूरत पड़ने पर अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता था। ओलावा मोरिस के नेता पैट्रिक बेलको ने मींस टेस्ट को स्थगित करने के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि ये नागरिकों की आवाज़ और लोकतांत्रिक बहस की अहमियत को दर्शाता है। बजट 2026-2027 में कलाकारों और सांस्कृतिक सेक्टर के लिए घोषित कदमों का आर्टिस्ट यूनियन ने स्वागत किया है। संगठन ने इन घोषणाओं को जल्द अमल में लाने की अपील की है। फुटबॉल विश्व कप का उत्साह पब्स और रेस्टोरेंट में देखने को मिल रहा है। बड़े स्क्रीन पर मैचों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में इन दिनों प्रशंसक पहुंच रहे हैं। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। नए नेता के चयन तक वे प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध समाप्ति के लिए स्विट्जरलैंड में हुई पहली वार्ता के बाद परमाणु निरीक्षण को लेकर मतभेद सामने आए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने दावा किया है कि ईरान जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को फिर से देश में प्रवेश करने की अनुमति देगा, लेकिन तेहरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उसने निरीक्षण के संबंध में कोई नई प्रतिबद्धता नहीं की है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: गाने के साथ गा गा कर अपने गले को गर्म करते थे, लेकिन ऐसे मौसम में जहाँ थोड़ी सी ठंडी हो उसमें चाय की चुस्की बातें उसकी उसकी क्या बात है। नहीं
1: Welcome to RM2. Musty Mornings Radio Musty.
0: वैसे हम में से कितने सारे लोग हैं जो कि अपने दिन की शुरुआत करते हैं एक गरम गरम चाय के साथ। सुबह एक चाय की प्याली हो और पिलाने वाली घर वाली हो मजा आ जाने। वहीं पर सुबह की चाय हो या शाम का तड़का, अदरक को फ्रेश रखने के लिए आप पेपर टॉवल को यूज कर सकते हैं। उसमें रैप अप करके उसको फ्रिज में रखिए, ज्यादा दिनों तक ताजा रहेगी। वहीं पर अगर टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं तो उन्हें स्टेम साइड नीचे रखकर, कई लोग स्टेम पर एक टेप भी लगा देते हैं, उसके बाद उसको रखते हैं फ्रिज में, फ्रेशनेस थोड़ी और लंबी चलने वाली है। और कभी कभी आप देखते हैं कि दाल या फिर चावल के डब्बे में छोटे छोटे कीड़े आते हैं, तो ऐसे में तेज पत्ता होता ना, तेज पत्ता, हाँ वो डाल सकते हैं। उसकी महक ऐसी होती है कि आप करेंगे इंसेक्ट्स को बाय बाय। भाई म्यूजिक चल रहा है RM2 पर, गले लगाए।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

चलो शाम पहले बात करते हैं वेलकम टू द जंगल और सुनने में आ रहा है कि उसमें 18 गट्स लगे हैं और उसके बाद काफी सीन्स हैं हाँ, लेकिन लग रहा है कि आपत्तिजनक जरूर है वहीं पर कुछ सीन्स को हटाने के लिए या फिर इनडायरेक्टली कुछ कहने के लिए इन सबको हटाया गया है। ड्यूरेशन कम हुई है लेकिन सेंसर बोर्ड के हिसाब से कहानी अब है अंडर कंट्रोल। देखते हैं लेंथ एंड ब्रेथ में फिट होती हुई ये बड़ी मूवी बड़े पर्दे पर क्या कमाल करती है। वी गोना कीप यू पोस्टेड।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अच्छा, हम कहते हैं कि हमेशा बहाने ढूंढो कि आप थोड़ा सा मूवमेंट में पड़े, यानी कि आप अगर लगता है कि किसी से बात करनी और वो इतनी दूर नहीं है तो इंटरकॉम की बजाय थोड़ा चल के जाए। बैठे बैठे कभी कभी कमर अटक जाती है तो बैठे बैठे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी ऐसी कसरतें हैं जो बैठे बैठे की जा सकती हैं, लेकिन कभी मौका मिले तो एक मिनट का ब्रेक काफ़ी है, बहुत ही कम है। लेकिन कोशिश कीजिए पानी का ब्रेक, अब ठंड पड़ रही है तो फिर ऐसे में आप स्वेट नहीं करते ज़्यादा और फिर आपको इतनी प्यास नहीं लगती, लेकिन रेगुलर पानी पीना बहुत बहुत ज़रूरी है और रेगुलरली किसी से इन टच रहना ये भी ज़रूरी है। अरे साहब, उनके बारे में सोचिए जो अभी हो सकता है कि घर में अकेले हो, नहीं म्यूजिक साथ में है, लेकिन फिर भी उनका हालचाल पूछ लेना, थोड़ा सा कुछ कह देना, इट मेक्स अ डिफरेंस राइट। यहाँ पर उर्मिला जिन्होंने दिल की बात कही और कहते हैं कि लविंग द म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती, थैंक यू सो मच उर्मिला, आपका साथ हमें मिला बड़ा अच्छा लगा। पर कहते हैं हैप्पी बर्थडे और ये है बेटी जिया के लिए, 11 साल की हो गई है, सो बहुत सारा प्यार पापा राजेश हैं, माँ शिवानी शिवरानी, भाई रोहन, सुजल, निशी, विधि एंड नानी की तरफ से उनको ढेर सारा प्यार एंड गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। कहते हैं एंजॉइंग द सॉन्ग्स और आपका नाम क्या है, चलिए जाने दें। संगीता जी गुड मॉर्निंग आपको भी, और यालेश हमारे साथ दे रहे हैं और साथ ही में गुड मॉर्निंग कह रहे हैं कि आज मंगलवार इसको बिताने के लिए बिल्कुल तैयार। आरती जी आपका भी स्वागत। यस, यू लिसनिंग टू
0: रेडियो मस्ती। You're listening to RM2, a Radio Masti.

जाने के वक्त हो रहा है बस थोड़ी देर में रेट्रो रिदम, जहां पर गानों का साथ थोड़ा चेंज होगा, म्यूजिक और मेलोडी चेंज होगी, बट यस योर रेडियो पार्टनर 24/7 7/7 हमेशा आपके साथ।

0: चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं समाचार रजनी के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय सभा की बात करते हैं, जहां बजट 2026-2027 के संदर्भ में आज भी बहसें जारी हैं। आज दिन के 11:30 बजे कार्य शुरू किए गए। बता दें कि बजट 2026-2027 पर बहस की शुरुआत करते हुए श्रम मंत्री रिजाउद्दीन ने इसे एक साहसिक और जिम्मेदार बजट बताया। कल उन्होंने कहा कि पेंशन प्रणाली में सुधार जरूरी है और कि AI तथा ब्लू इकोनॉमी के लिए घोषित कदम देश को भविष्य की ओर ले जाएंगे। राष्ट्रीय सभा की बैठक आज सुबह, जिस तरह हमने कहा, 11:30 बजे फिर से शुरू हुई। बता दें कि श्रम मंत्री रिजाउद्दीन ने मैटरनिटी लीव को 1 वर्ष और पैटर्निटी लीव को 6 सप्ताह तक बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी भेदभाव को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद है। सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने कहा कि मीन्स टेस्टिंग को स्थगित करने के मामले में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के फैसले को प्राथमिकता दी गई और कि उनके अनुसार जरूरत पड़ने पर अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। ऑन अवा मोरिस के नेता पैट्रिक बेल्को ने मीन्स टेस्टिंग को स्थगित करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये नागरिकों की आवाज़ और लोकतांत्रिक बहस की अहमियत को दर्शाता है। बजट 2026-2027 में कलाकारों और सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए घोषित कदमों का आर्टिस्ट यूनियन ने स्वागत किया। संगठन ने इन घोषणाओं को जल्द अमल में लाने की अपील की। और आपको बता दें कि PMSD के नेता शावेल इकजीवाल ने आज सुबह पोर्टलिस में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया और इसके दौरान उन्होंने कहा कि बजट 2026-2027 को लेकर कुछ बातें स्पष्ट नहीं हैं और कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं। उन्होंने बजट के फॉर्म का ही खंडन किया है। विदेशी समाचारों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर खैर स्टामर ने लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। नए नेता के 6 अंक तक वे प्रधानमंत्री बने रहेंगे, जबकि एंडी बर्नहम को संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। अपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। कुसियाल लेन पालमाकट रोड में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री कीरालाल माना, जो ज्ञान नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर खुशियाल लेन पालमा कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1 PM। रामचंद्र रोड रिश्माओ में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड की श्री श्याम सुंदर तपसी जो श्याम नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के आज

0: शाम 4 बजे आज शाम 4 बजे उनके घर रामचंद्र रोड रिश्मा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कांदेमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 पीएम। शोक मेडवीन परिवारों के साथ हमारी ये दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: Retro Rhythm.
3: RM2, Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: बिल्कुल जी, हम भी तो आशिक हैं बहारों का जो आ गए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए ऑन आर एम टू रेडियो मस्ती। जी हाँ दोस्तों, चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 12:09 हो चुके हैं और गणेश आ गए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए इस खूबसूरत सी सफर में जिसका नाम है योर रेट्रो रिदम। तो आज है ट्यूसडे 23rd of June 2026। आप सभी लोगों का बड़े प्यार से हमने ये स्वागत कर ही तो दिया है। सो म्यूजिक लवर्स, जस्ट गेट रेडी इस खूबसूरत सी सफर में हमारा हम सफर बनने के लिए। और जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स खाना खा रहे हैं, यानी कि यू हैविंग योर लंच, क्योंकि लंच टाइम है, सो बोन अपेटाइट टू यू माय डियर। शुभहार एंटायर हमारी ये पूरी टीम की तरफ से लॉट्स ऑफ लव टू यू। तो चलिए जी, 5 4 9 9 12 94 पर सेंड मी योर डेडिकेशंस एंड ऑफ कोर्स दे आर द मोस्ट वेलकम। एंड ये अगला गाना हमारी तरफ से आपके नाम।
0: You're listening to Radio Masti.

Retro Rhythm. I really hope that you guys are really loving these beautiful and lovely गानों का selection. So, जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 12:21 हो चुके हैं my dear lovely listeners. कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो तो ऐसा ही कुछ समझ लीजिएगा कि जितने भी हम प्यारे प्यारे गानों को लेकर आए हैं चुन चुन कर ले जो ये जो लेकर आए हैं वो खासकर आप ही लोगों के लिए हैं जी हाँ दोस्त and thank you so so much actually for choosing us as your radio partner and we do have Poonam Dini Mohan she's listening to us right now from Ghana and she's back after some time in Geneva but still not missing any show of ours on RM2 Radio Masti bahut bahut shukriya ji aise hi bas dete rehna aur khoobsurat gaane jo hai aap dil se enjoy karte rehna 54991294 par ji have got your dedications close to my heart let's read it at me and agla gaana jo hai babu se mala sa de rahi hai aur sukram and bhim family ke liye wo dedicate karna chahenge aur chaliye kisi ने लिखा है तो अर्ज किया है कि नजरें उन्हें देखा चाहे तो आंखों का क्या कसूर नजरें उन्हें देखना चाहे तो आंखों का क्या कसूर हर पल याद उनकी आए तो सांसों का क्या कसूर वैसे तो सपने पूछ कर नहीं आते पर सपने उनके ही आए तो हमारा क्या कसूर That's coming from Akash Chetan Mansukh of Bombo wishing everyone a very good afternoon thank you so much जी और अगला गाना आपके लिए ज्योति ऑफ शातु बनारस आशनी रेखा सुरेखा और मधु परिवार के लिए ये अगला गाना And I just want to wish happy 11th birthday to Beti Ria Parmesau, jo Bois des Amourettes ke rehne wali hai. Unke papa Rajesh ke liye, mama Shivrani ke liye, aur bhai Rohan ke liye, bhi Sujal, Nishi Vidhi, Nani Sub, sabhi ne aapko wish kiya hai. Lots of love and happiness, my dear. To chali, agla gana, hamari taraf se aapke naam.

0: Retro Rhythm.
1: ना जाने कहां दिल खो गया, लेकिन हमें तो पता है जी शेहान जी, तभी तो हम आ गए हैं आप लोगों को प्यार बांटने के लिए। लेकर आते हैं कुछ ऐसे ऐसे लवली गाने जो सीधे जाकर दिल पर लग जाते हैं। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं बताने के लिए कि गिनी आपका गला ख़राब है। जी हाँ, आप हमारी तरह बिल्कुल ना कीजिए, अपना ख्याल रखिए। गर्म गर्म पानी, गर्म गर्म चाय, गर्म गर्म कॉफ़ी पीते रहना एंड कीप योर सेल्फ वार्म। ऐसे ही ठंडी ठंडी हवा में घूमने ना निकले, बारिश में ना भींगे और बस अपना ख्याल रखें। एक्चुअली मौसम ही कुछ ऐसा है, सभी को कॉल कफ हो रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आप भी बिल्कुल अच्छे से रहे, सो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। और फिलहाल के लिए आप गॉट योर डेडिकेशन ऑन 54991294 पर। हाँ जी, और चलिए साथ में चेक करते हैं किसने किसको याद किया है। और फिलहाल के लिए अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे हमारे प्यारे पूजा के लिए, जो बोलते हैं हम गाँव में से आपका साथ दे रहे हैं। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, और आप काम पे हो सको आज टू यू। एंड हाय आंटी लविंग, यस माय आंटी, माय ब्यूटीफुल आंटी, शी इज़ वर्किंग राइट नाउ एट शी इज़ फ्रॉम सैंपल, और उनकी सारी जो टीम है चॉइस फॉर द स्नैक सुन रही हैं बड़ी ज़ोरों शोरों से, वहाँ पर रेडियो चला के रखा है। सो बिग हाय गोज टू यू गाइज and to everyone jo saath de rahe hain। And here we go, we have another message। Lagta hai ki aap bahut bilkul thante lag rahe hain। Krishni from Rivière des Créoles aur Rivière des Anguilles se aap saath de rahe ho, aapke families। Agla gana aapke husband Vikram aur aapke twins Kaushik and Kaushal ke liye, aur hamare liye bhi bahut bahut shukriya। Indira, Reshma, Vimal, Anju, Krisha and Keshav, Neil, Marsha, Tanya, wo hain Montagne Blanche se, so thank you so much for choosing us as your radio partner। Jitne bhi log Montagne Blanche se saath de rahe hain, ye agla nagma hamari taraf se aapke naam। Sunita Lulchan from Milan, Sunday ko शो में आपने फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसने सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। उनकी दादी और माँ दीक्षा और पापा आतिश और गाँव पापा नरवेश और अरविशा, एंड वी हैव सब लुलचान और रामधनी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और आपकी जो नातिन है शोमिया के लिए एक बर्थडे वाला गीत ज़रूर, चलिए ये उनके लिए।

0: रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल जी, हमारी तरफ से लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू छोटी सी प्यारी सी शौमिया, एंड कीप ऑन एंजॉयिंग टू द बेस्ट। हाँ जी, एंड टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज, जी हाँ, आज तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया दिन है। सो विशिंग यू एज वेल अ मैजिकल बर्थडे ऑन आवर एंड टू रेडियो मस्ती एंड टू ऑल आवर लवली ब्यूटीफुल कपल्स सेलिब्रेटिंग आउट देयर वेडिंग एनिवर्सरीज। अगर आज आपका खास दिन है तो ये रहा हमारी तरफ से आपकी इस खूबसूरत से सेलिब्रेशंस को और भी खूबसूरत बनाने के लिए।
2: You're listening to Radio Masti.

0: खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में ऑन आरएमटी रेडियो मस्ती. थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर. फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 1 पीएम.
1: वेलकम टू आरएमटी
2: रेडियो मस्ती.
1: नॉर्थ, साउथ,
2: 103.5,
1: ईस्ट, वेस्ट,
2: 96.4,
1: सेंटर,
2: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti. The Musti.
0: आइए सुनते हैं समाचार सुमेरा अकबर अली के साथ. नमस्कार और आदाब.
3: नमस्कार और आदाब. राष्ट्रसभा के कार्य जारी रखे जा रहे हैं. सत्र की शुरुआत में सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन बिल 2024-2025 नंबर 2 और 2026 बिल नंबर 7 पर बहस की गई. मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर विपक्ष व्हिप एड्रियन जुवाल ने बहसों में भाग लिया. इसी सत्र के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने उल्लेख किया कि केपीआई का आगाज जून 2024 में ही किया गया था और रैंकिंग प्रणाली को पिछली सरकार ने ही खारिज की थी. विधेयक को पारित किया गया. राष्ट्रीय बजट 2025-2026 के संदर्भ में अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 पर भी बहसें जारी रखी जा रही हैं. शिक्षा मंत्री महेन गंगा प्रसाद ने कहा कि समाज में जुर्मों, ध्वनि प्रदूषण और दूसरे प्रकार के अपराधों का हल तालीम है. परवरिश की बुनियाद अच्छी शिक्षा पर निर्भर है. बुलिंग के सिलसिले में बजट में ऐलान कदम पर बात करते हुए मंत्री महेन गंगा प्रसाद ने चेतना अभियानों की अहमियत पर जोर दिया. शिक्षा मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र के लिए ऐलान कदमों की सराहना की है. पीएमएसडी के नेता जावियर लुक जुवाल ने आज पोर्टली में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया. उन्होंने हालिया बजट भाषण पर टिप्पणी करते हुए कुछ खामियों और कंफ्यूजन का उल्लेख किया. उन्होंने पेंशन प्रणाली में सुधार लाने के वास्ते माहिरों के आयोग की सिफारिशों का खंडन किया. इसके अलावा जावियर लुक जुवाल ने सरकार में अनुशासन और समग्र जिम्मेदारी की कमी पर भी बात की. पीएमएसडी के नेता ने समाज सुरक्षा के प्रेस सम्मेलन को दाद दी. विदेश में कल लखनऊ भारत की एक इमारत में आग लगने से कम 15 लोगों की मौत हुई है. इस घटना के चलते एक जांच शुरू की गई है. इमारत में पेट शॉप थी. चश्मदीद गवाहों के मुताबिक आग से बचने के लिए लोगों को इमारत से कूदते हुए देखा गया. जिंदगियां बचाने के लिए बचाव टीमों को दीवारें तोड़कर घुसना पड़ा. अधिकारियों ने पाया कि वहां कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, इसलिए लोग अंदर फंस गए थे. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. लावानी वाकुआ में 60 साल के 60 years old श्री सुतिकराव लिम्बिया, श्री सुतिकराव लिम्बिया जो जीतन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी आज दो बजे इनके घर लावानी वाकुआ फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 2 PM. रामचंद्र रोड रिश्मो में 57 साल के 57 years old श्री श्याम सुंदर तपसी, श्री श्याम सुंदर तपसी जो श्याम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी आज शाम चार बजे इनके घर रामचंद्र रोड रिश्मो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिनगांव निवास की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 4 PM. शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है.
2: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: Retro Rhythm. RM2.

का प्रणाम कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स ट्यूसडे है आज कहाँ पे हो काम पे अच्छा काम कर रहे हो तो कुराज टू यू माय डियर वैसे आई नो कभी कभी जब ऐसे मौसम होता है ना ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है कई जगहों पे यू नेवर नो हल्की सी बरसात भी हो रही है एंड यू फील लाइक कि काम नहीं करना काश हम घर पे होते हम अपने ब्लैंकेट के नीचे होते टीवी देख रहे होते लेकिन नॉट टू फॉरगेट कि RM2 रेडियो मस्ती हर हालत में हर सिचुएशन में हर वेदर में हम आपका साथ देते रहते हैं ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो अच्छे अच्छे गाने जब बैकग्राउंड में आप सुन रहे हो तो टाइम टू बीता चला ही जाता है और इंसान को पता भी नहीं चलता है तो आप बस अपने काम पे ध्यान दे दीजिए और रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर लीजिए यू गोना सी कैसे जल्दी जल्दी आपका टाइम बीत जाएगा और फिलहाल के लिए चलिए जी द नेक्स्ट वन हमारी तरफ से आपके लिए और 5499124 दैट्स द नंबर यस द मैजिकल नंबर 5499124 पर जहाँ पे यू कैन सेंड मी योर डेडिकेशंस डू लेट मी नो आप लोग कहाँ से हमारा साथ दे रहे हो

0: रेट्रो रिदम।
1: वो पहली पहली मुलाकातें, बिल्कुल जी, कितना अच्छा लगता है जब आप किसी से मिलते हो, एक अनजान इंसान से मिलते हो और धीरे धीरे पहचान बनाने के लग जाते हो, और उसके बाद वो जो अनजान इंसान है वो अजनबी आपके ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, और फिर ऐसा लगता है कि वही इंसान आपको जीने की वजह देते हैं और वही आपकी जीने की वजह बन जाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ना, कितना खूबसूरत होता है लाइफ में। जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं, हमें तो दिल में बहुत सारी खुशियाँ जैसे होते हैं ना, महसूस मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वाकई में कैन यू जस्ट इमेजिन, एक अजनबी, फिर दोस्त, फिर प्यार, फिर जीने की वजह। व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्रोसेस ऑफ लाइफ। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपने ज़िंदगी को प्यार से जियो और प्यार से बातें करो, और हमेशा अगर आप किसी से ऐसे इंसान से मिले हो जिनसे आपको बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है, तो प्लीज़ वहाँ पर बाद में करना, पहले उसकी कदर करना। इज्जत सबसे ऊँचा होता है, सबसे ऊँचा दर्जा। हम जो कहते हैं ना कि इज्जत ही होनी चाहिए, अगर आप एक दूसरे की इज्जत करोगे तभी तो जिंदगी में आप एक दूसरे का साथ दे पाओगे। बोलते तो है अगर इज्जत दोगे तो इज्जत में ही आपको प्यार मिलेगा, अदरवाइज हम तो कहेंगे आई लव यू जी, हम आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन टूटू मैं रोज करेंगे और इज्जत नहीं करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे तो काय का प्यार। हम तो बोलते हैं ये तो प्यार ही नहीं होता है। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आपके डेडिकेशन ऑन 5499 1294 पर चलिए देखते हैं किसने किसको याद किया है अभी के लिए। विश्वानी डुमन जो अभी प्यारे प्यारे गाने सुन रहे हैं, एक मूवी है का जो गाना है वो सुनना पसंद करेंगे। देखते हैं अगर टाइम मिले तो ज़रूर आपके बहन इंदिरा शारदा और सहेली नीला, प्रतिभा, शोभा और गीता के लिए थैंक यू सो मच जी साथ निभाने के लिए। हे गिनी सिलेक्शन, एक गीत चला देना ज़रूर मेरी जान। एंड दैट्स प्रकाशवती और शिट्टी हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं फ्रॉम बेल्जियम, थैंक यू सो मच माई ब्यूटिफुल। और सात समुदायर पार से फ्रॉम द सिटी ऑफ लव वी हैव मिस्टर डेव। हाई मिस्टर डेव, कैसे हो आप? एक गाना हो जाए या आपकी खूबसूरत सी वाइफ के लिए ज़रूर, जिनसे आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। एंड चलिए जी, नीले गगन के तले, ओके दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, कमला के लिए। एंड साउंड ऑफ मैडम एज अ गुड लेंस, ओके चलो कमला एंड साउंड्स के लिए। ये क्या है साउंड का तो मुझे समझ में नहीं आया, कमला जी आपके लिए ज़रूर और जो भी है आपके आसपास में उनके लिए भी गाना चलाएंगे। हैप्पी ट्यूसडे टू यू। एंड ऑफ कोर्स दैट्स कमिंग फ्रॉम अनीता जी जो फिकम फ्लक से हमारा साथ दे रही हैं। एंड थैंक यू सो मच अनीता जी, आप मुझे बता सकते हैं कि फिकम फ्लक में मौसम का क्या हाल है, क्योंकि पिछले फ्राइडे से मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो गई है, टेम्परेचर काफ़ी लो चला गया है। कुछ लोग हमें बता रहे हैं कि उनके यहाँ पे 13 डिग्रीज रात को जब पड़ रही है ना तो बहुत ही कड़क ठंड लग रही है, बट फिर भी हम तो कहते हैं आई एम सेंडिंग यू सम वार्म थ्रू दिस ब्यूटीफुल एंड मिसमराइजिंग गाने। तो चलिए जी, अपने दिल को ज़रा थाम लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम पेश करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो आपको हम खींच के लेके जाएंगे 1992 में।
2: RM2 Radio Mastin.

0: Retro Rhythm.
1: खूबसूरत पुराने गाने जी हाँ, उसका सिलसिला तो बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में ऑन आवर टू रेडियो मस्ती। टाइम जो है बीता चला जा रहा है, 1:49 हो चुके हैं। थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए। टू दोस्त जो अभी ड्राइव कर रहे हैं, धीरे से आराम से गाड़ी चलाना, लेकिन हमेशा रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा ऊँचा रखना, क्योंकि लेकर आते हैं कुछ गिने चुने नगमे स्पेशली आपके लिए। एंड चलिए, किसी ने बोला है कि फ्रांस में अच्छा, प्लीज़ सेंड अस सम कूल वेदर, मुझे पता है वहाँ पर गर्मी बहुत।

and it's hitting France much more than other countries in Europe. अभी के दिन कैनिकल जो है काफी हाई चल रही है, so please keep yourself hydrated, Mr. Dave. और बाकी जो हमारे listeners France से हमारा साथ दे रहे हैं, खूब सारा पानी पीते रहना और ठंडी ठंडी जो चीज़ें होते हैं body के लिए, cool cool चीज़ें जो होते हैं वही खाते रहना. So keep yourself cool and cool cool music तो हम वैसे ही play कर रहे हैं आप लोगों के लिए. और आज तो Mercury has gone up to 38 degrees. कुछ जगहों पे कल परसों में it was 40-41 degrees. I know it's unbearable. और यहाँ पे ठंड शुरू हो चुकी है, तभी तो बहुत सारे जो लोग हैं बीमार हो चुके हैं और गला भी खराब हो चुके हैं. सो प्लीज़ आप ऐसे ही जस्ट टू कीप योर सेल्फ वेरी वार्म, गर्म गर्म चीज़ें पीते रहना, गर्म गर्म चाय, गर्म गर्म कॉफ़ी. आए हाय, कॉफ़ी की बात की तो मुँह में पानी आ गया. कोई बात नहीं, लालच की बात होती है. हम भी जाएंगे थोड़ी देर बाद कॉफ़ी पीने के लिए. फिलहाल के लिए चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन जो हम लेकर आई है, स्पेशली उन तमाम सुनने वालों के नाम जो बड़े प्यार से शिद्दत से हमारा साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मस्त.

जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

तो चलिए जी दोस्तों, इट्स टाइम फॉर गणेशा टू से गुडबाय टू यू. आने वाली है परी, ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टूडियो फॉर सम गुड लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज, हॉट एंड स्पाइसी. एक्चुअली गर्मा गर्म बॉलीवुड की दुनिया से गर्मा गर्म न्यूज लेकर आई हैं अबाउट योर फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स एंड एज वेल सम लेटेस्ट बॉलीवुड गाने. तो बस साथ यूं ही देते रहना ऑन रेडियो मस्ती.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
1: नमस्कार आदाब. राष्ट्रीय सभा के कार्य जारी रखे जा रहे हैं. सत्र की शुरुआत में सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन बिल 2024-2025 नंबर 2 और 2026 बिल नंबर 7 पर बहस की गई. मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर विपक्ष विप अद्रियन जुवाल ने बहसों में भाग लिया. इसी सत्र के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने उल्लेख किया कि केपीआई का आगाज जून 2024 में ही किया गया था और रैंकिंग प्लेनरी को पिछली सरकार ने ही खारिज की थी. विधेयक को पारित किया गया और अब राष्ट्रीय सभा में बजट 2025-2026 के संदर्भ में अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 पर बहसें जारी हैं. शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने कहा कि समाज में जुर्मों, ध्वनि प्रदूषण और दूसरे प्रकार के अपराधों का हल तालीम है. परवरिश की बुनियाद अच्छी शिक्षा पर निर्भर है. बुलिंग के सिलसिले में बजट में ऐलान कदम पर बात करते हुए मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने चेतना अभियानों की अहमियत पर जोर दिया. शिक्षा मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र के लिए ऐलान कदमों की सराहना की. पीएमएसडी के नेता जावियर लुकजीवाल ने आज पोटली में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया. उन्होंने हालिया बजट भाषण पर टिप्पणी करते हुए कुछ खामियों और कन्फ्यूजन का उल्लेख किया. उन्होंने पेंशन प्रणाली में सुधार लाने के वास्ते माहिरों के आयोग की सिफारिशों का खंडन किया. इसके अलावा जावियर लुकजीवाल ने सरकार में अनुशासन और समग्र जिम्मेदारी की कमी पर भी बात की. पीएमएसडी के नेता ने समाज सुरक्षा के प्रेस सम्मेलन को दाद दी. विदेश में आज वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के दरमियान नए सिरे से बातचीत शुरू होने वाली है. बेरूत ने सीधे तौर पर बातचीत करने का फैसला लिया बावजूद ये कि ईरान और अमेरिका के बीच जंगबंदी की शर्तों में लेबनान को शामिल किया गया था. तो अभी के लिए बस इतना ही. इजाजत दीजिए. नमस्कार और आदाब.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

0: Bombay Talkies
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: तो वेल फ्रेंड्स, लेटेस्ट सॉन्ग्स या फिर लेटेस्ट इंडी पॉप सब कुछ आपके लिए लेकर आए हैं हमारे इस शो में 2 से लेकर 4 बजे तक. टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. मैं हूं परी आपके साथ. आई डू होप यू एंजॉयिंग योर ये सर्दियों वाली आफ्टरनून, जहां पर ब्यूटीफुल गानों के साथ आपकी इस दोपहर को हम सजाने वाले हैं विद सम लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स. सो क्या हालचाल, सब कुछ ठीक ठाक? जो भी है आपके वहां के हालचाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं विद योर मैसेजेस, विद योर डेडिकेशंस ऑन 5499-1294. कुछ प्यारे गानों के साथ आपको एंटरटेन हम करने वाले हैं 2 घंटों तक. सो आप भी हमारे हमसफर बन जाएं. एंड अभी के लिए ये जो ब्यूटीफुल ट्रैक है गोज आउट हमारे सभी लिसनर्स के नाम. हैव अ वंडरफुल टाइम ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती.
4: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती.

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti.

तो चलिए दोस्तों अब हम बात करने वाली हैं स्त्री 2 की जबरदस्त सक्सेस के दो साल बाद श्रद्धा कपूर एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर राज करने आ रही है। दरअसल एक्ट्रेस की अपकमिंग फिल्म इट्ठा जल्द ही रिलीज होने वाली है और उससे पहले मेकर्स ने इस फिल्म का टीजर रिलीज किया है। इट्ठा की पहली झलक देखने के बाद फैंस अब इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धा कपूर की अपकमिंग इट्ठा का टीजर जबरदस्त है और ये एक मशहूर लावणी कलाकार विठा बाई नारायण गांवकर की जिंदगी पर आधारित है। उनके कुछ यादगार पलों को इसमें दिखाया जाएगा और श्रद्धा कपूर पहले ही सीन से इस किरदार में पूरी तरह ढल जाती है। सो देखना ये होगा कि ये फिल्म लोगों को कितना अपनी ओर खींचती है, क्योंकि ये तो हम जानते हैं जब एक्टिंग की बात आती है श्रद्धा कपूर हमेशा नेल्स इट। सो लेट्स वेट एंड वॉच आफ्टर स्त्री 2 अब इट्ठा में वो क्या कमाल दिखाने वाली है, क्योंकि अभी के लिए तो हो रहा है इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार।

0: मस्ती
1: RM2
2: रेडियो मस्ती Join the RM2 team. This Thursday, 25th of June, at the Municipal Council of Kathabone for a job and training fair organized by the Ministry of Labour and Industrial Relations. RM2 will be live as from 10 a.m. to noon. So don't miss out.
1: RM2
2: Radio Musti.
3: Friends, it's 2:38 connected है आप RM2 Radio मस्ती के साथ. For now, we have some latest songs. कुछ गाने ऐसे भी जो कुछ बहुत ही popular songs हैं और कुछ गाने ऐसे जिन्हें हम पहली बार सुन रहे हैं. अभी जो गाना आपने सुना Welcome to the Jungle, रिलीज होने वाली है ये फिल्म जिसमें भरमार है बॉलीवुड स्टार्स की और उसी फिल्म का ये गाना था आप सभी के लिए. एंड फॉर नाउ वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग इन द वॉइस ऑफ जुबिन नौटियाल. एवरीवन हु इज कनेक्टेड हमारे साथ, ये गाना आप सभी के नाम और दोस्तों आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499 1294 पर. मैं हूं परी आपके साथ till 4 p.m. on the waves of RM2 Radio Masti.

0: 2 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रही हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti.

0: Bombay Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: So, well, that was a beautiful song, Tujhko. Yes, Cocktail 2 हम बात कर रहे थे. That is, film को बहुत ही अच्छा response मिल रहा है. और अच्छा response देखने के बाद कृति सनन चली गई थी PVR अपने fans को मिलने के लिए. यानी कि जैसे movie का show खत्म हुआ, लोगों ने देखा कि oh my god, ये तो Cocktail 2 की ही कृति सनन है जो हमारे सामने खड़ी है. और फिर fans ने उनके साथ selfies पे selfies खिंचवाई. और कृति सनन ने भी सबको smile करते हुए एकदम प्यारी प्यारी photos दी. So that was a wonderful moment for all the fans जो इस फिल्म को देखने गए थे. और अभी के लिए तो good response मिल रहा है Cocktail 2 को. यहाँ पर हमारी विजया जी कहती है nice song तुझको. Actually yes, it's a very beautiful song. और अरिजीत सिंह की आवाज़ तो हमेशा हमारे दिल को छू ही जाती है. So ये गाना था हमारे सभी listeners के नाम जो हमारा साथ दे रहे हैं. Happy birthday wishes रिवे जो हाँपा से. आज सचिन बुनियादी अपना birthday celebrate कर रहे हैं. So good wishes आपको. And बहुत सारा प्यार special wishes that's coming from all your loved ones. और wishing a very happy birthday. 11th birthday है बेटी रिया परमेसा. और उनके लिए बहुत सारा प्यार and special wishes. आप है बहुत इजामोहित से and आपके लिए special wishes लेकर आए हैं आपके पापा राजेश. मामा है शिवानी. भाई रोहन सुजल. साथ में है निशी विधि and नानी सूप. सभी की ओर से बहुत सारा

0: प्यार एंड स्पेशल स्पेशल विशेस। और चलिए यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड हैं वर्षा, आप भी ओके, यू आर एंजॉयिंग द सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं आपके समाचारों की ओर, उसके बाद लौट कर आएंगे। दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज, मैं हूँ परी आपके साथ राइट हियर ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती टिल 4 PM।
1: RM2 रेडियो मस्ती

0: listening to Radio Misty.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Musti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
6: नमस्कार आदाब. लंच ब्रेक के बाद राष्ट्रसभा में रोड्रिग्स की सांसद मनन ने राष्ट्रीय बजट पर अपनी राय पेश की. उन्होंने कहा कि रोड्रिग्स के लिए 11.2 बिलियन रुपए का बजट निर्धारित करने के अलावा ये बजट कई पहलुओं के मद्देनजर हिम्मत वाला

0: है। श्रीमती मनन ने मैटरनिटी लीव को एक साल तक बढ़ाने के प्रावधान पर खुशी जताई। टैक्स के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मुस्लिम परिवारों पर टैक्स का बोझ है, इसके बावजूद राष्ट्रीय अर्थनीति और खरीद ताकत में संतुलन लाया गया है। साइबर जुर्मों में बढ़ोतरी हो रही है। एक साल में 866 महिलाओं के साथ ऑनलाइन हरासमेंट हुआ है, जबकि 548 पुरुष शिकार है। ये मसला ज्यादातर नौजवानों को मुवस्सिर कर रहा है। 14 से 15 साल के शिकार नाबालिगों के साथ धोखाधड़ी के करीब 5000 मामले दर्ज हुए हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने नौजवानों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। विषय रहा इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के खिलाफ डिजिटल मजबूती। अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों का रोड मैप तैयार करने पर मंजूरी जताई गई है। अमेरिका ने ईरान पर तेल निर्यात से जुड़े प्रतिबंधों को 60 दिनों के लिए हटा दिया, जिससे ईरान अब अपनी तेल और पेट्रोकेमिकल उपज का निर्यात कर सकेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस ने दावा किया कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के निरीक्षकों को देश में वापस आने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है। फ्रांस, स्पेन और पश्चिमी तथा मध्य यूरोप के अन्य देशों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी है। आने वाले दिनों में गर्मी की स्थिति और अधिक गंभीर होने का अनुमान है, जिससे तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है। यूरोप में चल रही भीषण गर्मी की वजह से फ्रांस में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। कम से कम 18 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

वेल फ्रेंड्स, योर नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन वेलकम करते हैं आप सभी का इन दिस आवर। 3:06 हो रहे हैं। बी टाउन की अपडेट्स आपके लिए। इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज। मैं हूं परी आपके साथ 4 PM। फना, विशाल मिश्रा, रूप कुमार राठौड़ की आवाजें। ब्यूटीफुल सॉन्ग ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट लेकिन विद द ट्विस्ट। एंजॉय दिस वन।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: सो वेल फ्रेंड्स, परफेक्ट टाइम 3:15 और आप हमारा साथ दे रहे हैं इस आफ्टरनून टाइम में. सो टी टाइम अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, नॉट टू फॉरगेट, हम तो लेकर आए हैं बी टाउन की अपडेट्स आप तक, आपके फेवरेट सेलेब्स और उनसे जुड़ी हुई खबरें. सो बताते दैट बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने अपनी अदाकारी से भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है. एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में बीते 34 ईयर्स से राज कर रहे हैं और बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने टीवी पर भी काम किया था. लेकिन उनके फैंस को ये जानकर हैरानी हो सकती है कि बचपन में उनके

दिलचस्पी एक्टिंग में बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो स्पोर्ट्स खेलना चाहते थे, वो क्रिकेटर या फुटबॉलर बनना चाहते थे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया। कुछ साल पहले शाहरुख खान एक शो में पहुंचे थे और इस दौरान उनसे कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की गई। शाहरुख खान ने अपनी फिल्मों और परिवार आदि से लेकर बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की, साथ ही उन्होंने बचपन में अपने शौक के बारे में भी बताया। शो पर शाहरुख खान से सवाल किया गया कि एक्टिंग का भूत बचपन से था या फिर जवान होते होते आया, जिसके जवाब में शाहरुख खान ने कहा कि वो एक्चुअली स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे और उनका बहुत दिल करता था कि वो अपने देश के लिए खेले, वो अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहते थे और बहुत सारे ऐसे खेल थे जो उन्हें पसंद थे। उन्हें क्रिकेट पसंद था, उन्हें फुटबॉल पसंद था और उन्हें हॉकी भी बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन उन्हें एक चोट लगी और उसके बाद उनका झुकना भी मुश्किल हो गया। उसके बाद उन्होंने थिएटर्स शुरू किए और उसके बाद आई टीवी, मतलब टीवी का सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद मूवीज़। और ये तो हम जानते हैं कि वो देश का नाम रोशन करना चाहते थे, लेकिन भले एज अ प्लेयर ना सही, लेकिन एज अ एक्टर उन्होंने इंडिया का नाम ज़रूर रोशन किया है। चारों तरफ जब बॉलीवुड की बात होती है, दुनिया भर में जब बॉलीवुड की बात होती है, शाहरुख खान का नाम सबसे पहले आता है। सोवेल अब तो बन गए हैं ग्लोबल आइकन, ग्लोबल स्टार, दैट्स शाहरुख खान। और उन्हीं की फिल्म का ये गाना आप सभी के लिए, अरिजीत सिंह की आवाज है और आपके लिए इस गाने को हम चला रहे हैं। सो चलिए दोस्तों, कनेक्टेड हैं आप RM2 रेडियो मस्ती के साथ। मैं हूं परी आपके साथ 4 PM एंड दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज़।

0: Bombay Talkies
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: दोस्तों जैसे हम कहते हैं कि फिल्में तो रिलीज होती रहती है और लोगों को जो फिल्में अच्छी पसंद आती है यानी कि एक कह सकते हैं एक ऐसा जॉनर है जो ऑलमोस्ट हिट ही साबित होता है और वो है हॉरर का जॉनर। तो आपको बता दें बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म आवारा पन 2 को लेकर सुर्खियों में है। इसी बीच उनकी एक और फिल्म की अनाउंसमेंट हो गई है और वो एक बार फिर हॉरर जॉनर में वापसी करने जा रहे हैं। एक्टर जल्द ही फिल्म रूह में नजर आने वाले हैं और हाल ही में मेकर्स ने फिल्म की पहली झलक दिखाई है। मेकर्स ने इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है और इसी के साथ डरावना फर्स्ट लुक भी जारी किया है जिसने फैंस का एक्साइटमेंट लेवल और भी बढ़ा दिया है। मेकर्स ने 52 सेकंड का वीडियो शेयर किया है और रूह का फर्स्ट लुक टीजर एकदम दमदार और डरावनी आवाज से शुरू होता है और इसे देखने के बाद अब फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है कि ये फिल्म कैसी होने वाली है और क्या ये एक बार फिर इमरान हाशमी के फैंस को डराने वाली है। इसके लिए तो करना है थोड़ा सा इंतजार लेकिन बिल्कुल अभी के लिए तो रोमांटिक मूड को हम ऑन रखते हैं। That's a beautiful track, Jubin Nautiyal की आवाज, picturized on Imran Hashmi. हमारे सभी दोस्त जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, this one goes out for you. साथ देने के लिए शुक्रिया and have a wonderful afternoon, Radio Masti के साथ.

तो चलिए यहाँ पर इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. और जाते जाते आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस. यहाँ पर एक मैसेज आया है, लेकिन ये कौन सी भाषा में आया है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी आप कहना चाहते हैं, आई डू होप यू एंजॉयिंग द सॉन्ग्स एंड थैंक यू, दैट्स सो स्वीट. आपने यहाँ पर अपनी भाषा का इस्तेमाल किया है, लेकिन आई एम सो सॉरी, आई कांट रीड दिस एंड थैंक यू. आपने जो भी लिखा है बहुत ही प्यार से लिखा होगा, सो बहुत सारा प्यार आपके नाम. एंड यहाँ पर कुमार देवचंद साथ दे रहे हैं इलायची चाय के साथ, फुल वॉल्यूम पर एंजॉय कर रहे हैं रेडियो मस्ती को. डेडिकेटिंग गाना फॉर कलीग्स, टीचर्स विकास, राजू, एशली, प्रिंस, रोमेश, लालदेव, श्याम एंड सभी देवीचंद परिवार जो हमारा साथ दे रहे हैं. एंड यहाँ पर डेविसन हमारा साथ दे रहे हैं, आप लाल माती से आप भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल वंडरफुल टाइम. वेल प्रकाशवती जी एंजॉय कर रही हैं सिलेक्शन को, जानकर अच्छा लगा, गाना होगा आपके नाम भी एंड थैंक यू. इतने दूर होने के बाद भी आप इतने करीब है, यानी कि अब्रॉड से आपने ये प्यार हम तक पहुंचाया, सो गाना आपके नाम. ललिता जीतन कह रही हैं दैट आ गई हूँ मैं घर पर एंड लिसनिंग टू द सॉन्ग्स. एक्चुअली इस वक्त आप ड्राइव कर रही हैं एंड लिसनिंग टू द सॉन्ग्स, सो गाना होगा आपके नाम. थैंक यू जी और बहुत सारा प्यार आपके लिए एंड वेल दैट्स सो स्वीट, बहुत सारी शुभकामनाएं. ओके ओके रोशनी, ओहो हमारी प्यारी सी रोशनी हमारा साथ दे रही है. ओके जी आपके दिल का हाल हम तक पहुंच गया और हम भी जानते हैं दैट यू आर कनेक्टेड हमारे साथ, सो हैव अ वंडरफुल टाइम. एंड नेक्स्ट गाने के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय, अलविदा. और मेरे बाद आ रही है रिया लेकर योर अवतार वाइब्स. स्टे कनेक्टेड ऑन द वेव्स ऑफ आरएन2 रेडियो मस्ती, कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए.

0: The time is brought to you by McDonald's.
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
2: Radio Musti.
3: North. South.
4: 103.5.
3: East. West.
4: 96.4.
3: Center.
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: अपनी घर में लाते चलिए, शाम की ठीक 4 बज रही है। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम सुमहरा अकबर अली के साथ है। संत नमस्कार आदाब आपको सुमहरा।
7: नमस्कार आदाब। साइबर जुर्मों में बढ़ोतरी हो रही है। एक साल में 866 महिलाओं के साथ ऑनलाइन हरासमेंट हुआ है, जबकि 548 पुरुष शिकार हैं। ये मसला ज़्यादातर नौजवानों को मुवस्सिर कर रहा है। 14 से 15 साल के शिकार नाबालिगों के साथ धोखाधड़ी के करीब 5,000 मामले दर्ज हुए हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने नौजवानों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। विषय रहा इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के खिलाफ डिजिटल मजबूती। राष्ट्रसभा में सांसद रविराज बिचुक ने बजट में गन्ना और चाय उद्योगों के लिए घोषित प्रेरणादायक कदमों पर तसल्ली जताई है, लेकिन पब्लिक गैदरिंग और पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेटों के फैसलों पर उन्होंने अपनी नामंजूरी जताई है। आज राष्ट्रसभा में ही रविराज बिचुक के बाद किशोर जुवाल ने सॉलिडारिटी और जिम्मेदारी पर बात की। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में अतिरिक्त 2 मिलियन रुपए लगाए जाने पर उन्होंने सरकार को दाद दी। उन्होंने कहा कि पेंशन प्रणाली में मीन्स टेस्ट को फ्रीज करने का फैसला के फैसले से लोगों को राहत पहुंची है। विदेश में कतर की सबसे बड़ी LNG सुविधा जो रास अल अफान में स्थित है, उसमें हुए जोरदार धमाके में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है और 66 लोग घायल हुए हैं। इस विस्फोट को एक तकनीकी दुर्घटना बताई जा रही है। और कनाडा में मोंट्रियल पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह को गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी, एक नागरिक और एक संदिग्ध, कुल 3 लोगों की मौत हुई है। एक सशस्त्र और खतरनाक संदिग्ध

0: के संबंध में पहले जारी किया गया आपातकालीन अलर्ट अब समाप्त कर दिया गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. You're listening to RM2, a Radio Musti.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides.
1: RM2.

0: नमस्ते, सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? रेडियो मस्ती पर शुरू हो चुका है रफ्तार वाइब्स और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी ही रिया। शाम धीरे धीरे अपने रंग जमा रही है। घड़ी में अभी 4:07 हुए हैं और सड़कों पर वो रोज वाला रश शुरू हो चुका है। कुछ लोग ऑफिस से निकल चुके हैं, कुछ अभी भी फाइल्स और मीटिंग्स में व्यस्त है और कुछ लोग स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठकर घर की तरफ सफर शुरू कर चुके हैं। लेकिन चाहे आप कहीं पर भी क्यों ना हो, आज का अगला एक घंटा सिर्फ काम और ट्रैफिक का नहीं, मस्ती और एनर्जी का है। आज हम लेकर आए हैं वो गाने जो आपके कदमों को तेज कर दे, मूड को फ्रेश कर देंगे और ट्यूसडे को भी फ्राइडे जैसा महसूस करवा देंगे। तो सीट बेल्ट आप बांध लीजिए, कस के बांध ही लीजिए, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और तैयार हो जाए। फील द वाइब, फील द मस्ती, फील रेडियो मस्ती। ये है रफ्तार वाइब्स रिया के साथ। चलिए नेक्स्ट गाने की ओर हम बढ़ते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट आपके डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2

0: राइट हम आपको बता रहे थे अगर आप किसी खास शख्स के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट ढूंढ रहे हैं तो मिस्टिक वर्ल्ड में मिलेंगे आपको ब्यूटीफुल गिफ्ट कार्ड्स गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी ऑथेंटिक क्रिस्टल्स और स्टनिंग होम डेकोर आइटम्स ये बार बार हम आपसे कहते रहते हैं और इसी बात पर खेलती है एक मजेदार बॉलीवुड गेम आज का सवाल आप हम आपसे पूछेंगे अगर आप जीत जाते हैं तो आपको मिल सकता है 500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर ऑफर टू यू बाय या mysticworld.mu तो चलिए बॉलीवुड क्वेश्चन ही हम लेकर आते हैं आपके नाम और ये ही आपसे पूछेंगे सो फिल्म कभी खुशी कभी गम में फिल्म कभी खुशी कभी गम में वो का आइकॉनिक डायलॉग सबको तो याद है ही कौन है जिसने मुझे दोबारा मुड़कर नहीं देखा जी हाँ ये डायलॉग आई एम श्योर कि आपको ज़रूर याद आ रहा है और बस आपको हमें ये बताना है कि इस फिल्म में पू का किरदार किस एक्ट्रेस ने निभाया था बहुत ही सरल है इस फिल्म में पू का किरदार किस एक्ट्रेस ने निभाया था राइट आंसर पूरे नाम और पूरे पते के साथ ऑन 5499-1294 चलिए गुड लक टू ऑल ऑफ यू
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2

0: और हमारे पास आ चुके हैं बहुत सारे मैसेजेस. जी हाँ, हमने एक गेम खेला था आपके साथ और पूछा था दैट इन द मूवी कभी खुशी कभी गम, इस मूवी में पो का किरदार किसने निभाया था, किस एक्ट्रेस ने निभाया था. एंड सही जवाब है करीना कपूर. जी हाँ, ये है सही जवाब. और यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस मिले, लेकिन एज यू नो लकी ड्रॉ तो करना पड़ेगा क्योंकि विनर एक ही चाहिए. और इसी के साथ हमारी लकी विनर बनती है यहाँ पर आप है मिस या मिसेस उर्वशी रामरतन, आप है लाफलोगा से और आपने दिया है सही जवाब. 500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर आपको मिल रहा है mysticworld.mu से. और let me tell you that ये वाउचर आप तक by post पहुँचाया जाएगा. एंड congratulations once again आपको जो लोग नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, आपकी बारी भी जरूर आएगी. आज नहीं तो कल, कर नहीं तो परसों, लेकिन बारी सबकी आती है. एंड इसी के साथ हम आपसे कहेंगे कि रेडियो मसीह आप सुनते रहिए, क्योंकि हम अक्सर गेम्स लेकर आते हैं आपके नाम, और वो भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग इनाम के साथ. स्टे राइट ट्यून, स्टे कनेक्टेड टू रेडियो मस्ती, और आप सुनते रहिए रफ्तार वाइब्स रिया के साथ.
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: Traffic Update. Traffic Update.
1: चलिए जी, इस समय सड़कों पर रश बढ़ता जा रहा है. कुछ लोग ऑफिस से निकल चुके हैं, कुछ लोग अभी भी सफ़र में हैं और कई लोग घर की तरफ अपनी मंजिल ढूंढ रहे हैं. इसलिए रेडियो मस्ती पर हम आपको देते रहेंगे ट्रैफिक की ताज़ा जानकारी, ताकि आपका सफ़र रहे आसान और सुरक्षित. एंड अभी समय हो गया है हमारे ट्रैफिक अपडेट का. हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांस्टेबल बुटुली, जो हमें बताएंगे कि इस समय किन इलाकों में ट्रैफिक ज्यादा है, कहाँ गाड़ियों की रफ्तार धीमी है और कौन से रूट्स ज्यादा सुविधाजनक रहेंगे. तो चलिए सीधा हम चलते हैं कांस्टेबल बुटुली के पास. हेलो सर.
2: Bon après-midi, Ria. Bon après-midi, tous les auditeurs de Radio Masti. À l'heure qui m'a piqué avec vous, d'après ma dernière information reçue, pas d'accident ou obstruction majeure à signaler sur nos routes. Concernant la circulation, au niveau de Codon, nous avons déjà une grosse flotte de véhicules qui peut quitter la capitale et prendre en direction le nord. Côté nous pénètre ben ralentissement au niveau de Fanfaron en passant par Kédé, Rochebois jusqu'à Richter. Mais après Richter, ça fait prendre de la vitesse en direction du nord. Prochain ralentissement, c'est au niveau du rond-point de Beauplan en direction le nord. Pour ben véhicule qui peut diriger vers le sud et le centre, là nous pénètre un ralentissement, surtout pour ben qui peut emprunter le rond-point de Saint-Jean en direction de Rosil et Quatre-Bonnes. Et pour le sud, c'est au niveau du rond-point de Highlands et Canfoucro en direction de Wooton. Pour ban et aussi nous pouvons noter un ralentissement pour ban véhicule qui peut emprunter le rond-point de Pontfier en direction de Jumbo et Vacqua. Nous disons ban automobilistes, prends votre mal en patience, côté la ban embouteillage, et ban policiers, nous ban moteurs déjà sur place des vitrées d'eau et de faire les nécessaires pour débuter la circulation. Nous faisons un rappel à ban chauffeurs, soyez prudents sur la route, soyez vigilants et aussi n'oubliez pas, soyez courtois. Sur ce, Ria, monsieur, une bonne fin d'après-midi, bonne route et au revoir.
1: थैंक यू सो मच कांस्टेबल बुटुली, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए. और दोस्तों, हम आपसे कहेंगे कि याद रखिए, थोड़ी सी सावधानी आप

0: को और आपके अपनों को सुरक्षित घर तक पहुंचाती है। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाइए, मोबाइल फोन से दूर रहिए और सड़क पर पूरा ध्यान रखिए। अब चलिए हम वापस लौटते हैं रफ्तार वाइब्स की तरफ, जहां बजते रहेगी आपकी फेवरेट एनर्जेटिक गाने।
1: You're listening to Radio Masti.

स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।

0: चलिए समय हो चला है स्पोर्ट्स न्यूज का और स्टूडियो में आ गए हैं अरविंद, तो चलिए उनसे सुनते हैं कि आजकल स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ हो रहा है। गुड आफ्टरनून टू यू अरविंद।
1: गुड आफ्टरनून आपको, गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स, द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। सो वर्ल्ड कप जारी है, वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। लियोनेल मेसी का क्या कहना, अद्भुत लाजवाब रिमार्केबल परफॉर्मेंस। अभी तक अर्जेंटीना के पांचों गोल मेसी के ही थे। अब आप क्या होगा, पोर्टुगल में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो झपट्टा मारने के लिए तैयार है क्योंकि पहले मैच में ड्रॉ गया था 0-0। आज लासलिसाओ को गोल स्कोर करना है, नहीं तो आगे चलकर परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन आसान नहीं होगा क्योंकि उज़्बेकिस्तान की टीम ने अच्छी शुरुआत की थी, कोलंबिया के खिलाफ एक गोल भी स्कोर किया था। सो पोर्टुगल उज़्बेकिस्तान ये मैच आज 9 बजे। कोलंबिया में आत्मविश्वास प्रबल है, उसकी पहले मैच में जीत हुई थी, उज़्बेकिस्तान को हराया था। लुइस जाज वर्ल्ड कप में अपना खाता खोल चुका है और उसे रोकना, उसे बांधना आसान नहीं होगा। डिकफेटेगोस इस ग्रुप में फेवरेट है क्वालिफाई होने के लिए और कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की टीम जो पहली बार अभी खेल रही है, पोर्टुगल को मुर्गा बना के रखा था 0-0 का ड्रॉ, इसीलिए इस टीम से बच के रहना होगा। इस टीम में अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जो पासा पलट सकते हैं। उधर ग्रुप एल में इंग्लैंड के द थ्री लायंस गाना के से टक्कर लेंगे और यहां पर जो टीम जीतेगी वो क्वालिफाई हो जाएगी अगले राउंड के लिए। इंग्लैंड में टोमास टुखेल के लिए सिलेक्शन क्राइसिस, जबकि गाना के लिए टोमास पाउटी आज खेल पाएगा। टोमास पाउटी जो एक समय आर्सेनल में था, वो अच्छी तरह से जानता है इंग्लैंड के खिलाड़ियों को। डेक्लन राइस ने कहा कि वो एक खतरा साबित हो सकता है। ये मैच आज मिडनाइट किक ऑफ होगा और फिर NBC 11 पर इसे आप लोग लाइव देख पाएंगे। इधर पनामा और क्रोएशिया के बीच भी मैच काफी रोचक है, दोनों टीमों की हार हुई थी, तो जो हारेगा वो गया और जो जीतेगा उम्मीद है अगले राउंड में जाने के लिए। तो इंग्लैंड से 4-2 से हारने के बाद क्रोएशिया की टीम को वापस आना होगा, नहीं तो काम मुश्किल हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण फिक्स्चर्स आज के, और आज काफी टीमें क्वालिफाई हो जाएंगी फॉर द नेक्स्ट राउंड। इन पर समय समय पर आपको जानकारियां देते रहेंगे।
0: Thank you so much, Arvind, for these updates.
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: RM2, Radio Masti.

आपने ये शायद कभी नोटिस किया है कि कभी कभी पूरा दिन थकान भरा होता है, लेकिन एक फेवरेट गाना बज जाए तो लगता है जैसे बैटरी फिर से चार्ज हो गई। म्यूजिक की ये तो खास बात है, ये सिर्फ सुनाई नहीं देता, ये महसूस भी होता है। एक ऐसा गाना आपकी एक कदम तेज कर देता है, एक खुशनुमा धुन आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है, और शाम के इस समय जब काम को बोझ पीछे काम का जो बोझ है ये पीछे छूट जाता है, तो आपको लगता है कि बस ऐसे ही लाइट लाइट फील हो रहा है, नज़र के सामने आ जाता है एक राहत भरी शाम जो आपकी ताक में है, और ये सब बस म्यूज़िक का ही तो जादू है। इसलिए हम गाने चुन चुन कर लाते हैं आप सभी के नाम, ताकि आपका ये सफ़र बहुत ही अच्छे से कटे और बहुत ही अच्छा टाइम आप बिता सके अपनों के साथ घर जाकर। आई नो कि आप थके हारे घर लौटते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए बच्चों के नाम, पेरेंट्स के नाम, खुद के नाम, ताकि हम फिर से कुछ जी सके कुछ ऐसे। एंड यही तो होता है जब आप थोड़ा सा समय खुद के लिए निकाल पाते हो, बहुत ही अच्छा होता है जब हम समय देते हैं अपने आप को, मेंटली भी और फिजिकली भी। सो आई एम श्योर कि आप थोड़ा सा समय ज़रूर निकालेंगे खुद के नाम, और हम गाने तो चलाते रहेंगे आप सभी के नाम। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती, और दिस इज़ योर रफ्तार वाइब्स रिया के साथ।

0: Once again, a big hello. Namaste, सभी को स्वागत है आपका, फिर से स्वागत है आपका इन द सेकंड आवर ऑफ रफ्तार वाइब्स रिया के साथ. अभी आप घड़ी मिलाते चलिए, 5:10 हो रही है और यहाँ पर हम लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत गाने आपके नाम. शाम क्या है कि अब धीरे धीरे अपनी खूबसूरती बिखेर रही है. दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब समय है थोड़ा सा सुकून लेने का, थोड़ा सा दिल की बातें महसूस करने का. इस पहले घंटे में हमने बहुत सारे एनर्जेटिक और पेपियाने चलाए, मस्ती भरे गाने चलाए, लेकिन अब अगले घंटे में हम लेकर आ रहे हैं कुछ ऐसे गाने जो दिल को छू जाएंगे. अगर आप ड्राइव कर रही है, किसी अपने को याद कर रही है, या फिर बस खिड़की के बाहर बदलते आसमान को देख रही है, तो ये घंटा आपके नाम है. मोहब्बत, यादें, मुस्कान और खूबसूरत एहसासों से भरे रोमांटिक गाने, बस यही रेडियो मस्ती पर रिया के साथ. एंड आपकी जो डेडिकेशन है ये हम थोड़ी देर में वापस लेकर आएंगे, बट आप अभी तक भेज सकते हैं आपकी डेडिकेशन मैसेजेस 5499-1294.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स, RM2.

आसमान का रंग बदलते हैं और दिल थोड़ा सा अपनी बात सुनने लगता है। ये वही समय है जब यादें ज़्यादा खूबसूरत लगती है, पुराने गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं और किसी अपने की कमी थोड़ी ज़्यादा महसूस होती है। वैसे अभी तो हम उतने पुराने गाने तो नहीं चला रहे हैं, लेकिन रोमांटिक गानों का सिलसिला जारी है यहाँ पर रॉन आरएम2 रेडियो मस्ती। इट्स योर रफ्तार वाइब्स रिया के साथ था। वैसे ये गाने, ये जो रोमांटिक गाने हम चलाते हैं, ये इस मोमेंट को और भी खास बना देते हैं। क्या है कि ये सिर्फ गाने नहीं होते, ये दिल की जुबान बन जाते हैं। तो जहाँ भी हैं आप, इस पल को महसूस कीजिए, सफर का मजा लीजिए और गाने को अपने दिल तक पहुँचने दीजिए। एंड द नेक्स्ट वन गोज आउट टू ऑल आवर लवली लिसनर्स जो इस समय ट्रैवल कर रहे हैं और शायद घर भी पहुँच गए हैं। कोई बात नहीं, अगर आप अभी तक घर नहीं पहुँचे, पहुँच जाएंगे, मंजिल तो वही है, पहुँच ही जाएंगे थोड़ी देर में। और जो लोग काम कर रहे हैं अभी तक, आपको हम बुक आशा कहते हैं।

पर ये तो आप मानते होंगे कि दिन भर दुनिया बहुत कुछ कहती है, फोन सब बजते हैं, मीटिंग्स चलती रहती है, लोग मिलते हैं, लेकिन शाम का समय कुछ अलग होता है।

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
1: वेल, आज का अगली फैशन टिप बहुत ही सिंपल है लेकिन हर किसी के काम आ भी सकता है। बहुत लोग वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े रखते हैं लेकिन फिर भी रोज ये सोचते हैं कि आज क्या पहनूं। इसका एक आसान सा हल है, अपने वार्डरोब में कुछ क्लासिक रंग जरूर आप रखिए, जैसे सफ़ेद, काला, बेज और नेवी ब्लू या पेस्टल शेड्स भी आप रख सकते हैं। ये रंग आसानी से एक दूसरे के साथ मैच हो जाते हैं और हर मौके पर अच्छे लगते हैं। इससे आप कम समय में स्टाइलिश कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और हर दिन नया लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। और एक बात याद रखें कि सबसे खूबसूरत एक्सेसरी आपकी मुस्कान और आपका आत्मविश्वास होता है। ये फैशन टिप अब तक हम लाए हैं एंड दैट्स अब स्पॉन्सर्ड बाय अलकोरी फैशन, जहां हर आउटफिट के साथ जुड़ता है स्टाइल और एलिगेंस का खास एहसास।
0: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय अलकोरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
1: एंड धुरंधर 2 मूवी से लिया हुआ ये गाना हम डेडिकेट करते हैं अन्ना के नाम, जो इस समय फुल ऑन साथ दे रहे हैं। सो एंजॉय दिस वन।

0: You're listening to Radio Masti.
1: कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां शोर में नहीं बल्कि खामोश लम्हों में लिखी जाती है। एक मुस्कान, एक मुलाकात, एक याद, और फिर वो लम्हा दिल में हमेशा के लिए बस ही जाता है। अगर अभी से शाम किसी को याद कर रहे हैं, किसी खास शख्स को याद कर रहे हैं, या बस खुद के साथ कुछ सुकून के पल बिता रहे हैं, तो ये गाना सिर्फ आपके नाम जाता है। रेडियो मस्ती पर रफ्तार वाइब्स के साथ सुनिए ये बहुत ही खूबसूरत गाना।

0: पेश है समाचार बुलेटिन। आप सभी का खैर मकदम। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। आज राष्ट्रसभा में वित्तीय साल 2024-2025 के लिए 2.2 बिलियन रुपए के अतिरिक्त बजट पर मंजूरी जताई गई। इस विधेयक को पेश करते हुए प्रधान एवं वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि बजट 2024-2025 पुराने वित्त मंत्री की तरफ से गैर जिम्मेदारी की एक बड़ी मिसाल है। राष्ट्रीय बजट में ऐलान किए गए जिन कदमों ने मुर्शिदों की तवज्जो आकर्षित की, उनमें माओं को प्रदान खास छुट्टियां और लड़कियों को प्रदान मेंस लीव शामिल। यूरोप में भीषण गर्मी, 15 से ज्यादा लोगों की मौत। और कोंगो में इबोला के संक्रमित मामले 1000 के पार। नमस्कार और आदाब। राष्ट्रसभा में वित्तीय साल 2024-2025 के लिए 2.2 बिलियन रुपए के अतिरिक्त बजट पर मंजूरी जताई गई है। इस विधेयक को पेश करते हुए प्रधान एवं वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि बजट 2024-2025 पुराने वित्त मंत्री की तरफ से गैर जिम्मेदारी की एक बड़ी मिसाल है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार अर्थनीति को मजबूत बुनियादों की राह पर दोबारा गामजन करने के लिए कटिबद्ध है। मिगन पुन्ना पनायकन, करुणा लालू।
1: सप्लीमेंटरी अप्रोप्रिएशन बिल 2024-2025 में 7 सार्वजनिक विभागों और मंत्रालयों के व्यय के लिए 2.264 बिलियन रुपए का प्रावधान है। इनमें खासकर प्रिजन सर्विस, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर दफ्तर, आवास, उच्च शिक्षा मंत्रालय, प्रांतीय प्रशासन, दमकल विभाग और पार्लियामेंटरी काउंसिल दफ्तर शामिल हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार पूर्व वित्त मंत्री द्वारा खर्चों का गलत अनुमान लगाया गया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा,
2: 2024-2025 बजट
1: वित्त वर्ष 2024-2025 का बजट पूर्व वित्त मंत्री की फिस्कल गैर जिम्मेदारी का एक और स्पष्ट उदाहरण है। आय के अनुमान अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए, जबकि व्यय की आवश्यकता को काफी कम आंका गया। ऐसा प्रतीत होता है कि बजट घाटे को कम दिखाने और सार्वजनिक कर्ज को

0: जीडीपी अनुपात यानी रेशो को घटता हुआ प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया गया। सरकारी नेता ने कहा कि सार्वजनिक स्थिति में सुधार के वास्ते साहसिक फैसले लिए गए। हमने अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने का रास्ता नहीं लिया। सरकार अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक वित्त को मजबूत आधार पर स्थापित करने तथा सतत और समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बहसों के दौरान विपक्षी व्हिप आरजी अजवाल ने उच्च शिक्षा मंत्रालय के लिए निर्धारित अतिरिक्त 1.3 बिलियन रुपए के बजट पर रुचि दिखाई और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में बोर्ड के गठन में विलंब का उल्लेख किया।
1: Les conseils d'administration n'ont été constitués que cette année-ci. Quel est le résultat final? Madame la présidente, l'université de Maurice a régressé de la 2457e place mondiale est arrivée aujourd'hui à 2484. Elle a perdu 27 places.
0: उच्च शिक्षा मंत्री ने स्पीकर द्वारा खास रूप से अनुमति प्राप्त करने के बाद उन्हें जवाब दिया। कविराज सुको ने हाई एजुकेशन एक्ट में लाए गए सुधारों का उल्लेख किया।
2: The ranking is their doing. They did nothing for this sector. That's why we are in this position today. When we came, we changed the High Education Act immediately. I tell you now, go and check the QS ranking. University of Mauritius is ranked in the top 150 in the world in tourism and hospitality.
0: प्रधानमंत्री ने बहसों के समाहार के दौरान भी विपक्षी व्हिप को जवाब दिया। इस बिल को सुधार के साथ पारित किया गया।
3: और राष्ट्रीय सभा में राष्ट्रीय बजट 2025-2026 के संदर्भ में अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 पर बहसें जारी हैं। शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने कहा कि समाज में जुर्मों, ध्वनि प्रदूषण और दूसरे प्रकार के अपराधों का हल तालीम है। परवरिश की बुनियाद अच्छी शिक्षा पर निर्भर है। बुलिंग के सिलसिले में बजट में ऐलान कदम पर बात करते हुए मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने चेतना अभियानों की अहमियत पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र के लिए ऐलान कदमों की सराहना भी की है। और लंच ब्रेक के बाद रोड्रिग्स की सांसद माना ने राष्ट्रीय बजट पर अपनी राय पेश की। उन्होंने कहा कि रोड्रिग्स के लिए 11.2 बिलियन रुपए का बजट निर्धारित करने के अलावा ये बजट कई पहलुओं के मद्देनजर हिम्मत वाला है। श्रीमती मनन मैटरनिटी लीव को एक साल तक बढ़ाने के प्रावधान पर उन्होंने खुशी जताई और टैक्स के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मुस्लिम परिवारों पर टैक्स का बोझ है। इसके बावजूद राष्ट्रीय अर्थनीति और खरीद ताकत में संतुलन लाया गया है। इसके अलावा आज ही जोना बेगोंजे, रुबना दोगियाऊ, रिशो जुवाल और सांसद रविराज बिचुक के भी भाषण रहे। राष्ट्रीय बजट में ऐलान किए गए जिन कदमों ने मुशनों की तवज्जो आकर्षित की उनमें माओं को प्रदान खास छुट्टियां और लड़कियों को प्राप्त छुट्टियां भी शामिल हैं। मैटरनिटी लीव को 12 महीनों तक बढ़ाया जाना और मेंस लीव शामिल किया जाना। हर महीने जिन लड़कियों और महिलाओं को मेंस के दौरान दर्द होता है उनको एक दिन की छुट्टी दी जाएगी। अंजुराम गुलाम, विधि मासीपुरन।
4: रिमोट में नई बैटरी डाल दी गई है, एंटीना और कान खड़े हो गए हैं, बजट भाषण शुरू हो गया है, चर्चा हो रही है, नोट्स लिए जा रहे हैं। दिलशा और प्रिशिला दो बहनें हैं, एक प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं और दूसरी सरकारी क्षेत्र में। दिलशा निर्माण सेक्टर में काम करती हैं और संस्कृति से संबंधित उपायों में भी उसकी रुचि है। विरासत स्थलों में निवेश पर चर्चा की गई, साथ ही नेशनल हेरिटेज ट्रस्ट फंड पर फिर से गौर करने की बात की गई, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय पहचान है। दूसरी बात हाउसिंग थी।
5: Peut-être le gouvernement peut bien revoir. Pas un social housing qui précisément plus à pour bonne femme. Déjà peut-être à bonne maman célibataire.
4: घोषणाएं आ रही हैं, उपाय एक एक करके सामने रखे जा रहे हैं। प्रिशिला उस चीज का इंतजार कर रही हैं जिसके लिए वो एक दशक से संघर्ष कर रही थी, मासिक धर्म अवकाश यानी मेंस्ट्रुअल लीव। बजट भाषण के दौरान इसकी घोषणा नहीं की जाएगी, लेकिन ये कदम परिशिष्ट में शामिल होगा। उसने जो लड़ाई लड़ी थी वो अब हकीकत बन गई है। एक सकारात्मक बिंदु मेंस्ट्रुअल लीव है जिसे मंजूरी दी गई है। 10 सालों से इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे, हमने जेंडर इक्वालिटी पर भी जोर दिया।

0: यानी 12 महीने का मैटरनिटी लीव, जबकि पैटरनिटी लीव 4 सप्ताह से 6 सप्ताह तक बढ़ाई जा रही है। सांसद जोआना बेरांजे का भी मानना है कि पेरेंटल लीव पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। पेरेंटल लीव गायब हो गया है, ये एक साल का मैटरनिटी लीव हो गया है। मैं पेरेंटल लीव के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ क्योंकि ये एक गेम चेंजर होगा।
1: Dans l'accessibilité à l'emploi pour bonne femme. Parce que si bonne femme et bonne homme gagnent même congé, c'est-à-dire un congé parentalité, ils sont capables de décider en deux qu'ils en ont pour prendre combien.
0: पिज्जा आ गया है और बातचीत अब उपभोग पर केंद्रित हो गई है। बहुत से लोग कठिन स्थितियों में जी रहे हैं, इन लोगों की मदद के लिए अन्य विकल्प होने चाहिए थे। दिलशा, प्रिशिला और मोशस के लोग अब ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि ये उपाय व्यावहारिक रूप से उनके दैनिक जीवन में कैसे लागू होंगे।
2: साइबर जुर्मों में बढ़ोतरी हो रही है। एक साल में 866 महिलाओं के साथ ऑनलाइन हरासमेंट हुआ है, जबकि 548 पुरुष शिकार हैं। ये मसला ज्यादातर नौजवानों को मवस्सिर कर रहा है। 14 से 15 साल के शिकार नाबालिगों के साथ धोखाधड़ी के करीब 5,000 मामले दर्ज हुए हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने नौजवानों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। विषय रहा इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के खिलाफ डिजिटल मजबूती। कुणाल गोजी, करुणा लालू।
3: 1 मिलियन से अधिक इंटरनेट यूजर और 21.6 मिलियन मोबाइल ग्राहकों के साथ इंटरनेट की दुनिया में चुनौतियाँ और खतरे भी अनेक हैं। फर्जी प्रोफाइल, अश्लील तस्वीरों की अवैध बिक्री तथा टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म जो स्थानीय न्यायिक नियंत्रण के बाहर हैं, सभी अवैध ऑनलाइन गतिविधियों से केवल लगभग 1/3 मामलों का ही कारिक रूप से रिकॉर्ड रखा जाता है।
4: For the past 15 months, we are investigating into 57 cases related to cybercrime, electronic fraud, and other related offenses.
3: कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के अनुसार वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 30 साइबर दुरुपयोग के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि 2008 में ये संख्या माहवार केवल 5 थी। एक और चिंताजनक प्रवृत्ति, कम सीन उम्र, लगभग 100 पीड़ितों की आयु 13 वर्ष से कम पाई गई। साल की शुरुआत से अब तक 23 वित्तीय म्यूल्स अर्थात ऐसे लोग जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अवैध धन के हस्तांतरण में शामिल होते हैं, FCC की जांच के दायरे में हैं। ये नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है और इसमें केन्या तथा दक्षिण अफ्रीका के नागरिक भी शामिल हैं। अधिक प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस ने 2021 के साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम एक्ट में सुधार लाने का प्रस्ताव रखा है।
2: PMSD के नेता जावियर लुक जुवाल ने आज पोर्टवी में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया। उन्होंने हालिया बजट भाषण पर टिप्पणी करते हुए कुछ खामियों और कंफ्यूजन का उल्लेख किया। उन्होंने पेंशन प्रणाली में सुधार लाने के लिए माहिरों के आयोग की सिफारिशों का खंडन किया। इसके अलावा जावियर लुक जुवाल ने सरकार में अनुशासन और समग्र जिम्मेदारी की कमी पर भी बात की। PMSD के नेता ने समाज सुरक्षा मंत्री के प्रेस सम्मेलन को भी दाद दी। क्रिस्टल लुब्रास, रजनी बेकर।
5: PMSD के सदस्यों ने राष्ट्रीय

0: बजट के प्रमुख कदमों पर बात की। पीएमएसडी के नेता ने खासकर पेंशन सुधार से संबंधित फैसलों की आलोचना की, जैसे मींस टेस्टिंग शुरू किए जाने की बात को लेकर।
1: Environ 4 milliards roupies en poste par pensionnaire. Ces réformes-là, qui restent comme elles étaient annoncées vendredi, d'ici environ 10 milliards roupies. Nous, PMSD, nous engageons, nous, un retour au système de pension avant l'élection 2024.
0: दूसरी तरफ जावेद इक जुवान ने मैटरनिटी लीव को 12 महीने के लिए बढ़ाए जाने के कदम का अच्छा स्वागत किया। फिर भी उनका मानना है कि सरकार को इस कदम से जुड़े वेतन अंतर की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी बात की गई, जैसे कि देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। शावेलिक जीवा ने इस बात पर खेद जताया कि पुलिस फोर्स के उपकरणों की मजबूती के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। अन्य मुद्दे पर भी टिप्पणी की गई, खरीद शक्ति में गिरावट और सार्वजनिक कर्ज।
2: वित्तीय साल 2026-2027 की पेशकश के चंद दिन बाद कॉन्फेडरेशन डी ट्रावायर डी सेक्टर पब्लिक और सेक्टर प्राइवेट सीटीएसपी आज प्रेस से मुखातिब हुआ। श्रमिक संघ ने मुख्तलिफ कदमों पर बात की, जिनका असर मुर्शन परिवारों पर पड़ेगा। मुर्शस में बांग्लादेशी कामगारों के संदर्भ में हिंदू कॉमन प्लेटफॉर्म अधिकारियों के साथ बातचीत करना चाहता है। प्लेटफॉर्म के मुताबिक बांग्लादेशी कामगारों की भर्ती करने से देश में समस्या पैदा होगी। इस प्रेस सम्मेलन के दौरान कई हिंदू संगठन एकत्र हुए थे। कुणाल गोजी की रिपोर्ट पर यह विवरण।
0: सरकार द्वारा बांग्लादेशी श्रमिकों की भर्ती की अनुमति देने के हालिया फैसले को लेकर हिंदू कॉमन प्लेटफॉर्म ने अपनी आपत्ति और चिंताओं को सामने रखा है।
3: प्लीज की 7 à 10 000 बांग्लादेश की डॉलर नेचर ou pas capable faire G2G ou trouve même pays sur Banjimun pas encore trouvé, pas encore ramassé. Pas encore déposé. Aujourd'hui, nous payons le gouvernement. Comment les Bangladesh capable de Maurice voter? Écoute, je capable débalance une élection dans une circonscription. Quand pas trouve les Mauriciens dans une place, ça veut dire que je prends le droit de voter. Mais Bangladesh, même les connaît dans d'autres, les pas là, ça va pas voter.
0: इस प्लेटफॉर्म के अनुसार बांग्लादेशी श्रमिकों की भर्ती की प्रक्रिया और प्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए।
4: Avec l'objectif de ce regroupement-là, après le premier meeting qui nous fait à Goldcrest le 16 juin, nous tous nous venons ensemble pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les travailleurs de Bangladesh.
5: Est-ce que l'autorité, avant, nous pense pour amener 10 000 Bangladeshis, est-ce qu'ils nous conduisent un background check? Tout ça, ces affaires-là, il est aussi important l'autorité bien considérée.
6: Ici, dans sa common platform qui fin organisée, nous pas compte personne, mais une circonstance qui nous peut guetter autour du monde, qui peut arriver, et surtout Bangladesh, qui peut faire. Donc, si un groupe peut venir ici, et comment votre comportement ici, qui vous fait ici, et comment vous fait un conspiracy pour rester la même. À cause de ça, qui Human Service Trust n'est pas d'accord qui Bangladeshi pour venir dans Maurice.
7: Nous silence, c'est pas une faiblesse. Nous silence, c'est pas une approbation. Nous silence, pas ça veut dire qu'il nous peut dire oui. Nous silence, c'est un qui peut montrer nous peut coopérer avec la décision qui nous pas accepté pour amener Man Bangladesh ici à Maurice.
0: प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है इस मुद्दे पर संबंधित प्राधिकरणों के साथ संवाद स्थापित किया जाए, साथ ही उन्होंने पुलिस से भी आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।
2: विदेश में कल लखनऊ भारत की एक इमारत में आग लगने से कम से कम 15 लोगों की मौत हुई। इस घटना के चलते एक जांच शुरू की गई है। इमारत में पेट शॉप भी थी। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक आग से बचने के लिए लोगों को इमारत से कूदते हुए देखा गया। वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के दरमियान नए सिरे से बातचीत शुरू। बेरूत ने

0: सीधे तौर पर बातचीत करने का फैसला लिया, बावजूद ये कि ईरान और अमेरिका के बीच जंगबंदी की शर्तों में लिबनान को शामिल किया गया था। फ्रांस, स्पेन और पश्चिम तथा मध्य यूरोप में दूसरे मुल्कों की तरह तेज गर्मी की चेतावनी है। आने वाले दिनों में गर्मी की हालत ज्यादा गंभीर होने का अनुमान है। कम से कम 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। विधि मासिबुरन।
1: ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने 18 घंटे की वार्ता के बाद सोमवार को वार्ता स्थल छोड़ा। बैठकों में अमेरिका, पाकिस्तान और कतर के मध्यस्थ शामिल रहे। ईरान ने इस्लामाबाद समझौते के क्रियान्वयन और अंतिम समझौते की शर्तों पर अपना रुख स्पष्ट किया। वार्ता में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सुरक्षित व्यापारिक आवाजाही और लेबनान संघर्ष को कम करने के लिए एक डीकॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर सहमति बनी। अमेरिका ने ईरान पर तेल निर्यात से जुड़े प्रतिबंधों को 60 दिनों के लिए हटा दिया है, जिससे ईरान अब अपनी तेल और पेट्रोकेमिकल उपज का निर्यात कर सकेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने दावा किया कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को देश में वापस आने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है। फ्रांस, स्पेन और पश्चिमी तथा मध्य यूरोप के अन्य देशों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी किए गए हैं। आने वाले दिनों में गर्मी की स्थिति और अधिक गंभीर होने का अनुमान है, जिसमें तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है। यूरोप में चल रही भीषण गर्मी के कारण फ्रांस में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। इस लू की चपेट में आने से अब तक कम से कम 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पेरिस समझौते के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिए तीन सबसे बड़े पक्षों के बीच सोमवार को बातचीत शुरू हुई। इस दौरान यूरोपीय संघ के जलवायु आयुक्त ने कनाडा और चीन के मंत्रियों के साथ मिलकर 2015 के ऐतिहासिक जलवायु समझौते के प्रति अपने समर्थन को फिर से दोहराया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी तट और दक्षिणी राज्यों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने के आसार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ इलाकों में लू की स्थिति भी बने रहने की संभावना है। सोमवार को उत्तरी भारत के लखनऊ शहर में एक इमारत में लगी आग में कम से कम 15 लोगों की मौत के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। इस इमारत में एक पालतू जानवरों की दुकान और एक एनिमेशन सेंटर था। चश्मदीदों ने बताया कि लोग बचने के लिए खिड़कियों से कूद रहे थे और केबल के सहारे नीचे उतर रहे थे, जबकि बचाव दलों ने लोगों की जान बचाने के लिए एक दीवार तोड़ दी। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने कहा कि इमारत में आपातकालीन निकास का अभाव था और धुआं फैलने के कारण लोग अंदर ही फंस गए। कतर की सबसे बड़ी एलएनजी सुविधा जो रास्ताफान में स्थित है में हुए एक जोरदार धमाके में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 66 लोग घायल हो गए। इस विस्फोट को एक तकनीकी दुर्घटना बताया गया है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पीड़ित विदेशी श्रमिक थे। इस घातक घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी गई है। रूस द्वारा रात भर किए गए हवाई हमलों में यूक्रेन में 6 लोग घायल हो गए हैं। मंगलवार तड़के राजधानी कीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने के लिए कहा गया। मोंट्रियल पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह कुत दिनेज इलाके में हुई गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी, एक नागरिक और एक संदिग्ध सहित कुल 3 लोगों की मौत हो गई है। एक सशस्त्र और खतरनाक संदिग्ध के संबंध में पहले जारी किया गया आपातकालीन अलर्ट अब समाप्त कर दिया गया है। सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला संक्रमण के 1000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जहां इस ताजा प्रकोप से अब तक 250 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देश के राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान ने 1003 मामलों और 254 मौतों की पुष्टि की है, जिसमें मृत्यु दर 25% है।
0: अब फुटबॉल की बात करते हैं। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला हुआ और अर्जेंटीना ने 2-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराया है। मेसी ने एक बार फिर अपनी निराली काबिलियत का मुजाहिरा मैदान में दिखाया, जिससे पूरी दुनिया चौंके यानी दंग रह गई है।
2: Yeah. एक बहुत ही कीमती जीत है नॉर्वे के लिए। इसके साथ बेस्ट ऑफ 32 का रास्ता खुल गया। सेनेगल को 3-2 से हराकर नॉर्वे ने इस वर्ल्ड

0: कप में अपनी शानदार शुरुआत की पुष्टि की। ग्रुप आई के इस मैच में शुरू से ही तेज रफ्तार पर मैच खेला गया, दोनों टीमें बराबर खेल रहे थे। सेनेगल को कुछ अच्छे मौके मिले पर गोल नहीं बना। नॉर्वे मैच में धीरे धीरे पकड़ मजबूत कर पाया और पहला गोल स्कोर करता है मार्कस पेडरसन। इस गोल के बाद सेनेगल के डिफेंस में कुछ खामियां देखने को मिली। सेकंड हाफ में नॉर्वे के सबसे खतरनाक स्ट्राइकर अर्लिंग अलोन ने अपना गोल स्कोर किया। जब प्रतिद्वंद्वी टीम के क्षेत्र में गेंद मिलता है तो अलोन मौका नहीं देता। सेनेगल को जब झटका लगा तब नींद टूटी और इस्माइल असा एक गोल स्कोर करता है, पर इस गोल के बाद नॉर्वे उल्टा जवाब देता है दूसरा गोल स्कोर करके अलोन का गोल। सेनेगल ने भरसक कोशिश की मैच में आने के लिए। इंजरी टाइम में जाकर इस्माइल असा अपनी टीम के लिए दूसरा गोल बनाता है। नॉर्वे 3 सेनेगल 2। इस ग्रुप में आखिरी मैच में नॉर्वे का सामना फ्रांस से होगा, सेनेगल का मुकाबला इराक से।
1: और आज रात पुर्तगाल और उज़्बेकिस्तान के बीच मुकाबला होने वाला है। ग्रुप एल में इंग्लैंड गाना को टक्कर देने वाला है रात के 12 बजे, जबकि पनामा और क्रोएशिया मैदान में उतरेंगे 3 बजे।
0: पुर्तगाल की टीम मैदान में उतर रही है, मकसद उद्देश्य एक ही है, पहले मैच के खराब परफॉर्मेंस को भूलकर वर्ल्ड कप में पहली जीत हासिल करना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कुछ खास नहीं कर पाया था पहले मैच में, कोच रोबर्टो मार्टिनेज को अपनी टीम पर पूरा विश्वास है। पुर्तगाल के सिलेसाओ के सामने होगी उज़्बेकिस्तान की टीम जो पहली बार वर्ल्ड कप में है। पहले मैच में कोलंबिया के खिलाफ हार हुई थी पर इस टीम ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया था, एक गोल भी स्कोर किया था उज़्बेकिस्तान ने। कोलंबिया का आत्मविश्वास प्रबल है, पहले मैच में जीत हुई थी उज़्बेकिस्तान के खिलाफ। लुइस डियाज इस वर्ल्ड कप में अपना खाता खोल चुका है, उसे रोकना आसान नहीं होगा। काफेटेरोस टीम इस ग्रुप में फेवरेट है पर कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने पुर्तगाल को मुर्गा बना के रखा था, 0-0 का स्कोर था। निडर है ये टीम, मजबूत डिफेंस, काउंटर अटैक में घातक साबित हो सकती है ये टीम। ये मैच कल सुबह 6 बजे खेला जाएगा। ग्रुप एल में आज इंग्लैंड के द थ्री लायंस आ रहे हैं क्वालिफिकेशन का टिकट बुक करने। सामने होगी गाना की टीम, तगड़ा मुकाबला होगा। अपने पहले मैच में टोमास टुखेल की टीम ने आक्रामक फुटबॉल के साथ 4 गोल स्कोर किए थे पर डिफेंस में छेद है, 2 गोल कंसीड हुए थे क्रोएशिया के खिलाफ। गाना की टीम की भी जीत हुई थी 1-0 से पनामा के खिलाफ। आक्रामक गति है कोंगो की टीम में। ये मैच रात्रि के 12 बजे MBC 11 पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। पनामा वर्सेस क्रोएशिया, दोनों पहला मैच हार कर आ रहे हैं, मतलब जो आज हारेगा वर्ल्ड कप के अगले राउंड का दरवाजा लगभग बंद हो जाएगा। क्रोएशिया ने फर्स्ट हाफ में इंग्लैंड पर 2 गोल दागे थे, इंग्लैंड को चौंकाया था। अनुभवी टीम है क्रोएशिया, पनामा को हराना आसान नहीं होगा। अंतिम मिनट में जाके गाना ने पनामा को हराया था। ये मैच कल सुबह 3 बजे।
1: बुलेटिन के आखिर में करते हैं मौसम की बात। आम हालत मस्किरिंस के दक्षिण में एक जोरदार एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके में ठंडी हवाएं चल रही हैं और ठंड महसूस हो रही है। अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई, आज रात घने बादल होंगे और हल्की वर्षा होगी, खासतौर पर हवाई ढलानों और ऊंचे इलाकों में। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, दक्षिण में 3.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की सलाह है। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 20 से 23, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 7:45 बजे सूरज उगेगा और शाम को 5:49 पर सूरज ढल जाएगा।

0: विभाग और हमारी तकनीकी साथी अपर्णा बदलोगन की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, रादाब, शुभ रात्रि। एमबीसी के साथ जुड़े रहिए।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: वही शाम अब और भी हसीन हो चुकी है। घड़ी आप मिलाते चलिए 6:34 और आप सुन रहे हैं रफ्तार वाइब्स रिया के साथ, आपकी अपनी ही रिया। और धीरे धीरे ये दिन बदल रहा है और हम रात्रि की ओर बढ़ रहे हैं। रोशनी तो कम हो ही रही है और अभी क्या है कि बत्तियां जगमगाने लगी हैं। कुछ लोग घर पहुंच चुके हैं, कुछ अभी भी सफ़र में है और कुछ लोग अपनों के साथ है शाम का सुकून महसूस कर रहे हैं। और इसी खूबसूरत समय के लिए हम लेकर आए हैं कुछ दिल को छू लेने वाले गाने, कुछ नर्म, कुछ प्यारे, कुछ यादों से भरे। तो जहां भी हैं आप, अगर आप डिनर की तैयारी में लगे हुए हैं, आपको हम भूखो आज कहते हैं। और अगर आप डिनर ले रहे हैं तो शुभ आहार आपको। अभी तक काम कर रहे हैं तो ये गाने एंजॉय करते रहिए। जो कुछ भी कर रहे हो बस गाने एंजॉय कीजिए। कहते हैं ना कि म्यूजिक इज अ थेरेपी और इस थेरेपी में हम खोसे जाएंगे अगर आप रेडियो मस्ती का साथ भरपूर निभाते चलेंगे। सो यस, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन। इट्स अ ब्यूटीफुल वन फ्रॉम द मूवी दिल का रिश्ता।
1: You're listening to RM2 Radio Masti.

0: बहुत लोगों के लिए शाम दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होती है। सुबह की भागदौड़ पीछे रह जाती है, दिन भर की जिम्मेदारियां धीरे धीरे हल्की लगने लगती है और फिर आता है ये समय जब हम थोड़ा सा खुद के साथ होते हैं। कभी अपनों के साथ बैठ कर, कभी गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए, कभी चाय की प्याली के साथ भी। जी हाँ, चाय के लिए तो कोई समय स्पेसिफिक नहीं है। और ये कुछ मिनट जो हम बिताते हैं हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी सिर्फ काम का नाम तो नहीं है, जिंदगी उन लम्हों का नाम है जो हमें सुकून देती है। तो इस शाम खुद को थोड़ा समय दीजिए और गानों को दिल तक पहुंचने दीजिए। सभी वी हैव गॉट ब्यूटीफुल ट्रैक्स है यहाँ पर, जैसे कि ये नेक्स्ट गाना हम लेकर आए हैं आपके नाम। लेकिन इससे पहले हम आपके मैसेजेस की ओर बढ़ेंगे। वी आर here with the WhatsApp messages और देख रहे हैं कि रवि जो खुशपन रहते हैं इन्होंने मैसेज भेजा है और अभी ड्राइव कर रहे हैं फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट बैक होम। दैट्स अ लॉन्ग जर्नी और आशा करती हूँ कि इस जर्नी में, सफ़र में हमारे जो गाने हैं ये आपके राही बनते जा रही है। सो थैंक यू सो मच रवि फॉर योर मैसेज और नेक्स्ट ट्रैक हम आपके नाम भी डेडिकेट करते हैं। यहाँ पर राजेन रघुपत जी हमारे साथ कनेक्टेड है। हेलो राजेन जी, सब बढ़िया? वैसे आप अभी लंदन में हैं एंड लंदन ही रहते हैं, सो आपके नाम नेक्स्ट ट्रैक और बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे साथ। ऐसे ही आप कनेक्टेड रहिए हमेशा। गॉट द बेस्ट ट्रैक्स फॉर आवर बेस्ट पीपल जो कि आप सभी है। एंड सो राजीव है सैंपिया से और आप एक स्पेशल दोस्त नीतू के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं नेक्स्ट गाना। वैसे आप तुम बिन मूवी का टाइटल ट्रैक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, अगर टाइम मिले तो हम ज़रूर चलाएंगे आपके दोस्त के नाम और आपके नाम भी आज पल। एंड ऑल्सो यहाँ पर नॉर्मल मैसेजेस में हम देख रहे हैं कि टीना है हमारे साथ जुड़ी हुई। आप हैं श्रामणी से और नेक्स्ट ट्रैक आप डेडिकेट करती है फॉर शिवम, तेजस्वरी, विमला, बबीता, रीता, सरिता, उर्वशी, दोगिस और सभी लिसनर्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज और हमारे सभी लिसनर्स के नाम ये नेक्स्ट ट्रैक जाता है।
1: You're listening to Radio Masti.

0: You're listening to RM2 Radio Masti.
1: चलिए इसी गाने के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. आशा करती हूँ कि 3 घंटों का ये सफर आपको पसंद आया. मेरे बाद आपको मिलेगा दिव्या का साथ इन योर इवनिंग लाउंज. और हमेशा आप याद रखिए, मुस्कुराते रहिए और RM2 रेडियो मस्ती के साथ कनेक्टेड रहिए.

0: वेल प्यार में अपनों के लिए दुआ मांगी जाती है, लेकिन अगर प्यार में आप किसी की दुआ बन जाओ या फिर वो लोग आप के लिए दुआ मांगे तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल वाला लव हो जाता है, या फिर इश्क वाला लव ऐसे ही होना चाहिए और इसका एहसास भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि आप हमेशा कुदरत को अपने आसपास ही महसूस करें। इसको कहते हैं प्यार का करिश्मा। चलिए यहाँ पर 7:06 हो चुके हैं, एक बार फिर से आप सभी का हम दिल से स्वागत कर रहे हैं। कल की मुलाकात के बाद ऑफकोर्स आज हमारी और आपकी मुलाकात एक बार फिर से सेम टाइम 7 से लेकर 9 बजे तक, जहाँ पर चलेगा आपका इवनिंग लाउंज टिल 9 PM। सो थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए एंड फॉर चूजिंग रेडियो मस्ती एज योर नंबर वन रेडियो स्टेशन। चलिए आज भी हम आपके मैसेजेस को वेलकम करेंगे ऑन 5499-1294 पर। आपके मैसेजेस को ज़रूर हम वेलकम करेंगे, आपके मैसेजेस को हम ना पढ़ें ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट की ज़रूरत तो हमेशा हमें चाहिए ही होता है, और आपका प्रेजेंस हमेशा हमेशा हमें बहुत ही अच्छा फीलिंग दिलाता है। एंड ऑफ कोर्स 4 चांद लगाने के लिए आपके मैसेजेस तो ज़रूर ही चाहिए ही चाहिए, और साथ में लाइन भी खुली हुई है अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कोई भी डेडिकेशन करना चाहते हैं अपनों के नाम, प्यारा सा पैगाम या फिर कोई ख़ास गीत है जो आप सुनना पसंद करेंगे, तो ऑफकोर्स आप डायल कीजिए 4028235 डायल कीजिए और इस मैजिकल नंबर पर हमें फ़ोन कीजिए, और पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि आपकी इस आपके इस इवनिंग को हम एक्स्ट्रा स्पेशल और एक्स्ट्रा मैजिकल ज़रूर बनाएंगे खूबसूरत रोमांटिक म्यूजिक के साथ।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

दिमाग तो यही कहता है कि न जाने क्यों आजकल नींद नहीं आती है, नींद खो गई है और दिल कहीं खो गया है। लेकिन दिल को तो पहले से ही पता होता है कि शायद इसको प्यार हो चुका है। और कभी कभी हम एक लड़ाई लड़ते हैं ना, एक जैसा जंग छिड़ गया हो मन और दिल के बीच में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमेशा जीत दिल की ही होती है। क्योंकि हमेशा जब प्यार के बारे में बात किया जाता है ना, तो हमेशा जीत प्यार का ही होता है और दिल का ही होता है, क्योंकि प्यार दिल से ही किया जाता है, दिमाग से नहीं। वेल 7:22 हो चुके हैं, इट्स अ वंडरफुल ट्यूसडे इवनिंग। तो चलिए, जितने भी सारे लोग इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद रेडियो मस्ती, जहाँ पर दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 तक। चलिए, आज के लिए आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ टू ऑल दोज जो हमेशा हमें फ़ोन करते रहते हैं, आज आप थोड़ा बहुत दूसरों को भी मौका दें, क्योंकि कभी कभी वो लोग भी रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि लाइन नहीं मिलती है। तो चलिए, आज जितने भी सारे लोग हमसे बात करना चाहते हैं, आई वुड लाइक टू हियर सम न्यू वॉइसेस जो पहली बारी के लिए हमसे बात करना चाहते हैं। 7:23 एंड चलिए, यहाँ पर कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। प्यार जब होता है तो वो शख्स हमारे जीने की वजह बन जाती है, और वो वजह इतनी खूबसूरत होती है कि बस इस वजह को लोग

0: प्यार में मुझे लगता है कि एक दूसरे को सताया नहीं जाता है, एक दूसरे को प्यार से मनाया जाता है। वैसे कभी कभी मीठी टकरार आपस में हो ही जाती हैं और कभी कभी इससे प्यार थोड़ा और भी बढ़ जाता है। वेल, 7:35 होने को है एंड चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर जो आपने बहुत ही प्यार से हमें भेजे हैं यहाँ पर। एंड चलिए यहाँ पर तृष्णा ने हमें बहुत ही प्यार से मैसेज भेजा है। हेलो तृष्णा, कैसे हो आप? एंड आप कहती हैं, नमस्ते दीदी दिव्या, अभी नानी नाना मासी ऑफ मोताई ब्लॉन्श के साथ हूँ, साथ में मासी हैं ऑफ कौंडेमास्क, मासी शिवानी, मासी किरण, नाना नानी ऑफ मोताई ब्लॉन्श, चाची मालिनी, मामा पूनम के लिए भी और सभी फैमिली के लिए प्यारा सा गीत चला देना फ्रॉम तृष्णा। थैंक यू सो मच तृष्णा फॉर योर मैसेज। ज़रूर आपके अपनों के नाम और अपने आपके परिवार वालों के लिए हम खास तौर से एक खूबसूरत सा गाना ज़रूर बजाएंगे। गुड इवनिंग दिव्या, ऋषि विदेशी, नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर ऑल RM2 लिसनर्स, माई फ्रेंड सोनम एंड माई बेस्ट विशेज फॉर माई कज़िन अलीशा गुरवा ऑफ प्लेन लुजों पोर्ट लुइस, हु इज़ गोइंग टू बी अ ब्राइड ऑन दिस वीकेंड, एंड टू ऑल ब्यूटिफुल ब्राइड्स एंड ग्रूम्स टू बी, और एज यूजल आपके मूडी गर्लफ्रेंड के लिए ऑल्सो आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ रॉकिंग सैटरडे, क्या बात है। चलिए अगला गाना गुज आउट स्पेशली फॉर यू ऋषि जी। एंड यहाँ पर किसी ने कहा है, नमस्ते विद्या जी, कैसी हो आप? क्या बात है, हमारा नाम तो विद्या नहीं बल्कि दिव्या है, लेकिन कोई बात नहीं है, एक महान हस्ती ने कहा था कि व्हाट्स इन अ नेम। चलिए बहुत प्यारे गाने चल रहे हैं, थैंक यू आपको दिल से फॉर लाइकिंग द सॉन्ग सिलेक्शंस। अगर हो सके तो आप could you please play the song तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है by सोनू कक्कर। चलिए हम कोशिश करेंगे और मैसेज भेजने की का तरीका यहाँ पर आई कैन गेस मे बी इट्स यू रोशनी जी ऑफ काट्रोबोन, नाम तो नहीं लिखा लेकिन फिर भी हमने गेस कर दिया। चलिए यहाँ पर साथ में अगला गाना उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और चलिए यहाँ पर जितने भी सारे लोग इस वक्त कनेक्टेड है हमारे साथ, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज स्टेइंग कनेक्टेड और ऐसे ही खूबसूरत गीतों का लुत्फ उठाते रहिए। एंड यहाँ पर किसने कहा है, गुड इवनिंग, प्लीज़ डेडिकेट अ सॉन्ग फॉर योर ट्वीन्स रेवांश एंड रियांश फ्रॉम मॉम वशिनी एंड डैड विजय फ्रॉम ग्रैंडमा वेदा ऑफ हाईलैंड्स। चलिए अगर पॉसिबल हुआ तो आपका ये गाना हम चलाने की कोशिश करेंगे, फिलहाल के लिए बस रोमांटिक गाने ही चल रहे हैं। एंड चलिए एक 90s का गाना स्पेशली, वी हैव इट इन द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वॉइसिस ऑफ कुमार सानू एंड अलका याग्निक।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: भाई ऐसे गाने चलेंगे तो प्यार के एहसास तो पिघल जाएंगे और भी प्यार हो ही जाएगा। वेल शाम के 7:50 होने को है। चलिए यहाँ पर किसी ने हमें मैसेज भेजा है, हेलो दिव्या, वेरी गुड इवनिंग, नाइस सिलेक्शन, एंजॉइंग, थैंक यू सो मच। एंड आपने पूछा है कि इफ़ यू कैन हैव द नंबर ऑफ रेडियो मस्ती ताकि आप हमसे थोड़ी बातें कर सके। ऑफकोर्स नंबर है 402-803-5-402-85। बिल्कुल आप इस नंबर पर फ़ोन करिए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे हमने कहा कि हम वेट ही कर रहे हैं फॉर ऑल दोज लिसनर्स जो पहली बार के लिए हमसे बात करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स 402-803-5 पर हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर किसी का फ़ोन आ रहा है तो उनसे हम ज़रूर बात करेंगे। और चलिए देखते हैं कि लाइन पर कौन है। हेलो जी,
1: दिव्या भारती जी,
0: नमस्ते। राजेश साहब कैसे हैं आप?
1: हेलो
0: हेलो राजेश जी,
1: कैसे हैं जी आप?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे हैं आप?
1: हेलो
0: हेलो,
1: कुछ बोलते ही नहीं।
0: नहीं, मुझे लगता है यहाँ पे टेक्निकल इशू है।
1: कैसे हैं आप?
0: मुझे लगता है यहाँ पे टेक्निकल इशू है इसीलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं राजेश जी?
1: हाँ जी, यही तो मैं सुनना चाहता हूँ आपसे बात करे बिना रह नहीं सकता कोई।
0: ओहो, क्या बात है। चलिए बताइए। हाँ,
1: इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब ठीक है ना?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। देखिए जब विंटर सीजन आता है तो खुद को मतलब प्रिकॉशन ले लेना चाहिए एडवांस में, मतलब गर्मा गर्म पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक से दूर रहना और अपने आप को अच्छी तरीके से ढके रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हमारे लिसनर्स को हम भी बोलते रहते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक ठाक हैं और यू आर कीपिंग योर सेल्फ वार्म एंड अपने आप को आप हमेशा ढक कर रखिएगा क्योंकि सर्दी तो बहुत ही है बाहर।
1: नॉर्थ में सर्दी कम है।
0: नॉर्थ में सर्दी तो कम ही है लेकिन फिर भी सर्दी तो है ना तो इसलिए आपको बच के रहना चाहिए। चलिए राजेश जी आप मुझे बताइए कि अगला गाना किन किन के नाम?
1: किन किन नाम में? नवासी नवासा के लिए।
0: हाँ जी,
1: एक फिल्म है सूरज, हो सके जो टिकली उड़ी
0: ओके, हम ट्राई करेंगे क्योंकि फिलहाल के लिए तो हम बस रोमांटिक गाने चला रही हैं और जितना हो सके हमेशा हम आप लोगों से।
1: तो प्लीज एक और गाना है
0: बताइए।
1: मैं कहीं कभी न बन जाऊं।
0: ओके, मैं ए कविता। ओके, ये गाना हम चलाने की कोशिश करेंगे। राजेश जी थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू,
0: ओ माय गॉड। चलिए ये थे हमारे राजेश साहब, हमेशा फिल्मी अंदाज के साथ बात करने के लिए आ ही जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर 7:53 ऑलरेडी एंड चलिए यहाँ पर जितने भी सारे लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट, लाइन खुली हुई है अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं ऑन 402-803-5-402-805 पर हम आपका इंतजार कर रहे हैं।
2: Evening Lounge, Evening Lounge, RM2, Radio Musti.

0: क्या बात है, सच अ ब्यूटीफुल गाना रबी शर्गिल की आवाज में. तेरे बिन बस जी नहीं लगता है और किसके बिना आपका मन नहीं लग रहा है. जरूर उनके नाम भेजे प्यारा सा पैगाम. एंड चलिए यहाँ पर आपसे हम एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ अब की बार कुछ न्यू कॉलर्स को आप थोड़ा सा मौका दें. और बस आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने हमसे कभी बात नहीं की है तो आप ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं 402-8035-402-8035. चलिए आज हम उन लोगों को थोड़ा सा मौका देते हैं. हाँ, कभी कभी क्या होता है कि कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने हमसे कभी बात नहीं की लेकिन फिर भी दे आर वेरी हेजिटेंट और फिर बात करके ही फ़ोन रख देते हैं. तो चलिए कोई बात नहीं, हम समझते हैं. लेकिन इम्पोर्टेंस यही है कि आप लोग हमें याद करते हैं और बस वक्त निकाल कर या फिर आपके फ़ोन कॉल्स या फिर आपके मैसेजेस हम तक पहुँच जाते हैं. चलिए 8:06 हो चुके हैं, एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत कर रहे हैं इन योर रोमांटिक शो जिसका नाम है इवनिंग लाउंज. और ये रहेगा नॉन स्टॉप आप लोगों के लिए कूल म्यूजिक गाने ऐसे ही टिल 9 PM. सो जहां से भी साथ रहे होंगे, थैंक यू सो मच. एंड डिनर तो शायद आप लोगों का हो गया है, कुछ लोग देर से खाना खाते हैं. तो चलिए आपको एडवांस में बन पीछे शुभाहार अगर इस वक्त आप अपना डिनर ले रहे हैं, अगर काम पर हैं आपको बो कुहाज. इफ यू ड्राइविंग हैव अ सेफ ड्राइव विद रेडियो मस्ती.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: चलिए एक ओल्डीज आप लोगों के नाम जो पुरानी गीतों को हद से ज़्यादा पसंद करते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में राजेश साहब का रिक्वेस्ट ज़रूर चल पड़ा है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। चलिए राजेश जी आप इस गाने को सुनिए मुस्कुराइए और एक बार फिर से प्यार में डूबने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। वेल 8:23 हो चुके हैं और हम ज़रूर यहाँ पर हैं आप लोगों के साथ टिल 9 PM। एंड यहाँ पर व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आया है, हाय हेलो जी आपका क्या नाम है आपने बता नहीं, और आई कुड सी कि आपने दो बार हमें व्हाट्सएप पर फ़ोन किया है लेकिन फ़ोन करने का नंबर है 4028035402 पर आप ज़रूर हमें फ़ोन कर सकते हैं और आपसे हम ऑन एयर कुछ बातें ज़रूर करेंगे। व्हाट्सएप पर आप सिर्फ अपने मैसेजेस भेज सकते हैं या फिर नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए भी आप हम तक संपर्क रख सकते हैं ऑन 5499-1294। एंड चलिए यहाँ पर ये खूबसूरत गाने जारी रहेंगे टिल 9 PM।

शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें।

0: कुछ गानों में ऐसे अल्फाज होते हैं जो सीधा जाकर दिल पे लग जाते हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, बातें हैं और यादें हैं। बस इन्हीं से यादें बनती हैं, जहाँ पर गिले शिकवे भी होते हैं, खूबसूरत बातें भी होती हैं और खूबसूरत यादें भी होती हैं। चलिए 8:43 एंड दिव्या का साथ है टिल 9 PM। सो ऐसे ही हमारा साथ देते रहिएगा एंड कुछ आपके मैसेजेस की ओर हम ज़रूर बढ़ेंगे। नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करेंगे फॉर DJ दाविसन ऑफ लालमाची। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। किसी ने हमें मैसेज भेजा था 8 बजे, ओके, आपने पूछा था कि हेलो दिव्या, कैन यू प्लीज़ प्लीज़ टेल मी विच म्यूज़िक यू प्लेड आफ्टर द सॉन्ग आशिकी 2। तो चलिए, इट वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी बॉम्बे। यस, बॉम्बे का थीम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक था, तो आप इसको सर्च करेंगे तो ऑफकोर्स आपको टाइप करना है बॉम्बे थीम इंस्ट्रूमेंटल। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल म्यूजिक और हमेशा इसको सुनती हूँ ना तो मन को राहत मिलती है और दिल को चैन मिलता है। कुछ ऐसे म्यूजिक और चलाएंगे आप लोगों के लिए जिनको सुनने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि बस मन कर रहा है आँख बंद करके हर एक म्यूजिक को फील करने के लिए। सो चलिए, इस फीलिंग को हर बरकरार रखेंगे ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

RM2 रेडियो मस्ती। चलिए कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए तो थे एंड चलिए इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं एंड चलिए यहाँ पर इट्स ऑलरेडी टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। हमारी और आपकी कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए आपसे हम जरूर कहेंगे टेक केयर, कीप स्माइलिंग, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: A very good evening, ladies and gentlemen. स्वागत आप सभी का RM2 पर और मुझे मौका मिलता है कि 9 से 12 के इस शो के अंदर कुछ गानों को शामिल करूं, साथ ही होगी आपसे मुलाकात. तो है ना कमाल की बात. चलते हैं आगे इन गानों के साथ. एंड जहां पर भी जिंदगी के किसी भी पड़ाव में हो, आपको म्यूजिक साथ देने के लिए मिल ही जाएगा. वैसे कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल सफर कौन सा होता है? शायद खुद को समझने का. आज रात अपने दिल की आवाज की वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और म्यूजिक को अपना हम सफर बना लीजिए.
0: RM2 रेडियो मस्ती.

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: ऑफिस की डेडलाइंस या फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर किसी के कंधों पर कुछ ना कुछ बोझ तो होता ही है, लेकिन इस पल उस बोझ को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और सिर्फ गानों को महसूस करते हैं। कह सकते हैं ये हमारा मी टाइम है, जहां पर सब कुछ सही होता है अपने हिसाब से।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: हर किसी के पास अपना कोई फेवरेट गाना तो होता ही है, जो किसी की याद लाता है या फिर दिल को आराम, चैन, सुकून पहुंचाता है। अगर आप भी ऐसे गानों के साथ जुड़ गए हैं तो फिर उन यादों को एक बार फिर से जगाते हैं, दिल की प्लेलिस्ट से आपको मिलाते हैं।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: सोचिए इतनी बड़ी दुनिया, इतने सारे लोग और हर इंसान अपनी कहानी का हीरो तो होता ही है ना। अगर आपका दिन थोड़ा मुश्किल रहा है तो याद रखिए, इंटरवल के बाद कहानी और भी बेहतर हो सकती है।

कभी कभी हम सब ठीक होने का नाटक करते हैं, लेकिन अपने आप से छुपाएं तो क्यों छुपाएं? आज की रात आप थके हुए हैं या उदास हैं या बस चुप रहना चाहते हैं, तो बस म्यूजिक को बैकग्राउंड में चलने दीजिए, अपने इमोशंस को संभालने दीजिए, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। चेंज जरूर आएगा, एक खुशखबरी साथ लेकर आएगा।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती,
0: फील द मस्ती।
2: हर घर में एक ऐसा इंसान होता है जो सबकी फिक्र करता है, शायद आप वही हैं। आज की रात उन लोगों के नाम जो खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं, और हम अपनी तरफ से एक छोटा सा पैगाम, एक मैसेज, या फिर उनको एक जादू की झप्पी तो दे ही सकते हैं ना, ये एहसास दिला सकते हैं कि वो भी हमारी जिंदगी में कितने

0: You're listening to RM2 or Radio Masti.
1: हर दिन एक इंसान को 24 घंटे देता है उसकी तिजोरी में, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो इन घंटों में, मिनटों में, उन सेकंड में हम कह नहीं पाते। कई बार बॉलीवुड के स्टाइल से किसी गाने के जरिए आप उसको कह सकते हैं, उन इमोशंस को आप सामने ला सकते हैं। इसलिए आज अगर कोई जज्बात लफ्जों में नहीं आ रहा तो म्यूजिक को बोलने दीजिए, दिल से दिल तक। RM2 पर लेट नाइट ग्रूव्स।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: रात जितनी गहरी होती है दिल की बातें उतनी ही साफ सुनाई देती हैं। तो आज अपने सपनों और ख्वाबों को थोड़ा वक्त दीजिए। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो उनको बोलने दीजिए, क्योंकि खुद से बात करना भी एक बहुत ही बढ़िया जरिया है। ये जो फासले हैं, ये जो डिस्टेंस है, उसको कम करने का, अपने आप को बेहतर समझने का।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: कभी तो आप सोचते होंगे कि सुबह उठकर फिर से तैयार होना, भागा दौड़ी और वही जिंदगी की रेस। लेकिन जिंदगी रेस नहीं है दोस्तों, हर किसी का अपना पेस होता है, अपनी रफ्तार होती है। और अगर आप भी अपनी मंजिल ढूंढ रहे हैं तो यकीन रखिए, सफर भी खूबसूरत हो सकता है। बस अपनी रफ्तार चुनिए और अपने दिल की सुनिए।

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: सोचिए एक ही वक्त और कहीं पर सुबह, कहीं दोपहर या कहीं पर शाम, लेकिन म्यूजिक कानों से उतर कर दिल में सीधा पहुंचता है, कर ही देता अपना काम। अगर आपको भी इन गानों के जरिए मिलाओ थोड़ा भी आराम, तो हम भी कहेंगे जजमान की ये सिलसिला चलता है 24/7 RM2 पर लेट नाइट ग्रूव्स।

0: You're listening to RM2, a radio must see.
1: कभी एक ऐसा वक्त आता है कि आप किसी अपने को मिस करना शुरू कर देते हैं। वो दिल के इतने करीब है, इतनी पास है, तो क्यों ना हम भी दो कदम उसकी तरफ बढ़ाएं और उसको फिर हम अपने और करीब पाएंगे। एक छोटा सा मैसेज या फिर एक छोटी सी मुस्कुराहट आप भेज सकते हैं, है ना। लौट कर क्या आता है ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो कंट्रोल में है वो आपका एक छोटा सा एफर्ट। तो चलिए उनको याद करके मुस्कुरा देते हैं। कुछ गाने अभी भी वक्त है, चला देते हैं।

0: You're listening to RM2, a radio musty.
1: बस अब मिडनाइट के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं और म्यूजिक का जादू अभी भी बाकी है। चल इस रात को यादगार बनाते हुए कुछ और गाने हम शामिल करते हैं और मैं चाहता हूं अभी इस वक्त आपसे इजाजत। चल मुलाकात होती है और वो होगी कल। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रखें याद 9 से 12 के बीच में RM2 पर लेट नाइट ग्रूव्स। नमस्कार।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: RM2 Radio Musty.
1: मैं भूल सकता हूं तुझे पर एक शर्त पर, तू मुझसे ये वादा कर कि कोई और भी तेरी जिंदगी में आएगा जो मुझसे ज्यादा तुझसे प्यार करेगा।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

फिर कोई बावर मोहब्बत की अपनी जुल्फ़ें नहीं।

0: तो जरा ओढ़ो अरे मानो कहा अब तुम हो जवा मेरी जान धड़क पन्ने छोड़ो
1: RM2 Radio Musti

0: बदकम्मा बदकम्मा
1: यंकन्ना यंकन्ना
2: बदकम्मा।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
0: वेलकम टू RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: नॉर्थ, साउथ,
3: 103.5,
2: ईस्ट, वेस्ट,
3: 96.4,
2: सेंटर,
3: 99.4।
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and